0: This afternoon's crucial NBA playoff clash with Minnesota. The best of seven semi-final is tied at 2-2 with Game 5 about to tip off.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sensar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: वेदर के अपडेट 21 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 0% चांस है बारिश के आज, यानी कि खूबसूरत दिन पूरे दिन रहने वाला है और 5:25 पे होगा आज का सनसेट।

0: ਜਾਏਗੀ।
1: किरा नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, बुलाब का स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेलकम बैक। जी हाँ, वैसे यस, बहुत ही बढ़िया दिन है आज। खूबसूरती का क्या बोलूं यार, मतलब कल परसों दो दिन तो इतना बुरा हाल था वेदर का कि चाह के भी, मतलब मन मार के मेरे को तारीफ करनी पड़ती। हाँ, खूबसूरत दिन है, बट आज एक्चुअली खूबसूरत है। वैसे यस, मेरा नाम केतन है, मैं अभी से लेके 3 बजे तक हूँ यहाँ पे। बहुत सारे गाने चलाने हैं यहाँ पे, आपको अपडेट भी देने हैं, मौके देने हैं जहाँ पे आप मुझे मैसेजेस भेजेंगे। सो यस, अपना फ़ोन जो है अपने पास ही रखिए, और नॉट वाइल्ड ड्राइविंग, ऑफ कोर्स नॉट वाइल्ड ड्राइविंग। सो आई डू नॉट प्रमोट एनीथिंग दैट आप ऐसी चीज़ करें जो हैज़र्ड्स में काउंट होती है। सो यस, वाइल्ड यूर ड्राइविंग मेक श्योर आप अपना फ़ोन यूज़ ना करें, और अगर आपके कोई है साथ में जो बैठा हुआ पैसेंजर सीट पे, या फिर इन द बिहाइंड एज वेल, तो लेट देम यूज इट सो दैट दे कैन सेंड इट टू मी द टेक्स्ट, या फिर अगर उनको कॉल भी करना है तो दे कैन डू इट। बट यस, अभी के लिए एंजॉय करिए इलाही, बहुत ही प्यारा गाना है मोहित चौहान का, इलाही मेरा जी आए आए। बहुत प्यारा गाना यार। एक्चुअली हम ये प्यारा इसलिए भी बिकॉज हमने रिसेंटली रेस्टोरेंट में परफॉर्मेंस देनी शुरू करी है। सो वी गो टू नियर बाय रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं पानल में एक, और वहाँ जाने के बाद परफॉर्मेंस देते हैं। सो यस, वहाँ पे भी हमने ये गाया, और एक्चुअली ऑडियंस जो वहाँ की जो विजिटर्स थे, जो ऑडियंस ही बोलेंगे ना, हाँ, तो उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया था। सो यस, ये गाना एंजॉय करिए, और साथ में मेक श्योर आप मुझे टेक्स्ट भी भेजिए रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? लास्ट टाइम मैंने एक कॉल मिस किया था, बट यस, आप मुझे आज भी कॉल कर सकते हैं 800-4866 पे। बट यस, टेक्स्ट भी भेजिए मुझे अपने नाम के साथ रिगार्डिंग व्हाट इज दैट वन थिंग यू मिस अ लॉट। उसके बाद कारवा जो है कंटिन्यू चलता रहेगा।
2: बचाओ क्या,

0: विद केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो बात तो है। चलिए अभी होम सिक रेमेडीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी भी भेज सकते हैं मुझे 5599 पे रिगार्डिंग कौन सी ऐसी चीजें जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। करण का मैसेज है, वो बोलते हैं आई मिस इंडियन वेडिंग्स द मोस्ट, 3 days ऑफ म्यूजिक डांस कजिन एवरीवेयर नो स्लीप ऑकलैंड वेडिंग फिनिशेस सो अर्ली समटाइम्स आई फील द पार्टी जस्ट स्टार्टेड। दैट इज सो ट्रू यार, ये चीज तो मैं भी मिस करता हूँ। मिस तो छोड़ो यार, मेरे को तो अभी इनविटेशन का वेट कर रहा हूँ मैं शादी का। कोई तो बुलाओ मेरे को शादी में भाई। मेरे को भी मन करता है वो कपड़े पहनने का, एकदम देसी, यू नो क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सब करना। कोई तो बुलाओ यार, कोई शादी कर रहा तो बताना भाई, कार्ड भिजवा देना मेरे घर पे, पापड़ोटे में रहता हूँ, यहाँ पे भी भिजवा सकते हैं, मेरे नाम का ऐसा कुछ नहीं है स्टूडियो में। एनीवेज, आतिश फ्रॉम वेलिंगटन, वो मैसेज कहते हैं गुड आफ्टरनून ब्रो, इट्स रेनिंग इन वेलिंगटन, सो मच स्कूल यूनिफॉर्म में, अच्छा सॉरी मैं उल्टा पड़ गया, सो मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में भीग के आना जानबूझकर और घर आके माँ को कहना कि मुझे ठंड लग रही है, ये मिस करता हूँ। अभी आपको वाइफ को बोलना पड़ता होगा ना अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो। बट मतलब हाँ, अभी भी कर सकते हो, ऑफिस में जाओ, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ और मस्त भीग के आ जाओ और घर पे बोलो। मे भी हो सकता है मॉम, आप ऑफ कोर्स मॉम इंडिया में होगी तो यहाँ पे आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है उन्हें आप कह सकते हैं ये, राइट? उसके बाद एक और मैसेज आया है, इफ कफ कोल्ड वी इधर हैव जिंजर हनी पेपर मिक्स और हैव अ बेसन वाला मिल्क इन नाइट। अखिल टेबर उसे मैसेज कर रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू यार, थैंक यू। तो वो कहते हैं ये जिंजर, बट ये चीज़ तो यहाँ पे भी हो सकती है, राइट? ये तो हाँ, मतलब ये तो यहाँ पे भी आप खरीद के और यूज कर सकते हो। बट यस, जबीरा कहती है मिसिंग गोइंग टू फीजी मार्केट्स व्हेन यू वॉक इन द फ्रेश स्मेल ऑफ स्पाइसेस। वेल आई डोंट नो वहाँ का कैसा होता, बट आई कैन अज्यूम कि वो सिमिलर टू इंडिया, वहाँ पे जैसे इंडिया में होता है वैसे उस तरह का मार्केट लगता होगा। बट एक्चुअली यहाँ पे जैसे मैं पापड़ोटे में रहता हूँ तो वहाँ पे ओटारा में मार्केट लगता है, तो वो भी मुझे सिमिलर लगा। इनफैक्ट काफ़ी क्योस भी था यहाँ पे, भीड़ इतनी थी, क्राउड इतना था, ट्रैफिक था, तो एक कुछ पलों के लिए तो मुझे लगा मैं इंडिया में ही हूँ। तो वो आप एक्चुअली ट्राई कर सकते हैं। अंजू कहती है हैमिल्टन से, बारिश में गरम गरम पकौड़े जो है वो मिस करती हैं ये। वेल यस, ये चीज़ तो मैं भी मिस करता हूँ। वो उसका रीज़न ये भी होगा कि यहाँ पे हर टाइम बारिश होती रहती है, सो देर इज़ नो प्रॉपर सीजन ऑफ इट। सो यस, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपको नेचर को ही बोलना पड़ेगा। आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं, मिस दोस्त हैं, अच्छा सॉरी मैंने कुछ और ही पढ़ लिया, मिस दोस्त चूसने वाले आम, ओके स्मॉल वंस इन समर, बकेट भर के खाते थे इन पंजाब, नाइस। वो तो यार वो ग्रीन कलर के, राइट? कच्चे आम इस तरह के होते थे ना, कच्चे तो ऑब्वियसली नहीं खा सकते, बहुत खट्टे होते हैं। बट यस आई रिमेम्बर यार, मैं भी खाया करता था यार, मज़ेदार यार। अखिल थैंक यू यार, ये चीज़ कभी नोटिस नहीं किया मैंने, बट दिस इज ऑल्सो ग्रेट मेमोरी यार, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। मैं तो अभी कॉल करूंगा मम्मी को और मम्मी से बात करूंगा, बताऊंगा कि मम्मी आज एकदम से मुझे याद आया वो यू नो आम जो हम सब मिलके, और खास बात ये थी कि आप अकेले नहीं चूसते थे, आपके साथ यू नो पूरा परिवार होता था, वो सब बैठ के पहले तो आप उसको हाथ में लेते थे एंड देन यू रब इट अराउंड ताकि जो उसका अंदर जो रस होता था वो थोड़ा एकदम लूज हो जाए और उसके बाद आप फिर चूसते थे, तो इट इज सो यमी यार, सो यमी। बट यस थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर में ऑफिस शार्ट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग फ्रॉम होम और ऑफिस, एंड इफ यू हैविंग समथिंग, अगर आपने कहीं से ऑर्डर किया है तो मुझे बताइए 5599 नंबर, लेट्स शाउट आउट। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास कोई ऐसी डेडिकेशन के लिए गाने हैं जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे भेज सकते हैं 5599 पे।
3: लंच बॉक्स विद केतन,
4: मुझे पसंद है लड़का।
3: हाँ। वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Divine. सिर्फ रोवा पर.
1: Absolutely everything is on sale at Freedom. My Freedom members unlock early access and get up to 60% off everything. Not a member? Join today. Sale on now. Only at Freedom.
2: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
10: हम office shout out.
12: स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में एंड द ऑफिस शाउट आउट सेगमेंट में भी. वेल यस, आपके मैसेजेस मिले हैं मुझे, थैंक यू सो मच. पढ़ते हैं, सबसे पहले मैसेज आया है कविता का. वो कहती हैं, सिल्वर पार्क्स एक्चुअली ही शी इज मैसेजिंग एंड शी इज सेइंग दैट जस्ट ओपन माय लंच बॉक्स एंड रियलाइज आई पैक्ड यस्टरडेज डिनर बाय मिस्टेक. नॉट कंप्लेनिंग दो, बटर पनीर, बटर पनीर स्टिल टेस्ट अमेजिंग. दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल. उसके बाद हरप्रीत कहती हैं, रेडियो ऑन, हीटर ऑन एंड हॉट चाय इन हैंड, दैट्स माय लंच सेटअप टुडे व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम. नाइस. एक्चुअली यार उनसे याद है, ठंड एक्चुअली बढ़ चुकी है यार. मतलब मुझे स्टूडियो में बैठने के बाद भी थोड़ी लग रही है ठंड. इनफैक्ट मैंने डबल लेयर पहन रखे हैं उसके बावजूद भी. अभी ऐसा लग रहा है कुछ, कोई मुझे ब्लैंकेट दे दो, कुछ कंबल दे दो, मैं लपेट के फिर बातें करूँगा आपसे. Anyways, Deepa कहती है ग्लेनन से, my son made me a cheese sandwich this morning because I was running late for work. Bit burned but full of love. That's so cool, yeah, that's so cool. Well, we would love to see the photo, यार. आप हमें भेज सकते हैं हमारे मैसेज पे, मैसेंजर पे भेज सकते हैं कि आपका जो खाना, अगर आपने फोटो लिया है तो. But how is that feeling, आपके बच्चे जब आपके लिए कुछ बनाते हैं, doesn't matter वो सही हो नहीं हो, it is always great to see your kids is preparing something for you. Sean कहते हैं, bro, the line at the food court today is crazy. Half the CBD must have come for butter chicken lunch. Auckland CBD. Right. कभी कभी होता है. Today is Wednesday, right? Wednesday को क्या पता, हो सकता है माहौल हो या फिर popular हो गया हो. But yes, Zara कहती हैं, she is 20 and she is a AOT student. कहती हैं, having instant noodles in the uni library right now. Pretending to study. Pretend मत करो भाई, बहुत पैसा लगा के आए हो आप यहाँ पे, शायद कॉलेज की फीस बहुत थी. Pretend मत करो भाई, पढ़ लिया पढ़ लो, बट हाँ नूडल्स अच्छे खाओ और हमें सुनते रहो. But yes, thank you so much for all the messages. आप बने रहिए और अभी लेके आऊँगा कुछ अपडेट रिगार्डिंग कम्युनिटी इवेंट्स. यहाँ पे कुछ खास इवेंट होने जा रहे हैं, उनके बारे में बात होगी.
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी कुछ कम्युनिटी इवेंट्स की। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थनम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी के लिए लेके आए हैं भोजन मेला फूड कार्निवल, जो कि 17 तारीख को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस संडे को सुबह 11 से शाम के 4 बजे के बीच उनका जो मेन पर्पस है वो है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल का प्रोजेक्ट। एड्रेस जो है लिख लीजिए, 378 अरारीमू रोड, रामा साउथ ऑकलैंड। काफी कुछ फीचर्स है इसमें, जैसे कि फ्री एंट्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, साथ में ज्वेलरी क्लोथिंग एंड अदर स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेगी। हेना आर्टिस्ट भी होंगे वहाँ पे, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल साइट विजिट एज वेल। अगर आपको स्पॉन्सर करना है या फिर स्टॉल्स लगवानी है तो आप उन्हें कॉल करिए शिवानी अरोरा को 0218700012 पे। साथ में 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंड इवनिंग ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकग्निशन एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को 16 मई मलायोला कम्युनिटी सेंटर 16 वाव कोरी प्लेस मैंगरे ऑकलैंड। वेल शाम के 4:30 से 8:30 बजे के बीच इवेंट होने वाला है। दरवाजे जो हैं आपके लिए 4 बजे खुल जाएगी। सो यस, इट्स अ परफेक्ट इवेंट फॉर यू इफ यू लव टू नेटवर्क। टी स्नैक्स भी होंगी वहाँ पे शाम के 4:30 बजे के बाद। जी हाँ, फ्री एंट्री है, बट यस काफ़ी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव इवेंट होने जा रहा है। अगर आप कुछ चाहते हैं या फिर वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं तो उन्हें कॉल, उन्हें एक्चुअली ईमेल कर दीजिए fijigirmit@gmail.com पर। यस, तो ये आप कर सकते हैं। और एक और बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है जो कि 23 मई को होने वाला है, नेटबॉल मनुरेवा पे ये होने वाला है। तो यस, बहुत ही बढ़िया इवेंट है यार, मतलब मजा आने वाला है। सो यस, दैट इज फीचरिंग रिनोन्ड आरजेस फ्रॉम फिजी, SN जय भैया जी एंड रॉडी नवन भी है वहाँ पे। कुछ काफ़ी बढ़िया डांसिंग लेजेंड्स जैसे कि चाफर कमिंग टू न्यूजीलैंड आफ्टर 17 ईयर्स। 5 से 6 मसाला मिक्स किट्स भी होने वाले स्टेज पे, कुछ कॉमेडी डांस एंड मस्ती भी होने वाली है वहाँ पे, और एक सिंगर आने वाले हैं जो दो आवाज में गाएंगे, ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा। जी हाँ, मेल फीमेल दोनों। आपने कभी ट्राई किया मेल फीमेल पे, मतलब दोनों आवाज में ट्राई करना? कोई है यहाँ पे जो मुझे कॉल करके ट्राई करना चाहता है 0800-004-866 पे? यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट यस, जैसे मैं गाता हूँ तो ना ना ना ना ना ना। अब उसी को लड़की क्या नहीं यार, मैं से तो ना हो पाए। टैलेंट चाहिए यार, ऐसे ऐसे ऐसे नहीं कि हर कोई मुंह उठा के आ जाए। और बट यस यार, टैलेंट है यार, टैलेंट है सच में, इतना आसान नहीं है। सो यस, सिंगर मनी डिसूजा भी आ रहे हैं यहाँ पे। और एक और खास बात है, पता है क्या, मैं खुद भी उस इवेंट में होने वाला हूँ, मेरी भी परफॉर्मेंस होने वाली है वहाँ पे स्टेज पे। सो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपको ज़रूर मिलूंगा। टिकट्स जो है आप खरीद लीजिए अलग अलग स्टॉल्स में जाके, हंटर्स फूड टाउन, पापाटोटोए, जयस फ्रेश मार्ट, पापाटोटोए, गेट फ्रेश सुपर मार्केट, केश हेयर एंड ब्यूटी सलून मनुरेवा, विकेट चिकन, बॉटनी डाउन्स ब्रांच एंड जेंडर हेयर एंड ब्यूटी सलून, यहाँ पे आप ले सकते हैं। काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, सो यस मेक श्योर आप टाइम निकालिए और इस इवेंट में आइए।

0: Lunchbox with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम
4: 80s के रेट्रो गाने

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Intaha ho gayi
1: intezaar ki. सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
4: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
5: Flight Centre's Big Red Sale has landed with up to 50% off stays, cruises and tours, plus sky-high savings on flights, holidays and more. Book online or in store today. End 2nd June. T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
6: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
7: Lunchbox with Keithan.
8: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
9: Chutney Shots.
10: चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम फट से एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं. ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स हो रहे हैं. कल इनफैक्ट मैंने एक क्रैश देखा था, विच इज़ नॉट, आई मीन मुझे देख के तो ऐसे बहुत ही अजीब लगा यार. पूरा ट्रैफिक जाम था और काफ़ी लगी भी होगी वहाँ पे लोगों को. सो ये सारी चीज़ें तो होती रहती है. बट इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया है कि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्या क्या रीज़न हो सकता है? लाइक हर दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है. इज इट जस्ट मी, ये नॉर्मल चीज़ है ऑकलैंड में, या फिर मुझे लग रहा है कि एक्सीडेंट्स जो है उनके नंबर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं? मुझे आप बता सकते हैं 5599 पे. बट ये सभी की जो लेटेस्ट खबर है वो है कि न्यूजीलैंड में कीवी बैंक को लेकर एक बड़ी इकोनॉमिक डिबेट फिर से शुरू हो गई है. गवर्नमेंट ने अब कीवी बैंक के पार्शियल सेल ऑफ यानी कुछ हिस्सा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने का ऑप्शंस पर दोबारा काम शुरू कर दिया है. कुछ रिपोर्ट की अगर सुने तो गवर्नमेंट चाहती है कि कीवी बैंक फ्यूचर में और बड़ा बैंक बने और ऑस्ट्रेलिया के बिग फोर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे. लेकिन ऑफिशियल्स का कहना है कि गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा कैपिटल देने के लिए लिमिटेड फंड्स हैं, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी कंसीडर किए जा रहे हैं. पहले कीवी बैंक ने लोकल इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करने का प्लान बनाया, लेकिन वो प्रपोजल लास्ट ईयर रोक दिया गया था. अब वंस अगेन ट्रेजरी और बैंक मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ और फंडिंग मॉडल्स पर डिस्कशन कर रहे हैं. वैसे गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज और पब्लिक में इस इशू को लेकर मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं. सो ये सवाल ये है कि क्या कीवी बैंक पूरी तरह से पब्लिक ओनरशिप में रहेगा या फ्यूचर में प्राइवेट इन्वेस्टर भी इसका हिस्सा बन पाएंगे. 5599 नंबर जहाँ पे आप मुझे दे सकते हैं जवाब.

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 21 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 0% चांस है बारिश के, लेकिन 5:25 पे होगा आज का सनसेट।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे लंच बॉक्स विद केतन
1: Good afternoon, Auckland. Well, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से, जी हाँ, 104.2 FM या फिर रो ऐप के जरिए, या फिर ऑफ कोर्स hum.roa.nz के जरिए भी आप मुझे सुन सकते हैं। वैसे यस, अगर आप रुआ के जरिए अगर आप सुनेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास मौके भी मिलेंगे और उसके थ्रू आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो यस, आज के भी क्या क्या कॉम्पिटिशन है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना पिंकी, ममता शर्मा की आवाज में, मीट ब्रॉस, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। बट यस, अभी के लिए थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन की भी बातें होगी, उसके टॉपिक पे भी थोड़ी नजर में डालूंगा। बट यस, डू सेंड मी मैसेजेस लाइक यू डिड बिफोर ऑन 5599।
3: क्या अबे नौटंकी बंद करो, पिंकी आ रही है।

0: स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में फिर से। आज इस आर में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत चीज भी होने वाली, यानी कि आपको फिर से एक कोड दिया जाएगा जहां पे आप जीत सकते हैं एक ड्रॉ में शामिल होने का मौका, और उसके थ्रू यू कुड बी द वन जो जीतेंगे एक रिटर्न फ्लाइट टू फिजी। जी हाँ, क्या बात है। तो उसका कोड अगर आपको सुनना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज एक बज चुकी है और एक बजे यानी कि एक बजे बाद आपके सामने ये जो स्पेशल कोड है वो कभी भी आ सकता है। जी हाँ, सो यस, बहुत ही बढ़िया है, चार अक्षर का ये कोड है आज का, तो उसको जानने के लिए बस मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। बट यस, चडल इज द गेम जो आप खेल सकते हैं रो ऐप पे, जो आपको मौका दे सकता है $100 जीतने का हर दिन। यानी कि आपको बेसिकली बॉक्सेस जो है फिल आउट करने हैं, फ्रेजेस जो है उसको फिल आउट करने हैं। जितने कम मिस्टेक्स करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके $100 जीतने के। काफी लिसनर हमारे थ्रू जीते हैं, यानी कि हम के लिसनर काफी जीते हैं $100 अ डे, आप भी उनमें से हो सकते हैं वन। सो यस, $7,000 तक के गिवअवेज हमारे पास है। सो यस, स्टार्ट नाउ एंड स्टार्ट प्लेइंग यार। वैसे थोड़ी देर में आपके लिए लंच टाइम रेंट लाइन भी आने वाली है, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स मुझे भेजिए, कुछ ऐसी बातें मुझे भेजिए जो सचमुच आपको इरिटेट करती है, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन दैट। सो यस, लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में थोड़ी देर मिला होगी, लेकिन आप भेजिए 5599 पे। लंच बॉक्स
1: विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट। Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल, आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस, जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे, क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक, साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स, सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में। ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल, स्टोरेट रोड, माउंट रॉस्कल। विजिट टाइगर एट soho.co.nz।
6: Danny didn't think he needed a DVS system.
7: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
6: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
7: Nah, only one room. It was just too noisy.
6: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World Online Same Day Click and Collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
9: Elite Bathroomware help you create a bathroom you'll love.
10: With a huge range of vanities, tapware, showers and baths, Elite Bathroomware makes it easy to compare, choose and customise.
9: The team's there to help with plenty of options to suit your bathroom space, your style and your budget.
10: For quality that fits the way you live, browse online or visit the spectacular Allens Road East Tamaki showroom. It's worth the visit.
9: Elite Bathroomware.
10: A reflection of you.
2: With Kaitan.
11: मुझे पसंद है लड़का।
2: हम। Lunch time, rant line.
0: वेल यस, लंच टाइम रेंट लाइन में आपका स्वागत है। आप मुझे अभी भी भेज सकते हैं इसके कुछ जवाब 5599 पे। बट यस, अभी के लिए मैं सबसे पहले मैसेज पढ़ लेता हूँ। यार ये नाम नहीं लिखा है इन्होंने, आप नाम भेजेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिकॉज नाम अगर आएंगे तो मुझे पता होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। हाँ सॉरी, मैं बीच में लॉस्ट हो गया था। बट यस, व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स एक्चुअली, इन्होंने ओके यस जस्ट रिसीव द मैसेज, उन्होंने नाम बताया अपना संजना। वेल यस, वो कहते हैं व्हाई डू इंडियन पेरेंट्स सेज वी आर लिविंग इन 5 मिनट्स बट इट्स स्टिल बी टेकिंग स्टिल बी टॉकिंग आउटसाइड द हाउस 1 आवर लेटर। ये मेरी मॉम के साथ बहुत होता है, मैं जब घर पे जाता हूँ मैं बोलता हूँ मम्मी कहाँ हो आप, बस 5 मिनट में आ रहे हूँ, और वो 5 मिनट का वो 1 घंटा हो जाता पता नहीं चलता, यानी कि बट मैंने देखा ये इंडियंस में काफ़ी कॉमन चीज़ है। आई एम नॉट श्योर फीजी इंडियंस में ये चीज़ होती है नहीं होती है, बट इंडियंस में काफ़ी कॉमन चीज़ है कि उनका जो टाइम का जो डायलेशन है वो कैलकुलेशन जो उनकी बहुत ही गलत रहती है, या फिर उनको पता नहीं होता है, वो बोलते हैं बस एक मिनट में आया, या फिर बस मुझे 1 सेकंड देना, 1 सेकंड का मतलब भाई 1 सेकंड, 1 सेकंड का वो 1 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट बोल के 1 घंटे तक नहीं आते हैं। सो यस, दैट इज़ क्वाइट कॉमन इन आर कम्युनिटी। ये गोरों में भी होता है क्या, लाइक यहाँ पे भी होता है क्या, जो लोकल से कीवीज हैं उनमें भी होता है क्या, बताइए मुझे। पर यस, किशन कहते हैं मैंग्रे से फीजी इंडियन मम्स डोंट बिलीव इन मेजरमेंट्स व्हाइल कुकिंग, एवरीथिंग इज जस्ट एस्टिमेट। हाँ वो हमारे यहाँ पे भी होता है, लाइक वी ऑल्सो डू द सेम थिंग, वी वो एक्सपीरियंस के बाद आता है, नॉट लाइक प्रॉपर तरीके से। मेरे ख्याल से मेजरमेंट वहाँ पे होता होगा ना, आई मीन रेस्टोरेंट में यहाँ पे। रवि कहते हैं ऑकलैंड ट्रैफिक सो बैड नाउ, गूगल मैप्स साउंड्स पर्सनली डिसअपॉइंटेड इन मी, ट्राई एप्पल मैप्स। उसके बाद मीना कहती है व्हाई डू आंटीज एट फंक्शन इंस्पेक्ट योर प्लेट लाइक दे आर कस्टम्स ऑफिसर। हाँ ये चीज़ भी काफ़ी कॉमन है, ये चीज़ मैंने देखी, जब हम भर देते हैं प्लेट यूँ, मतलब खाना है दबा के, और देखते हैं कि लोग हमें देख रहे होते हैं कि भाई आज खा तो ऐसे रहा है जैसे सालों साल से खाना नहीं मिला। अर्जुन कहते हैं एवरी इंडियन डैड सडनली बिकम्स फाइनेंशियल एडवाइजर आफ्टर वॉचिंग 1 YouTube वीडियो। मेरे पापा तो बचपन से ही है, आई मीन मेरे बचपन से, नॉट हिज बचपन, क्योंकि उनके बचपन का मुझे कैसे पता होगा। प्रीतिका कहती है प्लीज टेल पीपल हु स्टॉप ट्रॉलिंग इन मिडल ऑफ आइल, सम ऑफ अस केम टू शॉप नॉट अटेंडिंग फैमिली रीयूनियन। ये होता है इंडियन ग्रोसरी स्टोर में काफी होता है, वो पूरा ब्लॉक ही कर देते, देन वी हैव टू ईदर वेट और वी हैव टू चेंज द आइल टू गो बिहाइंड देम। शान कहते हैं ब्रो रेंट गोज अप एवरी ईयर बट माई रूम समहाउ कीप्स गेटिंग स्मॉलर। भाई तुम्हारा सामान बढ़ रहा है, आई मीन ये जो भी आप खरीदते हो नई चीज़ हैं ये सब है उससे बढ़ रहा है। सो यस, आखिरी मैसेज पढ़ते हैं लता का, वो कहते हैं इंडियन पेरेंट्स स्टिल थिंक्स अनप्लगिंग माइक्रोवेव सेव्स 1000 ऑन पावर बिल। हो सकता है यार, मतलब मेरी बीवी तो करती है लाइक स्विच ऑफ कर देती है, मतलब मेरे को बताओ यहाँ पे अगर कोई टेक्नीशियन है तो स्विच ऑफ कर रहे हैं, मतलब वायर लगे हुए प्लग इन सब है, लेकिन अगर आपका स्विच ऑन है पूरी रात भर, इज दैट गोना कॉस्ट अ लॉट, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा पावर, मुझे बताइए यार, ये तो मेरे को जानना है। 5599। चलो एक और आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। आई एम ऊबर ड्राइवर एंड ऑफन फील राइडर्स पुट रबिश इन द कार, व्हाई दे नॉट फील बैड एंड हैविंग रिस्पेक्ट फॉर द कार एंड ड्राइवर, सम पीपल दैट इज ट्रू सुनील। वेल आप उनके मुंह पे जवाब सवाल पूछेंगे भाई तू भी अपनी कार ऐसे ही गंदी करता है क्या। बट जोक्स अपार्ट, आप एक्चुअली अपफ्रंट होके कह सकते हैं कि यार प्लीज डोंट मेक श्योर दैट यू डोंट यू नो थ्रो रबिश इन माई कार, सो ये जस्ट क्लीन अप, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है दैट जो ड्राइवर्स होते हैं अगर मेरे शूज़ डर्टी हैं या फिर इफ आई एम ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग वो डेफिनेटली मुझे ना कर देते हैं। सो या यू कैन ऑल्सो ट्राई, बट थैंक यू एवरीवन आपके मैसेजेस के लिए, आप बस बने रहिए, थोड़ी देर में आपके लिए बॉलीवुड की खबर तो लेके आऊँगा, लेकिन येस एज यू ऑल नो हम बात करेंगे फ्लाई फैंसी, जी हाँ फ्री एयर टिकट के जीतने के कोड।
2: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
2: आ गया.
0: हम
3: चलिए बात करते हैं स्पेशल कोड की. जी हाँ, आई नो यू हैव बीन वेटिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग. और यस, 1 बजे के बाद हम कभी भी आपको बता सकते हैं, तो वो टाइम आ चुका है. अभी का जो कोड है वो है वुला. बुला नहीं, वुला, यानी कि VULA. बी मत लिख देना, वी बोले तो वॉयलेट. सो VULA आप रोआई पे जाके फट से लिख दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीत सकें ये अमेजिंग सरप्राइज. आई मीन ड्रॉ में शामिल हो सके और हो सकता है वो आप जीत जाए और फीजी में घूम के आइए वापस. सो यस, वुला इज द कोड. Put it in your app.

0: चलिए बात करते हैं लेटेस्ट खबर की। अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि तोरंगा के रेसिडेंट्स के लिए एक डिसअपॉइंटिंग खबर है। तोरंगा सिटी काउंसिल ने कॉस्ट कटिंग के चलते दो लाइब्रेरीज और एक पब्लिक स्विमिंग पूल्स के संडे आज बंद कर दिए हैं। जी हाँ, इस फैसले के बाद अब ग्रीन टन लाइब्रेरी, पापा मोआ लाइब्रेरी और ओ टू मोएटाई पूल संडे को बंद रहेंगे। काउंसिल का कहना है कि संडे को इन फैसिलिटीज का यूज कंपैरेटिवली कम होता है और ये स्टेप रेट्स इंक्रीज को कंट्रोल में रखने के लिए भी लिया गया है। वैसे लोकल कम्युनिटी और लाइब्रेरी सपोर्टर्स ने इस डिसीजन पर नाराजगी जताई है। फ्रेंड्स ऑफ तोरंगा सिटी लाइब्रेरी ने इस शॉकिंग सिचुएशन बताया है और उनका कहना है कि कई फैमिलीज और वर्किंग पीपल सिर्फ संडेज को ही लाइब्रेरीज और पूल यूज कर पाते हैं। वैसे रेसिडेंट्स का मानना है कि पब्लिक लाइब्रेरीज और पूल्स सिर्फ फैसिलिटीज नहीं बल्कि कम्युनिटी कनेक्शंस और लर्निंग के इम्पोर्टेंट सेंटर्स भी हैं। अब देखते हैं, देखना होगा कि पब्लिक फीडबैक के बाद काउंसिल अपने डिसीजन पर दोबारा इस पे विचार करती है या कंटिन्यू रखती है।
1: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा। और ये कॉफी lukewarm, a taste बिल्कुल heartbreak जैसा। Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए, तू beach के लिए बनाए, तू life को enjoy करने के लिए बनाए।
2: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड।
4: Gold Coast is on sale now at Qantas. From sun-soaked beaches and luxury retreats to lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Book now at Qantas.com. Hurry, sale ends Tuesday, May 19. Terms and conditions apply.
5: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
6: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
5: We can help you get winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
7: लंच बॉक्स विद केतन।
8: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।

चलिए बॉलीवुड पे थोड़ी नजर डाल देते हैं अभी। सबसे पहले रब्बा रब्बा सुखविंदर सिंह गाना चलाऊं, उससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन ने अपने सुपरहिट फिल्म मीमी के लिए नेशनल अवार्ड जीतने को अपने करियर का सबसे बड़ा मोमेंट बताया है। एक रिसेंट इंटरव्यूज में कृति ने कहा है कि इस अवार्ड ने उन्हें फील करवाया कि उन्होंने इंडस्ट्री के कई स्टीरियोटाइप्स और नोशंस को तोड़ दिया है। कृति ने बताया कि मीमी उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशनल और चैलेंजिंग जर्नी भी थी। फिल्म में उन्होंने सरोगेट मदर का रोल निभाया है, जिसके लिए उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफी अप्रिशिएट किया। एक्ट्रेस ने कहा कि आउटसाइडर्स होने के नाते उन्हें बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने कई बार रोल्स भी लूज किए, लेकिन मीमी ने उनकी इमेज और करियर दोनों को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। वैसे कृति सैनन आज बॉलीवुड की टॉप एक्टर्स में शामिल हैं और फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बता रहे हैं। वैसे एक्ट्रेस का कहना है कि हार्डवर्क, टैलेंट और रिस्क लेने की हिम्मत ही सक्सेस का असली फॉर्मूला होता है। वेल यस, आप मुझे बताइए 5599 पे कि आपको कौन सी कृति की फिल्म जो है बहुत ही पसंद आई। मैं आपने बताऊं यार, मेरे को पता नहीं एक्चुअली, मेरे को जितना याद आ रहा है मुझे लेटेस्ट मूवी वो भी पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबसे बेस्ट है, बट वो भी मुझे पसंद आई जो शाहिद कपूर के साथ थी। क्या नाम था फिल्म का, क्या नाम था, भूल गया मैं यार। तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, कौन सी क्या मूवी का क्या नाम है, भूल गया, याद नहीं आ रहा यार।

0: क्या हाल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेलियस, मेरा नाम केतन है, बने रहिए, आज बहुत सारी बातें होने वाली है। यस, इस आर में आपके लिए लोकल आर्टिस्ट के गाने भी हम चलाएंगे और आज की जो लेटेस्ट आज की जो लोकल आर्टिस्ट है उसका भी नाम हम थोड़ी देर में अनाउंस करेंगे, बट एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना तेरा रास्ता छोड़ू ना। वेलियस, आईपीएल की भी खबर लेंगे, लेटेस्ट खबर पर भी नजर डालेंगे और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी बातें करेंगे। सो यस, बने रहिए और सुनते रहिए लंच बॉक्स शो।
1: बचाओ क्या,

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी आज के जो लोकल आर्टिस्ट है उनके बारे में। आई सी यूज द सॉन्ग जो मैं थोड़ी देर में चलाने वाला हूँ, और आज के जो लोकल आर्टिस्ट है वो है सेंसी प्रभाकर। के बारे में अगर जाने तो वो एक इंडियन R&B आर्टिस्ट हैं, साउथ ऑकलैंड से। काफ़ी टाइम से गाने बना रही हैं, लिख रही हैं, और करीबन 350 से ज़्यादा उन्होंने गाने बना चुकी है, और काफ़ी नोन है उनकी, यू नो, काफ़ी फेमस है फॉर देयर स्मूथ साउंड एंड इमोशनल ऑनेस्ट लिरिसिज्म। जी हाँ, साथ में ऑफकोर्स वो दो बार फाइनलिस्ट भी रह चुकी है फॉर द प्ले इट स्ट्रेंज लाइन फाउंडेशन सॉन्ग राइटिंग कॉन्टेस्ट, और थर्ड पोजिशन भी रही है उनकी सुर सम्राट जो कि सिडनी में हुआ था, और विनर भी रह चुकी है सूसो ई बेस्ट वोकल कंपोजिशन। वेल, फॉर समवन हु डजंट नो व्हाट इज दिस, हम मौका देते हैं, मई का महीना लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ताकि वो अपने गाने हमारे साथ हमें भेज सके, buzz@humfm.com पर, ताकि उनके गाने हम शॉर्टलिस्ट करें और चला सकें यहाँ पे, और साथ में उनको मौका मिलेगा हमारे साथ कोलैबोरेशन करने का भी हमारे इंस्टाग्राम पे। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड वी विल गोइंग टू काउंट एवरीथिंग कि भाई किसको कितने ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, शेयर्स मिले हैं, कमेंट मिले हैं, और ऑन एयर भी कितने वोट्स मिले हैं। सो वो सारे कंबाइन करके टॉप 3 जो फाइनलिस्ट होंगे वो मौका पाएंगे टू बी फीचर्ड इन द रो ऐप। जी हाँ, रो ऐप आपको पता ही है क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसके ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। बट यस, अभी के लिए सेंसी प्रभाकर को वोट करने के लिए आप मुझे MM लिखिए, उनका नाम लिखिए सेंसी, और 5599 पे भेज दीजिए।

0: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
1: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer. Shower.

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई है।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड में एक कंट्रोवर्शियल सोलर फार्म प्रोजेक्ट को लेकर नया ट्विस्ट सामने आया है। कैंटबरी के वाईपारा एरिया में प्रपोज्ड लार्ज स्केल सोलर फार्म का साइज जो है अब कम कर दिया है क्योंकि साइट पर नेटिव वेजिटेशन हटाए जाने के बाद कंप्लायंस इश्यू खड़े हो गए। वैसे रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंड ओनर ने इंडिजिनियस मैटेगोरी वेजिटेशन क्लियर कर दी है, जिसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपर्स को रिसोर्सेज कंसेंट एप्लीकेशन का एक हिस्सा विड्रॉ करना पड़ा। ये सोलर फार्म ओरिजिनली करीब 181 यानी कि 181 हेक्टर्स में डेवलप्ड होना था और इसमें लगभग 250,000 सोलर पैनल्स लगने वाले थे। लोकल रेसिडेंट्स और एनवायरमेंटल ग्रुप पहले से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा सोलर फार्म लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ और प्रॉपर्टी वैल्यूज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। कुछ लोगों ने ग्लेयर और स्ट्रॉन्ग विंड्स को लेकर भी कंसर्न उठाया है। वैसे हुरुनुई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अब इस प्रोजेक्ट पर पब्लिक हियरिंग चल रही है, जहां 150 से ज़्यादा सबमिशंस आए हैं और उनमें मेजॉरिटी अपोजिशंस में है। वैसे ये केस एक बार फिर सवाल खड़ा कर रहा है, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए।
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

वेलकम बैक। चलिए आईपीएल की बात कर लेते हैं। वैसे कुछ मैचेस हुए हैं, कुछ नहीं एक्चुअली, कल तो एक ही मैच था। जी हाँ, जो गुजरात टाइटन वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में मैच था और 168 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर, जिसके जवाब में 86 पे ऑल आउट हो गई सनराइजर हैदराबाद। यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे तो हुआ है, बट दोनों अभी टॉप फोर में तो है आई गेस, थोड़ी देर में पता कर लेते हैं। बट यस, आज के जो मैचेस हैं उसे भी आप इंजॉय करिए। द ओनली थिंग इज, वो आज नहीं एक्चुअली, दिन बदल जाएगा जब ये चालू होगा। बट आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में मैच है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर, इनके बीच में मैच है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं। सो यस, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग नाइट। और पॉइंट टेबल्स की अगर बात करें, काफी नजदीक पे आ चुकी है प्ले ऑफ, कौन होने वाले हैं। गुजरात टाइटन इज ऑन टॉप राइट नाउ, वाओ, और आरसीबी जो है वो दूसरे नंबर पे है, और एसआरएच यानी कि सनराइजर हैदराबाद एक ये मैच हारने के बाद तीसरे नंबर पे आ चुकी है। पंजाब इज ऑन फोर्थ, सीएसके ऑन फिफ्थ, राजस्थान ऑन सिक्स्थ, डेकन चार्जर्स ऑन सेवन, केकेआर, मुंबई इंडियंस, एलएसजी इस बार बाहर होने वाले हैं। देयर इज नो, आई डोंट थिंक सो, देयर इज ओनली, देयर इज एनी चांस ऑफ देम टू कम इन टॉप फोर फॉर एज ऑफ नाउ। बट यस, बने रहिए, और भी बातें होती रहेगी। अभी मैं लेके आता हूँ कुछ और अपडेट, यानी कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट और कौन कौन से पॉडकास्ट हमने स्टोर किए हैं हमारे रो ऐप पे।

Well, काफी interesting topic है. I know all the employees will going to be so happy with this news, and employer थोड़ा सा नाराजगी होगी, but it's okay यार, this is also very important. और इस topic के बाद मुझे लगता है मुझे भी मेरे बॉस से पूछना चाहिए, भाई मेरा कब पे रेज हो रहा है. बट प्रॉब्लम ये है कि यार पे रेज जो है वो कैसे पूछें, क्या कैसे शुरुआत करें, काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं. तो यस, सबसे पहले तो इस पर थोड़ी सी जो रिसर्च की है मैंने उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं. आज एक तो इतनी महंगाई है और काफ़ी लोग सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सवाल होता है कि बॉस से पे रेज मांगे कैसे. एक्सपर्ट कहते हैं कि सैलरी डिस्कशन इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए. करियर एडवाइजर का मानना है कि पे राइज मांगने से पहले अपनी अचीवमेंट्स और कंपनी में कंट्रीब्यूशन क्लियरली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए कहने से कुछ ना होना है. एम्प्लॉयज़ को देखना भी चाहिए कि उन्होंने कहाँ पे थे हम थे, हाँ. सो सिर्फ अपने को पैसे बढ़ाना है, ये टॉपिक मत लेके चला जाइए एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉयज़ को दिखाना भी चाहिए कि उन्होंने बिजनेस की वैल्यू जो है कितनी अच्छी इंपॉर्टेंस दी है और कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है. वैसे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मार्केट सैलरी रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रियलिस्टिक और फेयर सैलरी एक्सपेक्टेशन के साथ मीटिंग में जा सकें. और अगर कंपनी तुरंत पे राइज ना दे तो फ्लेक्सिबल आवर्स, बोनसेस या एक्स्ट्रा बेनिफिट पर भी बात की जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में कई वर्कर्स आज भी पे राइज मांगने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट का कहना है कि कॉन्फिडेंस, प्रिपरेशन और राइट टाइमिंग ही सक्सेसफुल सैलरी नेगोशिएशन की है. सो यस, याद रखिए, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बताएंगे तो शायद कोई और भी नहीं बताएगा कि आप कितना डिजर्व करते हैं. So that is you who should be taking the first chance. Lunchbox with Ketan. Mujhe pasand hai ladka.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम
1: Tech Talk.
4: चलिए बात करते हैं टेक टॉक की। काफी ऐसी चीजें हैं जो आ रही है मार्केट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक गेम लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले मार्केट में है या नहीं है या स्पेशल लोगों के पास ही है, बट दैट गेम इज एक्चुअली यू नीड टू प्ले विथ योर ब्रेन। दैट मीन्स देयर इज नो कंट्रोलर इन्वॉल्वड इन दैट, द कंट्रोलर इज योर ब्रेन। एक डिवाइस है जो आपके सर पे पहनना पड़ता है और आपके सामने एक गेम बोर्ड है, एक फिजिकल हार्डवेयर गेम बोर्ड है जिसमें कार रेस करेगी और वो रेसिंग ऐसे होगी जैसे आप अपने ब्रेन से कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे इतना तो अभी मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, बट इट इज़ साउंडिंग वेरी अमेजिंग। बट ऑन अदर साइड मेरे को ये भी लगता है कि शायद इट विल बी अफेक्टिंग योर ब्रेन एज वेल। बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं यार आगे जाके क्या होगा। जितनी ज़्यादा आपकी फिजिकल चीज़ों से दूरी होती जा रही है, उतने हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बीमारियां भी। आई नो कंफर्ट इज़ देयर, बट बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। बट यस, एक और चीज़ है, 2026 में 10 फीट और 240 वॉट USB-C ब्रेडेड केबल्स की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इसका रीज़न सिर्फ लंबी वायर नहीं बल्कि सुपरफास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी है। ये नई केबल्स USB PD 3.1 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है जिससे MacBook Pro, गेमिंग लैपटॉप्स और 4K मॉनिटर्स भी फुल स्पीड पर चार्ज हो सकते हैं। इनमें स्मार्ट ई मार्कर चिप होती है जो ओवरहीटिंग से बचाती है और डिवाइस के हिसाब से सेफ पावर सप्लाई भी करती है। साथ ही ब्रेडेड नायलॉन डिज़ाइन इन केबल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैंगल फ्री बनाते हैं, मतलब वायर जल्दी टूटेगी नहीं और बैग में उलझेगी भी नहीं। और 10 फीट लेंथ की वजह से यूज़र दूर बैठकर भी कंफर्ट चार्जिंग और गेमिंग का मज़ा एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में ये केबल्स अब सिर्फ एसेसरी नहीं बल्कि हाई परफॉर्मेंस टेक टूल्स भी बन चुकी है जो आप ट्राई करना चाहेंगे।

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया रहा आज की बातें, आज के यू नो जो सवाल जवाब रहे हैं और आपके मैसेजेस जो मुझे मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऐसे ही आप बने रहिए, एंजॉय करते रहिए. अभी थोड़ी देर में सैंडी जुड़ जाएगी आपके साथ कॉफी ब्रेक में. मेरी मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम 12 से 3, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, एंड यस डू स्पेंड सम टाइम, टेक आउट सम टाइम फॉर योर AI वर्ल्ड, ट्राई टू लर्न इट.

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी planning से आए हैं. 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
4: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
3: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है. एक दिन और इन्होंने,
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
6: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Prime Minister is promising a careful approach to adapting immigration policy. Christopher Luxon has broached the topic in a pre-budget speech. He says although the country doesn't have an illegal immigration problem, it is important to maintain the existing smart system.
7: The system works where it doesn't in many other countries is because we have a very smart, targeted, fair immigration system that we constantly dynamically adjust so that it's linked to our economic strategy.
6: He also reiterated that fears of mass immigration following the India FTA are factually wrong. The government plans to bring in tougher penalties for misleading prices. Proposed changes to the Fair Trading Act would see companies have to pay up to $5 million for deceptive tactics. Part of State Highway 2 near Hastings is expected to be shut for some time after a crash. Just one vehicle was involved on northbound lanes near the roundabout with State Highway 50. Emerging data shows dodgy QR codes account for about 1 in 10 cyber attacks. ESET country manager Scott Lehman encourages caution.
8: You could just as easily have someone put a QR code up in a parking lot saying scan here to make a payment for your parking, or someone could put a sign up in a shop window saying scan here for free Wi-Fi.
6: To rugby with Shift 4, the Super Rugby Pacific teams for the weekend are out in an hour. The big game at Eden Park on Saturday evening, the Blues and the Hurricanes. You don't have to be Sherlock Holmes to work out that there will be quite a few changes to the Hurricanes. And to the basketball, the NBA Conference semis, a best of seven contest. The San Antonio Spurs taking a 3-2 series lead over the Minnesota Timberwolves with a 126-97 win.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
3: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.3 डिग्रीज है और आज का ओवरनाइट काफी चिली वेदर रहेगा. 8 डिग्रीज विल बी द टेम्परेचर. सनसेट आज का 5:25 पर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
9: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
3: 3:01 हो चुका है. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है कॉफी ब्रेक में. और 4 बजे के बाद या फिर उससे पहले भी मेरा साथ यहाँ पे हो जाएगा रुजबे के साथ. सो कैसे हैं आप और आपका आज का डे कैसा जा रहा है? वेंसडे, इट इज 13th of May. अगर आज आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. अगर आज आपके लिए बहुत ही खास दिन है, कुछ यू नो आपकी लाइफ में कुछ है हुआ है करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री 5599 पर यहाँ पे आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं इसके बारे में. अभी आपने वैसे न्यूज़ में भी सुना अबाउट दिस न्यू स्कैम. न्यू तो नहीं है, वैसे चल रहा है काफ़ी समय से, लेकिन अभी दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है QR कोड को लेके. यू नो जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, QR कोड इज़ एवरीवेयर. मतलब कोई भी चीज़ हमें चाहिए

ये पार्किंग कहीं पे अगर आपने की है तो वहाँ पे QR कोड में भी बना होगा कि QR कोड के थ्रू स्कैन करो, यू विल एबल टू पे द पार्किंग वन। बट यू नीड टू नो कि पार्किंग का जो आप पेमेंट करते हो, अगर आप पार्किंग के बहुत सारे पेमेंट्स करते हो, यू नो कि राइट वे क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है। अगर रैंडमली कहीं पे कुछ ऐसा पोस्टर लगा है जहाँ पे ऑकलैंड ट्रांसपोर्ट या किसी का भी कुछ बैनर वगैरह नहीं है, तो यस वहाँ पे कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि ऐसी चीज़ें आप थोड़ी डबल ट्रिपल चेक कर रहे हैं बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट थ्रू QR कोड।

0: in me. Power through mess with Morning Fresh.
1: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
0: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
4: क्यों क्या हुआ
3: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछ हुई मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800-564-424
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
7: Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.

0: Andy. 3:16 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड और भी बातें करेंगे आपके सुपर सिटी में क्या क्या हो रहा है, चर्टल के बारे में भी आपको रिमाइंड करवाना है. फॉर नाउ आरजू इज हियर. गुड आफ्टरनून आरजू, हाउ आर यू?
1: गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू?
0: बढ़िया है. सबसे पहले हिंदी में बात करना शुरू कर दिया, डर का माहौल हो गया क्या आरजू?
1: ट्राइंग वन डे एट अ टाइम. ओह नहीं, हिंदी में बोलना था.
0: हाँ,
1: एक दिन. हाउ डू यू से इट? वन डे एट अ टाइम.
0: बताओ कैसे बोलते हैं. कोई हेल्प करो आरजू की यहाँ पे. 0800 हम इज अ नंबर. अगर ना ये फ्रेज इसको हिंदी में बोलना है, और मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कह रही हूँ, फ्रेज
1: कदम कदम से,
0: वन डे एट अ टाइम, ऐसा फ्रेज अगर आरजू को हिंदी में बोलना है, आप आज उसकी हेल्प करो कि हिंदी में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, किस वे से इसको बोल सकते हैं. और डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत करना गाइस, कि वो भी कर सकती है अभी ChatGPT में जाके. लेकिन आपको बताना है कि अगर ये उसको हिंदी में बोलना है वन डे एट अ टाइम, तो कैसे बोलेगी. बट इट्स फनी राइट, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कितने ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, कितने ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो एक्चुअली में इंग्लिश के ही होते हैं. वन डे एट अ टाइम मैंने कभी वैसे ये फ्रेज जो है, ये जो लाइन है, कभी हिंदी में नहीं बोली है.
1: मैंने भी नहीं,
0: मतलब मैं यहाँ पर हिंदी में ही बात करती हूँ ना, मैं तो हिंदी में नहीं बोली है. एंड पंजाबी घर में बात करती हूँ, पंजाबी में भी नहीं बोले.
1: एक नेपाली में भी मैंने नहीं,
0: मतलब
1: एक एक दिन करते कर हम होंगे कामयाब.
0: किस वे से बोलेंगे ना
1: गाके.
0: या अगर कोई शुद्ध हिंदी जिसको आती है, एंड बहुत लिसनर्स हैं हमारे जिनको बहुत शुद्ध हिंदी आती है, और मतलब बड़ी अच्छी हिंदी उनको आती है, तो कोई बताओ यहाँ पे प्लीज कि वन डे एट अ टाइम
1: कैसे बोलता है.
0: अगर इस फ्रेज को हिंदी में बोलना हो विदाउट डायरेक्ट ट्रांसलेशन, not word to word translation,
1: so same phrase, similar, like same phrase,
0: similar phrase या कुछ ऐसा, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो हिंदी में वो कौन सा सेंटेंस होगा जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब मान जाऊंगी जो मुझे यहाँ पे बताएगा.
1: आपको भी नहीं मालूम?
0: नहीं पता मुझे. ओके लेट्स सी. हाय,
2: एक टाइम पे एक काम.
0: एक, अरे वाह, एक टाइम पे एक ही काम. बच्ची को पता है आरजू.
1: थैंक यू. आपका नाम क्या है?
2: शनाया शर्मा.
1: शनाया, थैंक यू.
0: एंड हाउ ओल्ड आर यू?
2: 6 ईयर ओल्ड.
1: ओह माय गॉड,
0: 6 ईयर ओल्ड.
1: आपका हिंदी बहुत अच्छा है.
0: बहुत अच्छा है. और ये मम्मी ने बताया अभी कि यू ऑलरेडी न्यू दिस? मम्मी ने हेल्प किया ना थोड़ा,
2: मुझे बताया था.
1: So cute.
0: So honest, यार. It's okay. At least आपने बोला कितने अच्छे वे से है, वो मैटर करता है.
1: मैं हमेशा याद करूंगी,
0: याद रखूंगी.
1: रखूंगी. हाँ.
2: Okay, have a good day.
1: Thank you
0: so much. Bye. 6 साल की बच्ची को पता है आरजू, अभी तो बाहर पानी ढूंढने जाते हैं. Bollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

328 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड रिमेम्बर टर्डल भी आपको खेलना है, जहाँ पे एवरी डे यहाँ पे आपको चांसेस मिल रहे हैं कुछ ना कुछ जीतने के लिए। यू कैन विन $100 अ डे, सो एवरी डे यू प्ले यू आर इन द ड्रॉ टू विन $100। चडल में होता क्या है, वहाँ पे एक कीवी वर्ड सेइंग या फ्रेज आपके लिए होता है जिसे आपको क्रैक करना है, गेस करना है। एंड अगर आप सही गेस कर लेते हैं एंड द क्विकर यू आर द बेटर यू स्कोर। सो जितने हिंट्स आप वहाँ पे लेते हैं उतने कम आपको स्कोर मिलता है। तो अगर आपका स्कोर ज़्यादा हो रहा है उतनी ही आपकी जो एंट्रीज है वहाँ पे बढ़ती जा रही है एंड उतनी ही बोनस एंट्री आपको मिल सकती है वहाँ पे। सो काफ़ी कैश प्राइज रहते हैं। वन ऑफ द डे तो ऐसा भी था जब एक दिन में आपको $1,000 जीतने का मौका मिल रहा था, बट फॉर नाउ इट इज़ $100 कैश प्राइज। एंड रोवा से याद आया, एंड चोटल आप रोवा पे खेलते हैं, रोवा से याद आया कि यहाँ पे फ्लाई अवे फ्रेंजी का स्पेशल कोड भी आपको मिलने वाला है आज 5 बजे के बाद। सो फ्लाई अवे फ्रेंजी क्या है? फ्लाई अवे फ्रेंजी में आप टिकट जीत सकते हैं, रिटर्न एयर टिकट टू फीजी, एक बहुत ही अच्छी हॉलीडे स्पेंड करके आप वापस यहाँ पे आ सकते हैं अपने काम पे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फ्लाई अवे फ्रेंजी में हम कोड देते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे, और आज भी 5 से 6 के बीच में किसी भी टाइम पे आपको एक कोड मिलेगा जो 1 आवर के लिए एक्टिव रहता है। आपको जाना है hum.rover.nz पे, स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे फ्लाई अवे फ्रेंजी लिखा है, क्लिक ऑन इट एंड एंटर द कोड। इतना से करने में आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे 1 रिटर्न एयर टिकट टू फीजी आपके नाम हो सकती है। बट रिमेंबर विद इन द टाइम फ्रेम जब हम आपको यहाँ पे कोड देते हैं तो उसमें 1 आवर आपको मिलता है, एंड पूरा दिन डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आपको मिलते हैं, जैसे कि 8 से 9 के बीच में एक डिफरेंट कोड है, फिर 11 बजे के बाद एक डिफरेंट कोड है, 1 बजे के बाद एंड 5 बजे के बाद डिफरेंट कोड रहेगा। एंड ये हफ्ता लास्ट वीक है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सो डोंट मिस द चांस, बिकॉज जितनी ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी उतने ही चांसेस है आपके कुछ ना कुछ जीतने के लिए।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Say no to mold and mildew. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800-DVS-DVS.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।

18 मिनट बाकी है 4 बजने में. एंड वैसे रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसके बारे में बात की गई थी कि यू नो कैन सिटीजनशिप टेस्ट जो है वो मेजर कर सकता है कि व्हाट इट मींस टू बी अ कीवी. सो रिसेंट जो इसके बारे में न्यूज़ आई थी, न्यूजीलैंडर्स जो है दे लाइक टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अनकॉम्प्लिकेटेड लॉट. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफैक्ट कि एक शॉर्ट टेस्ट जो है ये डिटर्मिन कर सकता है कि is it fit, is the person fit enough to become a kiwi. So ye basically plan hai minister of internal affairs ka, Brooke Wynne Weldon, and inhone bataya hai ki inhone announce kiya hai ki from late 2027 part of process of becoming New Zealand citizen will entail scoring at least 75% in 20 question multiple choice test. अभी क्या है कि अगर आपको न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप चाहिए तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस आपका वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है आप यहाँ पे रहने का, न्यूजीलैंड में रहने का, आपको वो कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है. देन आपको एक सेरेमनी में सिटीजनशिप मिलती है. दैट्स हाउ इट वर्क्स राइट नाउ. बट इन्होंने बोला है कि लेट 2027 में क्या होगा कि एटलीस्ट 75% आपको स्कोर करना होगा, एक 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा. एट वन लेवल दिस मेक सेंस कि अगर किसी को सिटीजन बनना है न्यूजीलैंड का, इट सीम्स रीजनेबल कि आपको जगह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जस्ट लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, राइट? कि जैसे ड्राइवर लाइसेंस अगर आपको लेना है तो रोड के रूल्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए. The same might be said of people who are already New Zealander, but the test will apply only to aspiring citizens. So, इसके ऊपर जो आर्टिकल आया है इन्होंने कहा है कि अगर क्लोजर इंस्पेक्शन की जाए तो जो प्रपोज्ड टेस्ट है इट रेजेस क्वेश्चन कि who deserve the closer attention. So, for the results of any test to be valid, जो assessment method है वो सही होना चाहिए टू द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज. सो उसे डिज़ाइन केयरफुली करना चाहिए इन टू द टेस्ट क्वेश्चन देम सेल्फ ओनली. इन अदर वर्ड्स एग्जैक्टली वॉट आर वी टेस्टिंग फॉर. सो किस वे से आप एक पर्सन को टेस्ट करोगे कि ये वहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, इसका आंसर अगर 75% स्कोर होता है तो वो पर्सन प्रॉपर न्यूजीलैंडर कहलाने के लाइक है. तो ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको वहाँ पे क्यूरेट करना विल बी अ टास्क. सो बडिंग कीवीज विल बी क्विज्ड ऑन देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ बिल ऑफ राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स, वोटिंग राइट्स एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एज वेल एंड न्यूजीलैंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. तो ये सारी वैसे कैटेगरीज है एंड इन कैटेगरीज को लेके जो टेस्ट है इसको डिज़ाइन किया जाएगा. इसमें डिफरेंट जो चैलेंजेस है ये वहाँ पे सेटअप किए जाएंगे. वेल, आपका इसके ऊपर क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि अगर एक रियल न्यूजीलैंडर होना प्रूव करना है किसी को कि भाई इसको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए बिकॉज इसने 75% इसमें एटलीस्ट 75% इस पर्सन ने यहाँ पर स्कोर कर लिया है, तो मेजर एरियाज़ कौन से हैं, मेजर कैटेगरीज कौन सी है जो उसमें होनी चाहिए जो मैंने नहीं बोली है, ऐसा क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें पता होनी चाहिए अगर यहाँ पे रहना है, यहाँ पे अगर सिटीज़न बनना है, वो क्वेश्चंस आपको क्या लगता है? सो एक का मैसेज आया कि इट्स ऑलरेडी डन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. वाओ, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका मतलब है कि ये काम करता है. सो और भी काफ़ी जगह पर एक्चुअली में है, कुछ और कंट्रीज़ भी है जहाँ पर ये जो टेस्ट है ये होता है. सो वेल, ऐसे कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे होने चाहिए ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. और आपको क्या लगता है इस टेस्ट के बारे में, इज़ इट ओके टू हैव सच काइंड ऑफ टेस्ट, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा ओवर है, ये इसकी ज़रूरत शायद नहीं है, सिर्फ जो अभी फ़िलहाल कंडीशन है उसको पूरा करो तो सिटीजनशिप मिल जाए वही बहुत है. इसके ऊपर भी आपका क्या टेक है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं 5599 नंबर, या फिर कॉल करके 0800 00 हम पर.

0: of Bollywood.
1: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 17.3 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. इट्स सनी ब्राइट डे ऑल ओवर द वीक, ऐसा ही वेदर रहेगा.
0: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
2: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
3: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
0: Super se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The

0: अब तो ये राज उसके साथ चला गया।
1: oh my
0: ये
1: God.
0: तो तुम्हें पता होना चाहिए अभी रूस में। 6 साल की बच्ची को पता था ये।
1: One thing at a time. अच्छा, उसके लिए एक टर्म है ऐसा?
0: मतलब टर्म नहीं है, मतलब यूजली हम बोलते हैं, बताई देती हूँ,
1: एक बारी में एक ही काम।
0: एग्जैक्टली इस वजह से बोल देते हैं हम। बट एग्जैक्टली उसका ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब फनी है ना कि हम हिंदी में भी या किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश के कितने सारे वर्ड्स को हम यूज करते हैं, लाइक इवन इन दिस वन सेंटेंस।
1: एक बारी में एक ही काम, तो क्या इंग्लिश यूज हुआ इसमें?
0: मेरे कहने का मतलब कि वन थिंग एट अ टाइम हम बोलते हैं ना।
1: हाँ।
0: मतलब हम एक ही बारी में एक ही काम नहीं बोलते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में
1: राइट
0: इंग्लिश टर्म्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
1: राइट, जैसे कि अभी मैंने सही नहीं बोला, मैंने राइट बोला। हाँ, राइट।
0: ऐसे एनीवे, मैंने लास्ट आवर में आर्टिकल शेयर किया था कि यू नो उस टेस्ट जो लिया जाएगा, अब तुम्हें पता है ना
1: सिटीजनशिप के लिए जो टेस्ट
0: होगा,
1: 6 अटेम्प्ट है ना कुछ अपेरेंटली,
0: या 75% उसमें आने जरूरी है।
1: 3 अटेम्प्ट के बाद आपको 30 डेज के लिए स्टैंड ऑफ कर देंगे वो।
0: तो उसके बारे में बातें हो रही है कि यूरो की उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस बहुत मैटर करेंगे, क्या क्या चीजें उसमें कवर होंगी। एक का मैसेज आया है कि आई थिंक द टेस्ट शुड बी फर्स्ट डन टू करंट सिटीजंस एंड सी हाउ मच दे नो बिफोर बर्डनिंग ऑन न्यू सिटीजंस, लाइक एट द क्राइम रेट एंड इफ देयर इज मोर सिटीजंस हु कमिट क्राइम, आई थिंक दे नीड टू से दिस फर्स्ट। सो उनका ये कहना है कि करंट सिटीजन जो है,
1: करंट सिटीजन जिन्होंने क्राइम किया है पहले उनको टेस्ट कराओ।
0: या
1: बट यार ये तो बहुत गलत बात हुई है।
0: क्यों?
1: जो क्राइम कर रहा है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसलिए क्राइम कर रहा है।
0: हाँ, तो अभी पढ़ेगा ना,
1: उसको तुम
0: पढ़ेगा लिखेगा
1: उसको तुम
0: कुछ बनेगा
1: और डिप्रेशन में डाल रहे हो यार, वो उसका विश्वास उठ जाएगा।
0: नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, किसी काम में लग जाएगा वो पर्सन।
1: नहीं, आपको लगता है?
0: पता नहीं, क्या पता होता है।
1: या बट एनीवे,
0: परिवर्तन होने में,
1: वुड यू बी कीन टू गिव दिस टेस्ट? अगर अभी आप वर्क वीजा पे हो शायद, या स्टूडेंट वीजा पे हो, और आपको बोले कि यू नो डोंट अप्लाई फॉर एनीथिंग एल्स, बस ये एग्जाम को पास करो एंड यू आर अ सिटीजन, वुड यू देन गिव दिस एग्जाम?
0: या 100%, मुझे तो लगता है। प्लीज यहाँ पे मैसेज करो या कॉल करो। और एक ने मैसेज किया है, टू बी फेयर एवरीवन शुड डू द सिटीजनशिप टेस्ट, फर्स्टली पीपल हु रिसीव सिटीजंस ऑलरेडी दे ऑल्सो शुड सेट फॉर द एग्जाम, रूल्स शुड बी मेड फॉर एवरी वन नॉट ओनली फॉर न्यू वंस, दैट्स माई ओपिनियन।
1: लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जितने भी अपने मोस्टली जो सिटीजन अभी बने हैं फ्रेश, वो सब अभी ऑस्ट्रेलिया चले गए,
0: वही ना, तो वो इसलिए तो बने थे, वो
1: टेस्ट दे नहीं पाएंगे आधे से ज़्यादा
0: यहाँ से आगे जा सके।
1: yeah.
0: ये पाथवे था उनके लिए।
1: या बट एनीवे, लेट्स सी, ये जब एग्जाम्स रोल आउट होते हैं तो उसका फिर उसके बाद क्या फीडबैक आता है। आई थिंक
0: दिस विल बी लेट 2027,
1: इट्स जस्ट गोइंग टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल, क्योंकि अब इसके टेस्ट भी बिकेंगे ना फिर, इसके टेस्ट वाले जो जैसे लाइसेंस, ड्राइवर्स लाइसेंस के टेस्ट कैसे बिकते हैं,
0: वो भी बिकते हैं, बट वो पकड़े भी गए ना?
1: नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन जो एप्स हो गए ना ड्राइविंग लाइसेंस के एप्स,
0: तैयारी करने के लिए।
1: ओके
0: ओके,
1: या सो ऑकलैंड बनेगा नया कोटा।

0: जस्मिन सैंडलर्स अफसाना खान की आवाज़, और आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया सा गाना ओए ओए का रिक्रिएटेड वर्जन। यहाँ पे शेफ हेमंत ने एक मैसेज भेजा है, यस इट वॉज माई ड्रीम, आई एम वेटिंग फॉर दिस डे, आई विल टेक क्लास फ्रॉम सैंडी एंड रुजबे। हम लोग क्लास देने वाले हैं क्या?
1: हमने ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन अगर आप हमसे
0: अगर
1: क्लास...
0: आप इतने ही आपका सपना ही है तो आपका सपना पूरा करने के लिए इतना रुकिए मत, आप अभी एनरोल कर सकते हैं, $5,000 ओनली। एनरोल नाउ,
1: 5,000 पर पर्सन हम यहाँ पे चार्ज करेंगे।
0: हाँ, एनरोल नाउ।
1: ये टेस्ट की बात कर रहे हैं सिटीजनशिप के लिए।
0: वो नहीं मैंने बोला है,
1: हम नहीं, हम उसी टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे ना।
0: नहीं, उनको लाइफ लेसन चाहिए,
1: उनको लाइफ लेसन चाहिए,
0: वो लाइफ लेसन के क्लासेस लगाना चाह रहे हैं।
1: अरे वाह यार,
0: तो इसीलिए तो 5,000 लिया ना सिटीजनशिप के लिए थोड़ी यार, मतलब तुम एक तो वीजा के भी फीस भरो इतने ज़्यादा, फिर बाद में एग्जाम के लिए भी इतने पैसे भरो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना।
1: और तुम्हें लगता है कि हम वो टेस्ट इनका पास करवा पाएंगे सिटीजनशिप का?
0: इसीलिए तो हमारे खुद के आंदे,
1: हम तो ये शुक्र कर रहे हैं कि ये दोबारा से नहीं होगा।
0: आई नो, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन
1: एग्जिस्टिंग वालों पे नहीं होगा, ये अच्छी बात है। अभी
0: मैं तो बहुत खुश हूँ, ये टेस्ट अभी ये लोग ने लॉन्च किया है,
1: और हमें दूसरा पासपोर्ट भी सरेंडर हो चुका है, तो क्या ही करोगे, ठीक ही नहीं रह जाओगे
0: वो ही तो हम बोलेंगे ना कि नहीं, हमको नहीं देना है टेस्ट, ले लो पासपोर्ट। शेफ हेमंत रेडियोथॉन वाला,
1: ओके,
0: याद है आपको ना सैंडी,
1: तुम्हें याद है ना,
0: फिर क्या, मैटर करता है। देन ऑफ कोर्स अभी गाना आपको सुनाते हैं, लेकिन गाने सुनाने के बाद आज काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए, फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड हम लेकर आएंगे 5 बजे के बाद,
1: वो भी लेके आएंगे, एंड ग्रैंड मस्ती नाइट की अगर आपको टिकट जीतनी है ये कंपटीशन भी आपके लिए रहेगा, एंड बैकयार्ड बीट्स में आज जिसका गाना हम प्ले कर रहे हैं, सुबह वैसे इसकी इंटरव्यू हुई थी, सेंसी प्रभाकर इसकी इंटरव्यू हुई थी, एंड आई हर्ड द इंटरव्यू, ब्यूटीफुल इंटरव्यू आई विल से, एंड क्या टैलेंटेड बंदी है जिसने 8 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया,
0: 8 साल की उम्र से,
1: या तब से गाना शुरू कर दिया, एंड बहुत ही अच्छा गाना उसने रिकॉर्ड किया है, एंड ये गाना भी आपको हम सुनाएंगे।

0: आगे क्या करूं।
1: अरे यार इतना टेंशन मत लो यार, आगे क्या करना है उसके बारे में हमको हम बताएंगे यहाँ पे आके गुरु कंडोला। अगर आप भी स्ट्रेस में हैं तो फाइनेंस वाले इश्यूज को लेकर गुरु यहाँ पे आ जाते आपको कुछ सॉल्यूशंस देने, आपको राह दिखाने। हाय गुरु, वेलकम टू द शो, कैसे हो?
2: मैं बढ़िया रुजवीर, थैंक यू। आप बताओ कैसे हो?
1: एकदम ही बढ़िया भाई। भाई काफ़ी लोग बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते ऐसे करते हैं, मतलब डेट कंसोलिडेशन की बड़ी बड़ी बातें हो रही है आजकल। यार ये ले मैन को अगर समझाना हो डेट कंसोलिडेशन, इसका मतलब आप कैसे समझाओगे एक टेंथ पास को?
2: डेट कंसोलिडेशन, डेट का मतलब है कि आपने कर्जा ले रखा है, आपने कोई लोन्स ले रखे हैं, राइट? उसको कंसोलिडेट करना है, मतलब आपको एक मतलब डेट्स आपने मल्टीपल ले रखे हैं, टू बी ऑनेस्ट आपने मल्टीपल डेट्स हैं और उन मल्टीपल कर्जे ले रखे हैं, एक इस कंपनी से, एक उस कंपनी से, एक इस कंपनी से। तो बेसिकली कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप उसको एक साथ जोड़ के आप उसका एक ऐसी पेमेंट बनाना चाहते हो कि जो आपके बजट के अंदर रहे, हो सकता है उसका सबके अलग अलग इंटरेस्ट चल रहे हैं, आप उसका एक लोअर इंटरेस्ट लेके या एक एवरेज इंटरेस्ट लेके और उसकी लोन की जो टर्म है, टर्म मींस कितना लंबा चल रहेगा, एक साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, सात साल, तो उस हिसाब से अपनी पेमेंट को एडजस्ट करेंगे सो दैट इट फॉल्स इनटू काइंड ऑफ बजट। और वो कंसोलिडेशन मींस फिर वो एक ही जगह पेमेंट चलेगा, ऑल दीज डेट्स कंबाइंड इनटू वन।
1: Yeah,
2: so that's a kind of gist of the debt consolidation.
1: That's very well explained, Guru. Thanks. क्योंकि काफी बार ऐसे होता है ना कि कुछ मतलब कार की लोन अगर ले लिए तो वो कहीं से ले लिए, वो एक अलग परसेंट पे ले लिए, फिर कुछ और पर्सनल लोन किसी ने ले लिया किसी और टाइप का। तो ये आप कह रहे हो कि डेट कंसोलिडेशन में आप सब इसको कंसोलिडेट करके होपफुली आपके होम लोन में ऐड कर सको शायद।
2: होम लोन में भी ऐड किया जा सकता है जिसके पास होम लोन है। अब नाउ होम लोन के जिसके पास है तो देयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि कईयों ने जो हम लोगों ने घर लिए होते हैं कभी 5% डिपॉजिट के साथ लिया होता है, किसी ने 10 के साथ लिया होता है, किसी ने 15% डिपॉजिट के साथ लिया होता है। और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, लास्ट 2-3 साल से मार्केट जो है वो घरों की इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो जितने का घर लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली वहीं पे खड़े होंगे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा। तो debt consolidation can be added into the home loans, but उसके ऊपर फिर वो देखना पड़ता है कि आपकी घर की वैल्यू के अगेंस्ट कितना लोन अभी चल रहा है करंटली। तो मोस्टली जब बैंक्स के पास आप जाते हो तो वो बोलते हैं कि हम debt consolidation अगर हम करेंगे तो वी विल ओनली डू इट अप टू 80% ऑफ योर होम लोन वैल्यू इन टूडेज मार्केट। तो अगर आपका लोन उससे ऊपर चल रहा है तो दे विल से नो, वी कैन नॉट डू द debt consolidation into home loans because आप 80% पे नहीं हो। बट दे आर सम एक्सेप्शन टू इट कि जहां पे आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, प्रोफाइल का मतलब है कि आप अच्छी इनकम कर रहे हो, गुड जॉब्स कर रहे हो और आपकी सैलरीज अच्छी आ रही हैं, आपने ये जो डेट्स ले रखे हैं इनके कोई आपके पास रीजन थे कि आपने लिए बट इनकी कभी पेमेंट्स नहीं मिस की आपने, बट नाउ दे यू वॉन्ट टू गेट इट डन इन टू द होम लोन, बट होम लोन में आपकी जो वैल्यू है घर की उसके अगेंस्ट जो लोन चल रहा है वो ऑलमोस्ट 87% या 90% तक चल रहा है। तो इन दैट केस अगर हम बैंक के पास जाएंगे तो बैंक विल से नो, आपका तो ऑलरेडी 80% से ऊपर चल रहा है, तो वी कैन नॉट डू कंसोलिडेशन। बट देयर आर सम एग्जेम्पशंस वेयर वहां पे वो एग्जेम्पशंस अगर हम अप्लाई करते हैं गुड प्रोफाइल पीपल के लिए, वी कैन अप गो अप टू 95% ऑफ द होम लोन वैल्यू, लाइक नॉट होम लोन, होम वैल्यू, और उसके अंदर वो कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन की आपकी वैल्यू है और लोन आपके अभी चल रहे हैं, लेट्स से 900,000 का होम लोन चल रहा है, तो यू आर सिटिंग एट 90% LVR और आपका जो आउटसाइड डेट है वो 50,000 का है। तो अगर उसको कंसोलिडेशन करना है होम लोन में, दैट मींस अब आपका जो होम लोन है वो 950 हो जाएगा और वैल्यू आपकी 1 मिलियन है, तो दैट मींस नाउ द LVR लोन टू वैल्यू रेशियो इज गोना इंक्रीज टू 95%। So, उस केस में yes, we still you can do an exemption with a good for the good customers, good clients, जिनकी history अच्छी हो, जिनकी incomes बढ़िया हो, तो we can go up to that 950, तो जो आपके जो outside वाले 50,000 loan थे वो अब home loan में आ जाएंगे and will go into the home loan rates. There will be some terms and conditions, then it depends कि हम जब we will talk about it कि कैसे वो चीज होगी, So it can be done into the home loan. But agar aapke paas home loan nahi bhi hai, and you guys got a different loans, and that you need to combine together as a debt consolidation, then that can be done as well. If you can, you know, there are people who are abhi IID bahut piche pada hua hai ki IID, we need money. So taxes hamare up to date chahiye, GST up to date chahiye, income tax up to date chahiye. So we can help that by getting those funds into that as well in the consolidation side of it to get those debts paid as well. So there's quite a bit in that debt consolidation which we can help with. Or agar hum 80% LBR ke saath kaam kar rahe hain, then to sone pe suhaga ho jayega ki ek to debt consolidation to ho hi jayega, but we'll be able to get you 1.25% of that loan amount as a cash back. So wo ek extra paisa jayega aapke jeb mein agar hum 80% hi loan utha rahe hain against the value of the house.
1: Right.
2: So dono cheeze ho jayegi, consolidation bhi ho jayega, aur you get agar 1 million ka loan kar rahe hain, well, let's say 1 million ka, so 12,500 will get paid into your bank account on the day of the settlement or next day of the settlement as a thank you from the bank as a cashback.
1: That's a pretty good deal. But great stuff, Guru. Agar hamare listeners ko aapki services ki zarurat hai, to what is the best way for them to reach out to you?
2: It's just simple logic lagana hai. Logic finance ko search karna hai Google mein. Logic finance aap Google mein search karoge, pehle to aap mera reviews padho, and then you come back to us aur mere se baat karo. Mera 0800 number hai, which is 0800 logic g. Logic G जब आप type करते हो, it comes to me, which is 0800-564-424. रुजबे तेरे को number याद हुआ? क्या मैंने बोला?
1: 0800-564-424.
2: क्या बात है?
1: हल्के मैंने लेने का गुरु. नहीं नहीं सही है. Well done यार गुरु. Thank you so much for you know in letting us know about different तरकीबें जो हम use कर सकते हैं you know for better financial well-being. और आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहिए, सर्विस देते रहिए, एंड हम होप करते हैं कि जो भी हमें सुन रहे हैं अभी, जिनको ज़रूरत है सच्ची में, they reach out to you. And I know you will be more than happy to go out of your way to help them out. जो हमने पहले भी सुना है हमारे लिसनर्स से.
2: Always, Rusbe. When I deal it like in a way कि personally, it's like my own case. So जब मैं उसको as a person अपना impact डालता हूँ, तो definitely just always go out of the way to get this thing done.
1: Thank you, Guru. Thank you so much. See you next week.
2: Thank you, Rusbe. Cheers. See you. Bye.
1: Bye. Daily dose of wisdom, wit and wild conversations. The Drive Show with Sandy and Rusbe. Aapka profile dekha, aap mujhe bilkul pasand nahi aaye. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Puri planning se aaye hain, shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है. ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज कर रहा
4: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन.
3: मेरे को समझ भी नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने.
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
5: है. 6 to 10 a.m.
6: I know how to balance my clients' books, but not how to use AI tools to free up my time.
7: When you're a Spark Business customer, you get a network of global and local partners to help with your business. Spark, the best bench in business.
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है. हाँ.
9: अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं.
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
12: In downward pool at home.
5: a proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
12: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
13: क्यों? क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
15: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए. रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है. सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड.
16: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
17: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
18: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
19: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
17: Super se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. Hollywood's most wanted.
20: Gundi khad gao. सीधा अंदर आऊं
21: मैं लाऊं अपना A game.
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: मंच म्यूजिक आपके लिए ओनली ऑन हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं. 4:36 PM राइट नाउ एंड टाइम फॉर सम बॉलीवुड गपशप.
1: नो एंट्री 2 जो बनने वाली है रुजबे, इसमें शाहिद कपूर के बारे में बात हो रही है एंड वरुण धवन ऑलरेडी इस मूवी में है. सो वरुण धवन के साथ शाहिद कपूर.
0: एक्चुअली काफी टाइम के बाद ऐसे मल्टी स्टारर रोमांटिक मूवी टाइप, रोमांटिक नहीं, मल्टी स्टारर कॉमेडी
1: कॉमेडी रोम कॉम.
0: मल्टी स्टारर कौन सी मूवी और आई है अभी रिसेंट में?
1: भूत बंगला वाज नॉट मल्टी स्टारर.
0: नहीं, मल्टी स्टारर मींस मैं आई एम सेइंग टू मेल लीड्स.
1: सी जो कॉमेडी सीरीज होती है जैसे गोलमाल हो गया, वेलकम हो गया,
0: बट वो आई कहां पे अभी?
1: अभी आई नहीं है.
0: अभी आई नहीं है ना उनकी, तो उनकी भी प्लानिंग चल रही है बहुत टाइम से.
1: उनकी प्लानिंग चल रही है.
0: सो देयर इज गोइंग टू बी लाइक अ वेव ऑफ मल्टी स्टारर फिल्म्स, मेरे को लग रहा है एक ही टाइम पे सारे आएंगे.
1: लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा शायद कपूर वरुण धवन.
0: वही ना, बॉर्डर 2 आपकी फेवरेट.
1: या बॉर्डर 2 शायद कपूर एंड वरुण धवन दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया है.
0: अरे वाह,
1: दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एंड दोनों ही एक्चुअली में अच्छे एक्टर्स हैं. तो इनका इसमें रोल देखना रोम कॉम में थोड़ा डिफरेंट है. शायद कपूर को फाइनली थोड़े डिफरेंट रोल में हम देखेंगे. टू मच एंग्री हो गया ना अभी. वो एंग्री वाला अभी शेड हो जाना चाहिए. मुझे लगता है इट्स हाई टाइम थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए अभी शायद कपूर को.
0: और मतलब वो जूम इन में एंग्री उसको दिखाते हैं तो एंग्री दिखता है. जूम आउट में जब उसको एंग्री दिखाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो छोटा बच्चा जब ऐसे टैंट्रम कर रहा ना, वो ऐसा फील होता है.
1: Yes.
0: मुझे चाहिए. Don't angry me.
1: Don't angry me. Anyway, एक और प्रोजेक्ट है जिसमें अक्षय कुमार, अनीस बज्मी की एक और मूवी आने वाली है, उसमें अक्षय कुमार फाइनल हुए हैं. सो अक्षय कुमार की एक और मूवी हम देखने वाले हैं.
0: एंड शेखर सुमन भी न्यूज में आ रहे हैं यार. हाँ, शेखर सुमन भी बोल रहे हैं ना कि गाली मत दो चीजें प्रमोट करने के लिए.
1: ओ, ऐसा क्यों?
0: पता नहीं, कुछ उन्होंने कहा है ऐसा, नॉट टू अब्यूज टू सेल देयर कंटेंट.
1: ओके.
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe.
3: हमेशा साथ देने वाले दोस्त.
4: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ music नहीं, ये है emotion, passion और थोड़ा सा desi swag. Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली हर corner से निकलता है एक नया superstar. आज का local artist, कल का global sensation. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने backyard beats को दो full support. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
5: Hum, accurate traffic.
6: Auckland Airport, park and ride.
7: Fine tonight around Auckland with a low of 10 degrees. On the northwestern motorway, we did have a breakdown after Rosebank Road. That's been cleared, but if you are heading out of town, it's pretty heavy St. Luke's to Atatū, 40 minutes to Massey. And a similar time to the airport, there's a breakdown inside the Waterview Tunnel blocking a lane. So there's delays through the tunnel there. If you're on the southern, it's busy in patches to Drury.
6: Park and ride for more affordable parking. Free bus transfers right to the terminal door.
8: TradeDepot.co.nz. Trade Depot brings you MyDia, the world's number one air conditioning company. Introducing the MyDia inverter heat pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your MyDia inverter heat pump, including installation anywhere in New Zealand, from only 1299 with Trade Depot. T's and C's apply.

0: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू. विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी. टीज एंड सीज अप्लाई.
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
1: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए 442 right now on the clock. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हाथ लगी है इन दिस मार्केट, जहाँ पे काफी लोग बोल रहे हैं कि यार बहुत स्लो मूविंग मार्केट है, घर नहीं बिक रहे. न्यूजीलैंड में एक ऐसी सिटी है जहाँ पे 10 दिनों के अंदर घर बिक रहे. मतलब जो नेशनल एवरेज है यूजुअली हाउस सेल का, उससे ये ऊपर है. यहाँ पे इस सिटी में, छोटी सी सिटी है एंड एक ऐसी सिटी है जो केतन के दिल के बहुत करीब है.
2: केतन के इनवक आगे ले क्या?
1: इनवक आगे ले.
2: ओके, सो वहाँ पे कितने घर बिके?
1: नहीं, 10 दिन के अंदर घर बिक जाता है वहाँ पे.
2: 10 दिन के अंदर अंदर घर बिक जाता है.
1: जहाँ पे बाकी जगहों पे बहुत ही ड्रैगिश मार्केट है और घर बिकना बहुत मुश्किल हो जाता है. इनवक आगेल में इनफैक्ट जो एवरेज होम वैल्यू है वो भी 3% से राइज हुआ है.
2: ओ वाह, वही पूछने वाली थी मैं कि प्राइस क्या है वहाँ पे, लो है, हाई है, लाइक किस रीजन क्या है?
1: 3% से बढ़ा है वहाँ पे प्राइस इन लास्ट 3 मंथ्स. तो या काफी बढ़िया सेल्स हो रहा है इनवक आगेल में. सो या इफ यू
2: अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा उस समय पर इनवक आगेल में, तो दे आर गेटिंग गुड प्राइस राइट नाउ. तो आज
1: पैसा ही पैसा होगा.
2: Yeah, so इनवक आगेल is doing good. मतलब सोचा नहीं था कोने में जाके ऐसा होगा.
1: प्री कोविड भी इनवक आगेल का जो ग्रोथ है हाउस वैल्यूज में 38.5% था.
2: Oh, wow.
1: And post COVID, जहाँ पे मोस्टली सबका -16.8% है नेशनल एवरेज, वहाँ पे इनवक आगेल स्टिल इन पॉजिटिव 5.5% हायर है इनका.
2: पहले हमें जानना है कि इस समय कौन है जो हाउस हंटिंग पे है. If you are doing a house hunting right now, give us a call and share. Like,
1: what are your biggest challenges?
2: Yeah, क्या challenges आप फेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप and किस एरिया में आप ढूंढ रहे हैं? You never know.
1: There are so many. Yeah. Like, I think अगर आप यहाँ पे call करके share करोगे ना आपके challenges, so many people are going to relate to it and be like, yes, same. So yeah, 0800 00.
2: और कभी-कभी किसी के साथ ये भी होता है ना कि एक तो feeling आनी जरूरी होती है किसी भी घर को देखने जाओ कि हाँ. This is the home.
1: और ये feeling के बारे में आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको feeling नहीं आएगी.
2: Yeah.
1: It is that feeling.
2: So like, ये कहना easy है guys, हाँ. लेकिन it is something you will really feel when you enter the place, जो आपको लगता है कि यार this place belongs to me.
1: और काफी बार ऐसे भी
2: होता
1: है.
2: और वो अगर ना मिले आपको तो बहुत ही disappointment है.
1: काफी बार ना frustration इतना हो जाता है कि आप वो feeling एंटिसिपेट करते हो कि यहाँ पे मुझको ना ये फीलिंग आने वाली है, फिर आप एंटर करते हो, आपको फीलिंग नहीं आती है, लेकिन आप फोर्स करते हो कि नहीं यार यहाँ पे वो फील आ रही है.
2: बेचने वाला आपको फुल बेच रहा है.
1: या नो हार्ड फीलिंग्स,
2: पीयर प्रेशर भी होता है ना.
1: नो हार्ड फीलिंग्स रियल एस्टेट एजेंट्स, वी लव योर वर्क.
2: या समटाइम्स एनीवे होता है. आप भी शेयर कीजिए एंड अपना एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑलरेडी घर खरीद लिया है तो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं एंड क्या चैलेंजेस थे आपके.
1: मे बी योर टिप्स कैन हेल्प समवन टू
2: एग्जैक्टली
1: टू यू नो हेल्प देम ऑन देयर हाउस हंट जर्नी. व्हाट आर द मेजर ऐसे जो आपको हुआ था वो टाइम पे डिलेमास?
2: डिलेमास मेरे को तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट का था बेसिकली, कि अगर मेरे को इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बहुत माइनर कोई चीजें आती है तो आई एम ओके विद इट. अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कुछ बड़ी चीजें आती है तो वहाँ पे पंगा है.
1: बट वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो आपने हर घर का इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवाया?
2: नहीं, एक का ऑलरेडी हो रखा था तो मैंने देखा, मतलब पता चल गया मुझे. ऐसा देख नहीं सकते,
1: वो भी एक सबसे बड़ा ये है ना, क्योंकि
2: आपको उसमें पैसा डालना पड़ता है ना,
1: कुछ काफी एक्सपेंसिव होता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट.
2: ये जो घर जब मैंने ये खरीदना था तो ये वो होता है ना कि फर्स्ट साइट लव, ये वो था.
1: लव एट फर्स्ट साइट
2: हाँ जो भी है. ये वो था.
1: ओह वाओ,
2: सो इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्ट किया कि यस इसकी रिपोर्ट के ऊपर तो करना पड़ेगा खर्चा.
1: दिस इज नॉट कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट सैंडी.
2: या
1: लव एट फर्स्ट साइट मेरा केस है
2: जिसमें इंस्पेक्शन ही नहीं किया
1: मैंने, क्योंकि प्यार है, प्यार में थोड़ी इंस्पेक्शन होता है ना. जो है वो मेरा है, ऐसा लॉजिक था.
2: एनीवे सो
1: डिपॉजिट का पैसा वेस्ट नहीं करना था मुझे, तो मैं बोला छोड़ो यार. लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क है तो इसके.
2: कई बार इंस्पेक्शन में लेकिन उसमें ये हो जाता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपका डिसीजन होता है कि ये खरीदोगे या नहीं, लेकिन आपको पता चल जाता है क्या क्या काम करवाना है बाद में.
1: हाँ, that's right.
2: So, वो भी एक फैक्टर होता है बाद में कि ओके नाउ आई नो कि यहाँ पे मॉइस्चर की या ये प्रॉब्लम है तो मे बी इसके ऊपर ये काम हो सकता है. सो या
1: मे बी दैट्स द रीजन मैंने कभी रिपोर्ट नहीं करवाया, बोला कि और खर्चे क्यों.

0: ऊपर ब्रॉट टू यू बाय रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स लिमिटेड. ब्रो लुक एट यू, ब्लू लाइट स्क्रीन को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा. और ये कॉफी ल्यूक वार्म, टेस्ट बिल्कुल हार्ट ब्रेक जैसा. प्लीज सर, तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए, तू बीच के लिए बनाए, तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rova every weekday at 8 AM, 11 AM, 1 PM and 5 PM. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rova app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rova app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rova. T's and C's apply. Hum. Accurate traffic.
2: Kitchenmania.co.nz.
3: A fine evening across Auckland, dropping down to a low of 10 degrees tonight. On the southwestern motorway, we did have a breakdown inside the Waterview Tunnel. That's been cleared and delays have eased up there pretty well. The northwestern still looking very heavy after an earlier breakdown there, with traffic all the way to Tatatu. On the southern, you're looking at an hour to get out to Manukau. It's pretty heavy in patches right out to Drury.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
4: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available, apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
5: Sarah Street is safer thanks to a fibre-powered speed camera, which is managed by the police, who use fibre to process DNA matches, which is a different match to the hunk Tracy found on a dating site that had an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
6: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu who? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
7: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
0: हम टाइम चेक, हम न्यूज़, ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
8: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 5. Winston Peters has taken a fresh crack at Christopher Luxon over immigration, asking how he can talk about the need for a careful approach while also signing up to the India FTA. In a speech today, the Prime Minister said voters could expect careful immigration policy from National, putting social cohesion ahead of businesses' profits. But the New Zealand First Leader doesn't buy it, as RNZ reports.
9: Go and reconcile that quote with the Indian Free Trade Agreement. I know it's in the agreement. I agree with the Indians about what's in the agreement. The Prime Minister needs to reconcile that to you now.
8: New retail data suggests shoppers are continuing to back local businesses. A retail industry survey found 40% of consumers are shopping at local stores, while a third are buying from New Zealand-based online retailers. The government is playing down the possibility of Kiwibank being partially sold off. Minister for State-Owned Enterprises, Simeon Brown, says for now it is not a plan that is being pursued. Excitement is building in Christchurch ahead of the first ever concert at Te Kaha. 660 is the headline act this weekend. The band's bass player, Chris Mack, is amped.
10: The whole city just feels so vibrant and alive, and it might be the most vibrant city in the country right now.
8: To sport the first of the two New Zealand Super Rugby Pacific Derby games this weekend, the Chiefs Highlanders on Friday night. For the Chiefs, Josh Jacomb and Damian McKenzie will share the playmaking duties. Jacomb at first five, McKenzie at fullback. And one change to the Highlanders in the midfield. And to rugby league with Machinery House, Penrith Panthers coach Ivan Cleary has confirmed his long-running stint at the foot of the mountains will last just one more year.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: लड़की ब्यूटीफुल कर गई, चिल टाइप का दिन है आज का, बहुत ही ब्यूटीफुल डे। और ये पूरा वीक मतलब ट्यूसडे तक, अगले ट्यूसडे तक ऐसा पूरा ब्राइट सनी, सिर्फ सनी सन दिख रहा है मुझे। मेरे को लग रहा है परफेक्ट टाइम टू डू द लॉन्स आई थिंक दिस वीकेंड। फील्स लाइक 16 राइट नाउ। ओवरनाइट टेंपरेचर इज गोना बी एज़ लो एज़ 8 डिग्रीज टुनाइट।
13: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रिस्पी,
14: हमेशा साथ देने वाले दोस्त, ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस मोनाको एंड पुकेकोई विद स्लीपी हेड क्वीन मैट्रेस फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 449 एंड जिमी टेलर एंड टीम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
17: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
12: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Good evening. Drive Show आप सुन रहे हैं 5:02। Hi Sandy.
18: A very very good evening Ruzbe, कैसे हो तुम?
12: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ Sandy, मैं कहाँ पे लेकर आता हूँ कि good evening ये हो, और आप very very good evening to you.
18: ऐसा नहीं बोला मैंने. देखो smile matter करती है.
12: स्माइल मैटर करती है
18: बहुत सारी सिचुएशंस में. अगर आप खाना बना रहे हो जल जाए तो मतलब उस सिचुएशन में भी अगर आप स्माइल के साथ उसको डील कर लो.
12: ये कहने की जरूरत थी नहीं, कोई और भी एग्जांपल आप दे सकते थे.
18: मतलब मैं इसलिए बोल रही हूं गाइस, बिकॉज़ ये ना कंटिन्यूअसली मैं रुजबे से आई थिंक सेकंड डे या थर्ड डे दो बार मैं इस हफ्ते में सुन रही हूँ कि जल गया इसका खाना.
12: नहीं नहीं, नहीं।
18: एक तो मैंने देखा तुम उस दिन मंडे को, आई थिंक मैंने और केतन ने देखा
12: मंडे को जल गया था,
18: मंडे को जला, और आज तुमने फिर से जलाया खाना.
12: नहीं नहीं, आज फिर से नहीं जलाया, वो जला हुआ ही आज खा रहा हूँ ना अभी. क्या है यार सैंडी,
18: डिफरेंट खाना दो. सो ये जला हुआ
12: डिफरेंट नहीं, वही खाना खा रहा हूँ मैं.
18: ओके वही था
12: हाँ, क्योंकि लाइक बेसिकली व्हाट वी ट्राई इज वी ट्राई टू कुक

0: आपको जल्दी है लेकिन आपकी कॉफी स्पिल हो गई, आपकी चाय स्पिल हो गई, समथिंग लाइक दैट. कहा जाता है कि ये एक पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन होती है, कुछ वर्स्ट आउटकम होने वाला है उसको बचाने के लिए. तो कहीं पे वो कहते हैं ना कि देर हो जाती है आपको, बिकॉज अगर आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो कुछ गलत हो जाता है वहाँ पे. इसे बर्न टोस्ट थ्योरी कहते हैं.
1: व्हाई डू दे कॉल इट बर्न टोस्ट थ्योरी?
0: बिकॉज वो बेसिकली बर्न टोस्ट के कारण काफी लोग वो होते हैं ना, लेट होते हैं.
1: लेट होते हैं बर्न टोस्ट के कारण?
0: हाँ ना, टोस्ट रखा है तुम भूल गए.
1: क्योंकि मुझे आई लाइक माई टोस्ट टू बी नाइस ब्राउन एंड क्रिस्पी.
0: वो उसे क्रिस्पी कहते हैं.
1: हाँ, लेकिन
0: बर्न होता है ब्लैक,
1: बट वो ब्लैक हो जाता है मेरा क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइमिंग पे नहीं रुक पाता हूँ उसको. सो आई प्रिफर इट टू बी बर्न रादर देन Not brown.
0: Okay. So guys, आप बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है burnt toast theory? आपके साथ कभी हुई है? Basically कि आप किसी काम को करने के लिए जा रहे थे, कुछ ऐसी intervention हुई जिसके लिए you know आप रुक गए, कुछ हो गया, बिल्ली रास्ता कट गई, कुछ हुआ, आप वहाँ पे टाइम पे पहुँच नहीं पाए, वो काम टाइम पे नहीं कर पाए, एंड समथिंग वर्स्ट वाज गोना हैपन जिससे आप बच गए.
1: काफ़ी बार मैंने काफ़ी ऐसे किस्से सुने ना कि लोगों की ट्रेन मिस हो गई और फिर वो ट्रेन में
0: एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया. ऐसा भी होता है.
1: ऐसे कोई किस्से अगर आपके साथ हो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ तो यहाँ पे आज कर सकते हो आप 0800-004-866. द तात्पर्य ऑफ दिस सेगमेंट इज और दिस टॉपिक इज दैट इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट इन योर फेवर, it's in your favor.
0: Yeah, there's a reason behind it.
1: Hi.
2: Hello.
1: Ji, namaskar. Swagat hai aapka.
2: Ji, namaskar. Actually, I'm new in New Zealand, to mere first call hai ek radio show par.
0: Arre, kya baat hai? Kya naam hai aapka?
1: Kya naam hai?
2: Gaurav.
1: Gaurav, kahan se ho yaar?
2: Yeah, Delhi se.
1: Delhi se?
0: Aur kab aaye aap yahan pe?
2: Main aaya mid February mein. Meri wife aayi first week of March.
1: ओ, तो एकदम ही न्यू आए हो तुम. तो आप अभी यहाँ पे वर्क काम करने के लिए आए हो?
2: हाँ जी हाँ जी, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड माय वाइफ इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट.
0: अरे वाह,
1: ओह माय गॉड,
0: वेरी नाइस यार.
1: क्या बात है यार, वेरी नाइस. पैसा ही पैसा होगा भाई.
2: बस वही कमाने के लिए आए हैं. पैसा तो दिल्ली में भी बहुत था, वहाँ पे बस सुकून नहीं था थोड़ा सा. वो यहाँ पे मिल रहा है.
1: हमारे दिल्ली के बारे में ऐसा कैसे बोला, लेकिन अभी ये तुम कह रहे हो तो हम तो बस बोलेंगे नो कमेंट्स. क्या बोलते भाई, सही है ना?
2: वहाँ पे ना वर्क लाइफ बैलेंस, बीइंग ऑनेस्ट वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं था हमारा. आई वाज वर्किंग अबाउट 16 आवर्स अ डे.
1: हाँ, इसके बारे में भी हमने टॉपिक किया था तो हमको काफी लोगों ने एंटी देशभक्त बोल दिया था.
0: आप तो समझते ही होगे, आप तो अभी अभी आए
1: हैं.
0: आप नहीं बात करेंगे तो कैसा होगा ना, हम ही तो बात कर सकते हैं.
2: राइट, अभी तो मैं उस ट्रांजिशन फेज में हूँ जिसमें एक्चुअली मैं चेक कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई कौन सी चीज बेटर थी.
0: या
1: एक चीज तो आप डेफिनेटली मिस कर रहे हो, मैं बोल सकता हूँ इस बारे में, वो अपना डिलीवरी एप्स.
2: अरे डिलीवरी एप्स तो यार, हम 2 साल हो गए हमारी शादी को और हमने 2 साल में शायद 5 लाख से ऊपर तो सिर्फ डिलीवरी करवाई होगी घर में, वो भी राशन अपना,
1: राशन की डिलीवरी. देखा अब कैसा लग रहा है यहाँ पे जाके और खुद से सब सिलेक्ट करके.
2: डिलीवरी बॉय बने हुए हैं.
0: अभी आपने फर्नीचर नहीं खरीदा ना,
1: कैसा लग रहा है वर्क लाइफ बैलेंस?
0: गौरव, अभी आपने फर्नीचर नहीं खरीदा ना, वेट फॉर दैट मोमेंट.
2: हम ना जब नए नए आए थे तो हमारे एक हफ्ता सिर्फ घर ढूंढने में निकला और एक हफ्ता उसका फर्नीचर इकट्ठा करने में.
0: अरे वहाँ पे आप बताते हो घर पे डिलीवर कर दो, घर पे आके जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखते हैं उसको, आराम से वो असेंबल होता है वो. यहाँ पे तो आप पार्ट्स में लेके आते हो ना, तो हम खुद ही वो है, क्या कहते हैं,
1: यहाँ पे भी आप पैसा भर के असेंबल करवा सकते हो
0: वो. हाँ, वो
1: अभी हम टॉपिक पे आए,
2: यहाँ पे इंडिपेंडेंस ही आ जाती है.
1: इंडिपेंडेंस है यहाँ पे, यस दैट इज,
0: पर ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा है गौरव.
1: सेल्फ एम्पावरमेंट होता है यहाँ पे. गौरव बताओ यार, क्या ऐसा कोई किस्सा हुआ जहाँ पे आपका बर्न टोस्ट थ्योरी हुआ?
2: यार क्या हुआ, स्कूल वहाँ पे कॉलेज में थे उस टाइम पे, अब दोस्तों के पास कार थी तो सबने कहा कि चलो ट्रिप पे चलते हैं और तब जा रहे थे हम आगरा. अब वी वर थ्री फ्रेंड्स, मी, मेरे दो दोस्त और थे. अब उस टाइम पे क्या हुआ, घर पे कुछ वही डिनर की वजह से थोड़े से लेट हो रहे थे, वो पैक करने में मेरी मॉम

0: सा वेट करी थी, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम वहां पे पहुंचो, मैं मेट्रो से पहुंच जाऊंगा तुम्हारे साथ आने के लिए, अदरवाइज वो मेरे को पिक करके ले जाते। तो अब मम्मी ने थोड़ा सा लेट बनाया डिनर, मैं पैक कर नहीं पाया, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम सीधा पहुंच जाना, मैं मेट्रो से आ जाऊंगा। और जब वो सीधा पहुंच रहे थे, उस बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक की स्पाइन फ्रैक्चर हो गई,
1: बाप रे, इतना बुरा एक्सीडेंट, वाज इन
0: कोमा फॉर अबाउट 1 month।
1: भाई साहब,
0: तो अगर वो मम्मी थोड़ा लेट नहीं बनाती डिनर, तो क्या पता मैं भी उसी के अंदर होता।
2: सही में यार,
1: ओ माय गॉड यार,
2: दिस एक्चुअली एग्जैक्टली यू नो दिस थ्योरी,
1: एग्जैक्टली लेट मम्मी खाना परोसिंग थ्योरी, मम्मी खाना लेट परोसिंग थ्योरी।
0: मैंने मम्मी को कह दिया हमेशा आप मेरे को लेट ही देना,
1: अगर आप टाइम पे दोगे तो मैं ठंडा खाऊंगा, लेकिन मैं
2: लेट ही खाऊंगा,
0: ठंडा करके खाऊंगा।
1: थैंक यू गौरव यार, थैंक्स फॉर कॉलिंग मैन, नाइस टू मीट यू।
0: या थैंक यू सो मच,
2: गुड बाय, बाय।
1: हाय, आपका भी स्वागत है।
3: हाय, कैसे हो भाई?
1: बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। कैसे हो आप, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मोहम्मद है भाई।
1: मोहम्मद, मोहम्मद थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दो ना।
3: अरे कर दिया भाई, कर दिया,
1: बोलो।
3: कर दिया, आवाज तो नहीं आ रही, बिल्कुल तो नहीं
1: आ रही है भाई।
3: मेरी आवाज आ रही है, मेरी
1: आवाज आ रही ना। हाँ, मतलब वही आपकी आवाज ही रेडियो पे है ना अभी। हाँ, नहीं नहीं बोलो,
2: नहीं अरे मजाक कर रहे मोहम्मद की,
1: आ रही है, बोलो बोलो।
3: मैं भी थोड़ी खींच रहा था।
2: ठीक है, बताइए।
3: अच्छा यार, मेरा जो है ना इंसिडेंट थोड़ा सा स्केरी टाइप का।
2: अरे
3: वाह, आपके हाँ थोड़ा सा ना यार, ये हुआ कि ये बात है कोई 20 years ago। काफी रात का समय था, लाइक यू नो 11:30-12 o'clock midnight के आसपास का टाइम होगा। मैं हाईवे पे जा रहा था, ठीक है। मेरे आगे से एक कार बहुत मुझे zigzag कर रही थी, ठीक है। मुझे भी थोड़ा जवानी का जमाना था, मुझे भी थोड़ा जोश आ गया। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने भी एक नई सी मोटर निकाली थी, तो मैंने कहा यार चलो ये क्या आजकल मतलब नया फैशन होगा, थोड़ी ट्रेंडिंग हो रहा होगा, मैं भी थोड़ा इसको जरा थोड़ा एस्केलेटर देता हूँ। एक दो दफा मैंने उसको काटा, एक दो बार उसने मेरे को काटा। फिर अचानक एकदम से मेरे जहन में आया कि यार ये बात गलत है, यू नो वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स, दिस इज वेरी रॉन्ग, से मैं बेसिकली इस किस्म का काम। उसने आगे भयंकर तरीके से ना एक कट मार दिया भाई को, कुछ पहले अरे क्या, मैं देखता हूँ 2 seconds के बाद एक पिग निकला है और आके सीधा उसकी गाड़ी में लगा है।
2: ओह नो,
3: लाइक अगर मैं उसको, वो मुझे कट ना मारता और मैं रिस्पॉन्सिबली ना सोचता, तो वो पिग कंफर्म 100% मेरी गाड़ी में लगता।
2: मतलब आपने बिल्कुल राइट टाइम पे सही सोचा है।
3: हाँ, और हिज कार स्पन लाइक एनीथिंग, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन। मतलब मेन हाईवे पे उसकी गाड़ी गोल गोल घूम रही थी। Thankfully, like you know, they got saved. Nobody got badly hurt, but उसकी दांत तो खत्म हो गए।
1: Wow.
3: Yeah. So मैं आपको question ऐसे था कि मेरे ज़हन में एक दम से incident आ गया and I couldn't resist calling.
1: No, thank you so much for calling.
2: That's actually very scary.
1: बट काफी बार ऐसे हो जाता है ना कि आई थिंक देयर इज अ फोर्स दैट मेक्स अस रियलाइज कि भाई जो तू कर रहा है वो गलत है, एंड देन यू स्किप दैट इंसिडेंट दैट वाज सपोज्ड टू हैपन टू यू। सो या, आई कंप्लीटली यू नो अग्री टू योर।
3: दो लेसन मिले उस रोज, एक रिस्पांसिबल ड्राइविंग का लेसन मिला, दूसरा अच्छा सोचने का लेसन मिला।
2: कि अच्छा ख्याल आए तो उसके ऊपर देरी ना करो।
3: नहीं देरी ना करो, आपको भी सतर्क कर रहा है, वो कोई आपको एडवाइस कर रहा है।
2: Yeah.
1: That's right. Yeah. Awesome, yeah. Thank you so much for sharing
2: Amazing.
1: This.
2: Thank you, Mohammed. Thank you.
1: Mohammed, first time caller हो ना आप भी?
3: अरे नहीं, मैंने पहले काफी देर बाद कॉल किया।
1: काफी देर बाद कॉल किया। अच्छा, ठीक है।
2: Thank you,
1: man. Hi, आपका भी स्वागत है।
4: Hi, good evening. This is Bobby.
1: Hi, Bobby.
4: हाँ जी, मेरी स्टोरी मेरे से रिलेटेड तो नहीं है, but it was like around 20 years back. मैं दिल्ली में था। एंड मैं दिल्ली से डेली जॉब जाता था करने गुड़गांव।
1: अरे वाह, दिल्ली से डेली, वेरी नाइस।
4: डेली जाता था बाइक पे।
1: ओह वाह,
4: में एक शिवजी जी की मूर्ति आती है वहाँ पे, मैं रोज खड़ा होता था 5-7 minutes के लिए, देन आई फिनिश माय रेस्ट ऑफ द ट्रिप।
2: ओके,
4: तो उस दिन मैं वहाँ खड़ा हुआ था, इट इज अ हाईवे NH8, तो वहाँ पर बीच में कोई भी डिवाइडर लगा हुआ है, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस रोड को कोई क्रॉस ना करे, क्योंकि यहाँ पर काफी तेज 100 की स्पीड पे गाड़ियां आ रही है। तभी मैं देखता हूँ कि एक अंकल जी क्रॉस कर रहे हैं रोड, मेरे दिमाग में आया कि अंकल जी कैसे मतलब जाके बीच में डिवाइडर क्रॉस करेंगे ना, बीच में पूरा वो लगा हुआ था फेंस. तो मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं इनको रोकूं, लेकिन मैं रोक नहीं रहा हूँ पता नहीं क्यों. एंड सडनली थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो एक गाड़ी आई है, उस गाड़ी ने उस अंकल जी को हिट करा और अंकल जी हवा में उड़ गए.
1: ओह माय गॉड.
4: तो मैं एकदम मतलब ऐसे दंग रह गया. मैंने कहा यार मैं रोक सकता था इनको, मैंने रोका नहीं. पता नहीं मेरे को क्या हुआ उस समय. आई वाज फ्रीज. और मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था. उसके बाद से मैंने वहां रुकना बंद कर दिया. मैं डायरेक्ट ऑफिस ही जाता था.
1: मुझे ऐसे सिचुएशन में होना ही नहीं है जहाँ पे मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए किसी को बचाने की. नहीं
4: ऐसा हुआ मेरे साथ. After 20 years भी fresh है बिल्कुल कि मतलब क्या हुआ था वो सीन मैं बोलता नहीं.
2: But I think वही होगा कि कई बार ऐसे situations में आप freeze हो जाते हो ना, you don't know how to act.
1: And काफी बार आपके पास बहुत limited चीजें होती है जो आप कर सकते हो. अभी for example at the end of the day हम लोग का personally भी एक survival instinct होता है ना. आपको दिख रहा है अभी कि गाड़ियाँ तेज आ रही है वहाँ पे, आपने already वो एक thought आ गया आपके mind में कि ये कोई cross नहीं करना चाहिए. तो आप खुद कैसे वहाँ पे जा बीच में जाओगे ना किसी की मदद करने के लिए. इट्स अ डिफिकल्ट वन. दैट्स गुड. और वैसे भी फ्लाइट में हमको सिखाते हैं ना कि पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर दूसरों को लगाओ.
2: तो इसलिए आप कभी इसके बारे में जब सोचेंगे तो बुरा मत मानिएगा कि आप आगे नहीं बढ़े.
4: नहीं यार बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, बट आज याद आता है मेरे को कभी कभी ना.
1: या 100%. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू फॉर योर कॉल.
2: थैंक यू.
1: ओके बाय. अभी हम गाने सुनेंगे और ये जो गाना है विशाल ददलानी की आवाज़ में. वैसे आज बैकयार्ड बीट्स में हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी शाउट आउट देंगे थोड़ी देर में.

0: your backyard beats.
1: बैकयार्ड बैकयार्ड बीट्स में हम हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनको शाउट आउट देते हैं यहाँ पे, उनके गाने आपको सुनाते हैं। और आज के जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं बहुत ही टैलेंटेड, इन्हें आज सुबह ब्रेकफास्ट शो में बात भी की थी। इनका नाम है सैंसी प्रभाकर।
2: सैंसी प्रभाकर, एंड सैंसी प्रभाकर ने वैसे बताया अपने इंटरव्यू में सुबह, वैसे रुजबे इन्होंने शेयर किया कि ये अपने फैमिली में काफ़ी सीखती आई है कि जिस वजह से म्यूज़िक कैरी हुआ है, काफ़ी इंस्पिरेशन इनको मिलती है हमेशा। एंड इवन ये जो गाना है इन्होंने जो बनाया है इसी इंस्पिरेशन से बनाया था। शी इज़ अ R&B आर्टिस्ट एंड म्यूज़िक अपनी जो फील करती है वैसा ही अपना म्यूज़िक बनाती है। शी हैज़ रिटन ओवर 350 सॉन्ग्स
1: लिखे इन्होंने। That's incredible, yeah. ये 2-time finalist भी रही है in Plate Strange Lion Foundation Strong Songwriting Contest. और ये 3rd place पे आई थी सुर सम्राट सिडनी में। और विनर रही है ऑफ द सुसो
2: ई बेस्ट वोकल कॉम्पिटिशन
1: कॉम्पोजिशन
2: के लिए। सो सैंसी प्रभाकर ने एक R&B स्टाइल एक गाना बनाया है जो कि आप अभी यहाँ पे सुनने वाले हैं।

0: get money, get cash.
1: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Chortle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover. Accurate traffic.
2: Designer Rugs annual stock sale.
3: A fine evening across Auckland, dropping down to 10 degrees overnight. Out of the city on the southern motorway, it's looking pretty slow. Newmarket through to Drury, 50 minutes to get out to Manukau, and the northern is seeing a similar drive time up to Silverdale. Lots of traffic queuing through to about Esmond Road. The northwestern heavy two to Atatū, and on the southwestern, it's slow south from Walmsley Road.
2: Save up to 80%. Starts Friday. 3 days only. Designer Rugs, Greylin.
4: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
5: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
6: It's 10 a.m. and you forgot about dinner at yours tonight. Your fridge is empty. Your place is a mess after watching last night's game. And you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same-day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
7: I'm Rachel and I'm a physio. Recently, I had a patient with a shoulder he'd injured at basketball. He was feeling pretty anxious because he needed to recover by a certain date. So I gave him some reassurance and exercises to do, and we figured out a plan. He was really committed to getting them done and completely recovered in time to hold his newborn twins.
8: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
10: The Drive Show with Sandy and Rusby.
11: Hamesha saath dene wale dost.
12: Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. With Sleepy Head Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
13: Power Drive at 5.
14: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
15: पावर ड्राइव एट 5 जारी है आपके लिए. वैसे हम लोग आज बर्न टोस्ट थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे आप डिले हो गए हो या कुछ लेट हो जाते हो और उसके कारण आपने एक बुरी बला को टाला है,
16: कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी वहाँ पे.
15: मोनिशा ने एक बहुत ही बढ़िया लंबा मैसेज यहाँ पे भेजा है जो मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे. उनके साथ जो हुआ ड्यूरिंग वैलेंटाइंस वीकेंड, इनकी फैमिली जा रही थी न्यू प्लिमथ एक वेडिंग के लिए, 20 लोग एक मिनी बस में, एंड इनको निकलना था 1 बजे दोपहर के, लेकिन सब लेट हो गए तो ये 3 बजे तक नहीं निकले. एंड फिर हुआ ये कि जब वो जा रहे थे रास्ते में तो बहुत ही बुरा वेदर हो गया, स्टॉर्म लैंडस्लाइड, जो इन्होंने मिस कर लिया. अगर ये 1 बजे निकले होते तो ये लैंडस्लाइड में फंस गए रहते. बहुत ही बुरा वेदर था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ये बच गए.
16: और तभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी.
15: स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो गई. तो मोनिशा थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग दिस. सो यू नो अक्सर लोगों को बहुत डिस करते हैं जो लेट आते हैं, बट देखो कभी कभार लेट आना सही भी होता है.
16: या लेट पहुंचना कहीं पे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं अब. इसको मतलब ये नहीं कि लेट कमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं.
15: आज हम आपके साथ यहाँ पे खेलते हैं ये
14: सिचुएशनशिप.
15: डोंट गेट एक्साइटेड. सिचुएशनशिप एक ऐसा यहाँ पे सेगमेंट है जो हम लेकर आते हैं, जहाँ पे हम आपके एक सिचुएशन देंगे और आपको यहाँ पे कॉल करके बताना है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे,
16: आप क्या करते।
15: तो आज का जो सिचुएशन है वो ये है कि आप जा रहे हो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, इम्पोर्टेंट एज इन बहुत ही इम्पोर्टेंट एज इन इंटरव्यू हो सकता है,
16: करियर को लेके बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है आपकी,
15: फिर डेट हो सकती है आपके लव्ड वन के साथ, या फर्स्ट गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब फर्स्ट डेट जो होती है ना वो हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, एंड उसमें यू आर रनिंग लेट, आप लेट हो गए हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे इसके साथ?
16: और जो मीटिंग है दिस इज लाइक आपकी कंपनी के जो हाईएस्ट बॉस है ना, कंसीडर वो कर लो उसके साथ, है ना,
15: इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ना
16: वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग,
15: क्योंकि
16: और आपको पता है कि आप कितना लेट हो रहे हो,
15: नहीं आप लेट हो गए हो कितना, नहीं मतलब 10-15 मिनट 15-20 मिनट आप लेट हो गए हो,
16: लेट हो गए हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे डील करोगे सिचुएशन को?
15: यस, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन एंड आस्किंग फॉर अ फ्रेंड जो हमेशा लेट होता है.
16: ओके, सो 0800 हम 0800-4866 इज अ नंबर जहाँ पे आपको कॉल करना है एंड बताना है कि अगर आप इस सिचुएशन में हो, एंड आई एम श्योर इस सिचुएशन में काफ़ी लोग रहते हैं, बहुत बार रहते हैं, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे?
15: आप तो कभी नहीं लेट होते हो ना सैंडी?
16: मैं लेट नहीं होती,
15: बहुत रेयरली लेट होते हो सैंडी.
16: अगर हो भी गए कहीं पे तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट.
15: या सैंडी इज वेरी पंक्चुअल. मैं काफी बार लेट होता हूँ एंड मैंने अभी सीखा है ये करना, दैट आई लाइक टू कीप पीपल इन द लूप. तो मैं उनको पहले ही बोल दूंगा कि लिसन आई एम रनिंग लेट. और मेरे को रियलाइज हुआ है कि मैं लेट क्यों होता हूँ. मैं लेट इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं ओवर कमिट कर लेता हूँ काफी बार. मैं लेट इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि मैं इट्स लाइक अ सलमान खान प्रॉब्लम.
16: ये इसलिए कह रहा है बिकॉज क्या है ना कि अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक ये
15: नहीं यार, हमने पॉडकास्ट किया
16: पॉडकास्ट किया जो अभी तक हमने रिलीज नहीं किया.
15: वीडियो
16: कहाँ पे देखी?
15: वीडियो एडिट कर रहे हो ना, तो शायद आप वीडियो देख रहे हो.
16: मैंने उसकी वीडियो देखी, पर ये जो पॉडकास्ट किया जिस पर्सन के साथ ना, उसने काम किया सलमान खान के साथ, तो ही सेड कि वो लेट होते हैं, फैक्ट है, अपने सेट्स पे शूटिंग में, बट उसका रीज़न ये नहीं है कि ही इज़ लेजिंग अराउंड या कुछ ऐसा, उसका रीज़न ये है कि उसको मिलने इतने लोग आते हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिलता है, शूट पे जाने का टाइम नहीं मिलता है, दिस इज़ द रियल रीज़न. एनीवे, वो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने वैसे बताई थी
15: जो हम बहुत जल्दी एक बार
16: हमारा एडिटर काम कर रहा है उसके ऊपर, मैंने वो काम थमा दिया किसी और को, तो वहाँ से देखो कब आता है.
15: लेकिन अभी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो 0800-4866. सिचुएशन ये है कि आप लेट हो गए हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, वो किसी के साथ भी हो सकती है. हाउ विल यू डील विद इट, व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन?
16: और मेरे पास तो उल्टी सिचुएशन है इससे.
15: हाँ बताओ.
16: मतलब आप इस सिचुएशन में हो और आप सैंडी हो, ठीक है, और आपके साथ रुजबे है उस समय पर.
15: Okay.
16: और देयर आर फ्यू पीपल, और आपको टाइम पे कहीं पे पहुंचना है एक मीटिंग के लिए, एंड रुजबे की बातें खत्म नहीं हो रही है. आप इस सिचुएशन में उसको रैप अप कैसे कराओगे विदाउट साउंडिंग रूड टू द अदर पर्सन, बिकॉज सामने तो उसको ज्यादा आप नहीं बोल सकते हो. एंड जो भी रुजबे के साथ काम करता है ना, एंड जो भी रुजबे के फ्रेंड्स है, नुशीन है, कोलीग्स है, एवरीवन विल रिलेट टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन
15: कि मैं बातें बहुत करता हूँ, ऐसा
16: रैप अप नहीं करता ये बंदा.
15: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, अगर कोई इंटरेस्टिंग है सामने जिससे बात करने में, मतलब
16: डजंट मैटर वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं इंटरेस्टिंग है, उसमें यू स्टिल टॉक.
15: That's why I'm on radio.
16: आप बता सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप निकलते कैसे हो, आप बाय कैसे करते हो? निकलना कई बार बड़ा मुश्किल होता है यार.
15: बाय बोलना तो अपने लिए डिफिकल्टी है ना, वैसे भी हम लोग 10 जगह पे बाय बोलते हैं ना. Like when friends also catch up, we say bye पहले table के आसपास कि चलो bye, फिर दरवाजे पे 10 मिनट bye,
16: हो गया ऐसा,
15: फिर नीचे parking lot में जाके भी bye बोलेंगे, फिर गाड़ी में bye जाने जाते भी bye बोलेंगे, तो ऐसे तो हमारा यार, it's something that we have inbuilt in us.
16: मैसेज करके भी बता सकते हैं 5999 पर.
17: Hollywood's most wanted.
18: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
19: Now,
17: brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: क्रिश एंड किशोर मंडल की आवाज आप सुन रहे थे उन्हें हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आपके लिए लेकर आए थे हम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में ये ब्यूटीफुल गाना फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड थोड़ी देर में आप तक पहुंचाने वाले हैं हम Yeah. आज का कोड आप याद रखिएगा आपको हम जब देंगे उससे ठीक 60 मिनट्स आपके पास होंगे टू गो इनटू द रोवा ऐप एंड पुट इट इन
1: या फिलहाल मौका है वैसे पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रैंड मस्ती नाइट के लिए सो ग्रैंड मस्ती नाइट होने वाली है जहाँ पे फीजी के बहुत सारे कलाकार यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आपको एंटरटेन करने के लिए एंड ये जो नाइट है रुजबे ये वैसे होने वाली है नेटबॉल मेनरोवा में
0: नेटबॉल स्टेडियम मनोरेवा
1: 23 मई को
0: जी
1: सो इसके लिए अगर आपको टिकट जीतनी है यहाँ पे तो आपको ड्राइव स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा थोड़ी देर में एक डबल पास हम निकालने वाले हैं
0: डांसिंग लेजेंड चार्फर वो आ रहे हैं न्यूजीलैंड आफ्टर 17 इयर्स
1: वाओ
0: आई होप मैंने उनका नाम सही से बोला है 5 to 6 मसाला मिक्स किट्स ऑन स्टेज कॉमेडी डांस एंड मस्ती एंड मैडनेस ऑन स्टेज होने वाला है और ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा ये दोनों मेल और फीमेल वॉइस में गाते हैं वो भी वहाँ पे रहने वाले हैं
1: मोंटो मोनिका देन युवा डांस ग्रुप एंड टॉप डीजे साथ ही साथ हमारा केतन ये भी परफॉर्म करने वाला है स्टेज पे सो लॉट्स ऑफ गिव अवेज भी उस दिन रहने वाले हैं सो अगर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉम्पिटिशन में जहाँ पे डबल पास आपका नाम हो जाए तो ड्राइव कीवर्ड लिख के भेजिए 5599 पर अपने नाम के साथ
0: जी इसी के साथ आज 6 बजे के बाद आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में एक अलग ही थीम लेकर आ रहे हैं हम
1: क्योंकि हम एक ऐसी थीम लेके आ रहे हैं जो हम बहुत करते हैं बहुत खाते हैं इसको
0: बहुत खाते हैं हम
1: yeah.
0: ये ऐसी चीज है जिसको आप खाते जितना भी खाओ लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ेगा इससे क्या है वो चीज बताइए यहाँ पे कॉल करके बताइए
1: कभी पेट नहीं भरेगा आपका कभी वेट नहीं
0: बढ़ेगा
1: आपका ये आप खा सकते हैं एंड कई लोग तो इसको बहुत ही शिद्दत से मानते हैं
0: हाँ और अक्सर
1: इस खाने वाली चीज
0: इसको खाते हैं टू प्रूव अ पॉइंट
1: या
0: टू प्रूव अ पॉइंट टू मेक अ पॉइंट ये टू प्रूव अ पॉइंट बहुत बार ये खाते हैं
1: या
0: तो ये क्या चीज है बताइए यहाँ पे कॉल करके देखते हैं कि आप गेस कर पाते हो कि नहीं
1: तुम खाते हो
0: नहीं नॉट रियली क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि आपने अगर एक बार खा ली तो फिर आपको लगातार खानी पड़ेगी
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि फिर वो ऐसा हो जाएगा ना कि अरे अभी क्यों नहीं खा रहा है अभी भी खा
1: तुम तो खाते हो
0: हाँ तुम तो
1: खाते भी खाओ
0: हाँ क्या है ये चीज बताइए यार यहाँ पे मैसेज करके बताइए 5599 पे
1: या फिर ऐसा क्या है जो एक बार खाओ तो फिर आपको बार बार खानी पड़ेगी बिकॉज यू आर आउट देयर ईटिंग इट यू आर आउट देयर खाइंग इट तो
0: खाइंग इट
1: इसलिए खानी पड़ेगी आपको इसी के साथ वैसे अभी
0: नवीन ने आपका फेवरेट बोला है
1: हाँ
0: दिमाग
1: दिमाग नहीं है नवीन
0: वो सिर्फ सैंडी खाती है
1: एनीवे सो अभी फ्लाई अवे फ्रेंजी का कोड भी आपको दे देते हैं बिकॉज वक्त हो चुका है रुजबे आज का स्पेशल कोड क्या है
0: हाँ जी मैं नहीं दे रहा हूँ ये कोड मैं हक देता हूँ आई एम आउट ऑफ इट
1: आज का कोड है रीफ
0: कोड है आज का
1: REEF इज द रीफ इज द कोड ये आपको अभी रोवा ऐप पे जाके फ्लाई अवे फ्रेंजी का जो आर्टिकल है वहाँ पे क्लिक कीजिए वहाँ पे एंटर कर दीजिए और आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे डबल पास सॉरी नॉट डबल पास सिंगल पास रिटर्न टिकट टू फीजी आपके नाम हो सकती है
0: जी हाय आपका स्वागत है
2: हाय हम लोग कसम बहुत खाते
0: हैं right. आप भी खाते हो कसम
2: कभी कभी
1: देखो कसम तो कभी कभी नहीं होती है कभी कभी ना तो
0: जब वो सच
1: तो
0: जब वो सच बोल रही है तभी कसम खाती है
1: उल्टा भी हो सकता है ना
2: माय पॉइंट
0: या उल्टा कैसे हो सकता है आप झूठी कसम नहीं खा सकते हो सैंडी
1: काफी लोग खाते हैं झूठी कसम मैंने खुद देखा है किसी ने कसम खाई और उसके बाद आई ना ये तो झूठ था
0: नहीं झूठी कसम कैसे बाबा आपने कभी खाई है झूठी कसम
2: मैंने तो कभी नहीं झूठी कसम खाई
1: लेकिन काफी लोग ऐसे बोलते हैं ना कसम से ऐसा
0: काफी बार लोग ना वो फिंगर क्रॉस करके कसम खाते हैं क्रॉस योर तो फिर मतलब वो नहीं लगती है कसम बट आई डोंट बिलीव इन दैट I believe कसम ले ली मतलब कसम ले ली भाई
1: तुम नहीं खाते ना इसीलिए
0: मैं नहीं खाता कसम मैं कसम खाऊंगा तो भाई वाट लग जाएगी मेरी
1: सही है थैंक यू
0: आपका क्या नाम है
2: धारा
0: शुद्ध धारा कितने टाइम के बाद मैंने ये किया है ना धारा आपने मिस किया ना मैंने ये करता हूँ वो
2: बहुत
0: देखा ओके आपके लिए किया
1: कसम से बोलो कसम खा के बोलो धारा मिस करती हो
0: ओके थैंक यू धारा थैंक्स फॉर योर कॉल सुनो तो आज हम ये कसम वाला थीम लेकर आ रहे हैं
1: कसम वाले गाने आज आपके लिए हम प्ले करने वाले हैं बिटवीन 6 to 7 अभी लिस्ट भेज डालिए 5599 पर अगर कोई कसम का गाना आप सुनना चाहते हैं कसम नहीं खाएंगे कि हम बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे बट वी विल ट्राई

0: तेरी कसम। तो
1: अटक गए तुम,
0: मैंने भरोसा करना चाहिए
1: या
0: कि वो तो नहीं चाहेगी एटलीस्ट अभी
1: या
0: अभी इंश्योरेंस के पैसे भी मेरे को नहीं लगता है पूरे पड़ेंगे मे भी 10-15 साल में अगर उसने मेरी कसम खाई तो मैं फिर भी डाउट में रह सकता हूँ, बट अभी के लिए आई डोंट थिंक आई विल डाउट हर एट ऑल।
1: ओके, आई थॉट यू नो, तुम अच्छी तरह से नुशीन को समझ चुके हो।
0: हाँ समझ, मैं एग्जैक्टली अच्छी तरह से समझो
1: या
0: बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको याद है कसम खाने के टाइम पे आप खाते थे कसम?
1: मैंने हाँ बहुत ऐसा मतलब लेकिन नॉट सीरियस सीरियस वाली।
0: आप कभी ऐसे गले की तरफ ऐसे हाथ लगाते थे क्या, पिंच करते थे वो गले
1: के? हाँ
0: के कसम यार,
1: कसम से,
0: ये
1: कसम
0: कहां से ये निकला, ये क्या, क्यों ऐसा करते पता है आपको?
1: गुड क्वेश्चन यार।
0: हाँ पूछो चैट जीपीटी को, फिर हम वापस आके बात करेंगे इसके बारे में।
1: या अगर आपको पता है तो प्लीज शेयर ऑन 5599।
0: आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कसम वाले गाने, तो टू स्टार्ट ऑफ दिस आवर इट्स गोइंग टू बी नथिंग एल्स बट मम्मी कसम, बिकॉज दैट इज लाइक द अल्टीमेट कसम ऑफ ऑल टाइम्स। एंजॉय कीजिए।

0: कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आज थीम है कसम, तो कसम वाले भरे गाने आपको हम सुनाने वाले हैं और काफी मैसेजेस भी यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेजेस ओवर हियर।
1: तुमने पूछा था ना कि ऐसा थ्रोट को पिंच करना कसम के लिए, एक्चुअली इट्स वेरी सही। कई बार होता है कि जो थ्रोट है ये एसोसिएटेड होती है विद स्पीकिंग द ट्रूथ, बिकॉज हमारे वोकल कोड्स होते हैं ना यहाँ पर। तो बेसिकली व्हेन यू टच और पिंच योर वोकल कोड्स, इट मींस कि स्ट्रेट कमिंग मेरी आवाज जाए, अगर ये झूठ है तो।
0: ओह माय गॉड, ऐसा होता है? ओह नो, तो मैं तो कभी कसम ना खाऊं यार।
1: So, कई बार ये होता है, ऐसा मतलब बोला जाता है, ऐसा बनाया गया है। एंड एक और रीजन भी है, बॉलीवुड मूवीज टीवी सीरियल्स, वहां पे कई बार हमने ये जेस्चर्स देखे हैं, तो वहां से भी काफी लोग सीखे हैं।
0: दो चीजें हैं, मतलब कसम खाने के ऐसे दो हॉलमार्क्स है बेसिकली। एक तो है कि गले पे ऐसा रखते हैं, दूसरा हम किसी के सर पे हाथ रखते हैं।
1: ओह या,
0: और आपको पता है ये चीज तो कोर्ट्स में भी दिखाया था ना कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ।
1: Oh, yeah.
0: कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
1: yeah.
0: मैं आज तक मतलब कोर्ट में इतना गया नहीं हूँ।
1: मैं भी नहीं, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट अगर दिखाते हैं तो होता ही होगा।
0: नहीं नहीं होता कोर्ट में ऐसा।
1: Oh, really? लेकिन मैंने ये मूवीज में भी देखा है, हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है मैंने।
0: हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे होता है, डिपेंड करता है कौन से कोर्ट में।
1: ओथ होती है वहाँ पे ना।
0: हाँ, ओथ होती है, बट ऐसा गीता वीता नहीं लेकर आते मुझे नहीं लगता है।
1: नो, आई थिंक देयर इज बाइबल, मैंने हाँ देखा है, डिपेंडिंग अपॉन रियल में भी होता होगा, आई डोंट नो, बट मैंने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा है ये, नॉट जस्ट आवर इंडियन सीरियल्स या बॉलीवुड।
0: अच्छा, आपने ऐसा भी देखा है, बाइबल पे हाथ रखते बोलते हैं।
1: हाँ, ये देखा है मूवीज में।
0: कोई अगर रिलीजियस नहीं है तो फिर वो उसके लिए तो वो मैटर नहीं करेगा ना।
1: 100%
0: समवन इज नॉट रिलीजियस,
1: नहीं मैटर करेगा वो।
0: हाँ, सो इट्स अ बिट ऑफ
1: जिसने झूठ बोलना है उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती है,
0: वो भी है।
1: बट एनीवे, बॉटम लाइन इज कि पिंच करना ट्रेडिशनल नहीं है, कोई मतलब रिचुअल नहीं है, बट बनाई हुई चीजें हैं कि मतलब यू नो हम उस चीज के ऊपर ऐसा पिंच कर रहे हैं जो हमारी आवाज है, जिसके थ्रू हम बात वो कर रहे हैं।
0: कसम लेना भी एक्चुअली एक बनाई हुई चीज ही है ना, कि मतलब भाई किसी को प्रूफ कराना है कि भाई मैं सच कह रहा हूँ, तो व्हाट कैन आई कैन put my life on or my put my loved ones.
1: What is modern's way of saying kasam? Honestly.
0: Honestly. Oh yeah, actually.
1: Honestly, this is like this.
0: That is the new way of saying kasam se.
1: Yeah. Let's go. 3, 2, 1. Trend makers. वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। और गानों में जैसे

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, hamari koi branch nahi hai.
1: The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Hamesha saath dene wale dost.
0: Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: You're listening to Hum, Trendmakers जारी है आपके लिए और आज का थीम है कसम. सैंडी, क्या आपको पता था ये कसम जो है ये वर्ड एक्चुअली में कहाँ से इंस्पायर हुआ है?
5: कहाँ से?
4: एक अरबिक वर्ड था कसम, QASAM.
5: ओह.
4: और ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में ये एक फॉर्मल रिलीजियस एक्ट ऑफ स्वेरिंग बाय द नेम ऑफ गॉड था. फिर वहाँ से वो कसम बना KASM. जब वो एक पर्शियन एंड देन फिर हिंदुस्तानी में वो थोड़ा ब्रॉडन हुआ और तब जाके वो कोर्ट रूम में और मॉस्क और टेम्पल में और नेबरहुड में वो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब करा गया.
5: वेरी इंटरेस्टिंग. और ये वैसे मैसेजेस भी आए हैं रुजबे, हमने ये पूछा भी था. काफ़ी कोर्ट्स में जो विटनेसेस हैं ये ओथ लेते हैं या फिर अफर्मेशन लेते हैं बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ टेस्टिमनी
4: कि मैं जो भी कह रहा हूँ ये सच कह रहा हूँ, लाइक यू नो दैट वे.
5: आइदर दे से आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और समथिंग ऑन द सेम लाइन, या फिर अगर उनको रिलीजियस ओथ नहीं लेनी है तो वो बोलते हैं कि आई अफर्म दैट द एविडेंस आई शैल गिव आई शैल बी द ट्रूथ. या इस वे से ये एक्चुअली में गवर्न्ड होता है, ओथ एक्ट है 1969 का. मूवीज में ड्रामेटाइज किया गया है इसको, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, समथिंग लाइक दिस. बट लेकिन होता है काइंड ऑफ ओथ एंड आई अफर्म या आई स्वेयर के नोट पे हर जगह पे होता है ये.
4: बट ऐसे कहते हैं हिस्टोरिकली कसम इज वाजंट जस्ट अ प्रॉमिस बिटवीन टू पीपल, इट रिक्वायर्ड अ विटनेस एज वेल. एक विटनेस की जरूरी थी एंड विटनेस वाज यूजुअली डिवाइन, लाइक द फायर, सन, गैंजेस और द कुरान, भगवद गीता. तो इसलिए वो मूवी में ऐसा मतलब मूवीज में आपको दिखाते थे कि वहाँ पे यू नो या तो भगवद गीता या तो कुरान है और उसके ऊपर हाथ रख के वो कसम खा रहे हैं. सो या देर हैज़ टू बी सम विटनेस, सम काइंड ऑफ विटनेस.
5: या सो देखा जाए तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि कसम का वो मतलब था, आजकल कसम का मतलब वो भी हो चुका है कि कसम से मैं ये करूंगा, लाइक आई प्रोमिस भी kind of same
4: but usme actually
5: aa jata hai.
4: It has become an expression also na ke it has also become like ma kasam, matlab ki
5: yeah like Ranveer Singh company's name is ma kasam.
4: Abhi ek Amazon Prime pe ek series bhi aayi hai na ma kasam.
5: Oh okay.
4: Are bahut badhiya hai wo bhi, bahut comedy like funny series hai. Son and mother ke upar hai wo series hai. Where the son is not trying but the mother is trying to get in a relationship with someone else or son is also in the dynamic, matlab
5: basically. Oh, helping out
4: or not helping.
5: Okay.
4: You know, वैसे
5: sweet. Anyway, so कसम के गाने आज यहाँ पे आप सुन रहे हैं. अगर कोई और गाना आपको याद आता है तो यहाँ पे लेके भेजिए 555 डबल नाइन पर.

0: आप सुन रहे हैं हम्बलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, आपके लिए हम यहाँ पे आज कसम भरे गाने लेकर आ रहे हैं। एंड हम देख रहे हैं कि कसम कैसे इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। एक विजिबल शिफ्ट रहा है सैंडी, पहले ओल्डर विलेज ट्रेडिशंस में एक कसम कुड इवन सेटल अ लैंड डिस्प्यूट। अगर एक आदमी ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर कसम खा ली कि भाई मैंने ये ऐसा किया है और नहीं किया है, कम्युनिटी बिलीव कर लेती थी कि नहीं भाई बेटे की तो झूठी कसम नहीं खाएगा, बेटे की सच कसम खाएगा, तो ये सच बोल रहा है,
1: इतना उसमें ट्रुथ होता था कसम में।
0: हाँ, बट अभी कसम ऑफन इज यूज एज एन इमोशनल लेवरेज। जैसे कि मॉम अक्सर अपने बेटे को बोलते हैं ना, तू मेरी कसम खा, मेरे सर की कसम खा कि तू इससे शादी नहीं करेगा या तू इससे रिश्ता नहीं रखेगा। That sounds familiar.
1: Like emotional blackmailing.
0: Like emotional blackmailing. काफी बार वैसे भी यूज होता है। काफी लोग रिलेट करेंगे इस चीज के साथ, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, बट काफी जो मॉम्स या डैड्स है वो कसम दिलवाते अपने पेरेंट्स,
1: मेरे को लगता है मदर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है ये।
0: हाँ, मदर तो 100% कसम दिलवाती है कि तू कसम खा मेरी, तू ये नहीं करेगा या तू वो नहीं करेगा या वैसा। मैंने तो बहुत सुना है बचपन में। मेरा एक कजिन पहचान का, वो ना बहुत गलत बात करता था, वो सिगरेट स्मोक करता था।
1: ओके।
0: और ये नहीं करना चाहिए, इट्स इंजरियस टू हेल्थ। और उसकी मॉम ने उसको एक बार पकड़ लिया, तो उसकी मॉम ने मेरे और मैं तभी छोटा था, वो मेरे सामने उसको कसम दी है वो कि मेरी कसम खा तू नहीं ये नहीं ना स्मोक करेगा ये वो ऐसा वैसा, और उसने फुल कसम वसम खाई है वो। और 2 घंटे बाद हम लोग बाहर निकले और उसने सुट्टा जलाया वापस।
1: ओह माय गॉड। फिर
0: मैं बोला ब्रो तूने अभी कसम मतलब क्या, और मैं छोटा था। वो बोलता ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता रे, ये तो बस ऐसे बोलने के लिए, उनको शांत करने के लिए। मैं बोला भाई तो क्रेजी है। और लेकिन मॉम को कुछ हुआ नहीं,
1: बट इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग आई गेस,
0: इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग आल्सो।
1: या तो अगर तुम्हारे मन में थोड़ा डाउट है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ गलत कसम खा के, तो इवेंचुअली इट विल हैपन, बिकॉज एनीथिंग व्हाट यू बिलीव हैपेंस ना। वैसे भी मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं कि जो आप बिलीव करते हो, जो आपको लगता है कि ऐसा होगा तुम्हारे साथ,
0: तो
1: वैसा होता है।
0: तो आप अगर ज्यादा दिल पे नहीं लेते हो कसम को,
1: बहुत लाइटली आप उसको कर रहे हो, ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, बाकी हमने कुछ नहीं बोला इसकी जिम्मेदारी नहीं हम ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है बॉलीवुड में जैसे दिखाया गया है कि होली बुक जो होती है डिफरेंट रिलीजन्स की, वो कोर्ट में होती है, बट दिस इज मोस्टली सिनेमा इन्फ्लुएंस। काफ़ी जगह पे अंडर द ओथ्स एक्ट 1979, इवन द इंडियन कोड्स, वो कई बार लोगों को वो देते हैं, चॉइस देते हैं आपको स्वेयर करना है या अफर्म करना है। होली बुक्स की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती है।
0: या बिकॉज इंडिया में तो इतने अलग अलग रिलीजन्स है लोगों के, तो वो बोलेंगे कि नहीं हमको तो ये चाहिए हमको वो चाहिए, ना ऐसा अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना।
1: या कुछ भी हो सकता है। तो एनी वे, सो ओथ टेकिंग, ये ओथ स्वेयरिंग या कह लो नॉट स्वेयरिंग, आई स्वेयर कसम, इसके ऊपर आज की गाने हैं।
0: मोर लाइटर नोट पे वो भी है ना कि जैसे कि अगला गाना जो है लाइक कसम से तेरी आंखें अय्या रे अय्या, अब इसमें किस बात पे कसम खा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है।
1: कसम से कह रहे तेरी आंखें बड़ी सही है,
0: अय्या रे अय्या,
1: अय्या साथ में जोड़ दिया, बताओ मतलब क्या है अय्या का।
0: सुनते हैं पता करते हैं।

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: Hamesha saath dene wale dost.
2: Brought to you by Beds R Us, Monaco and Pukekohe. With Sleepyhead Queen Mattress Frames starting from 449. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
3: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers.
4: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए आज कसम भरे गाने लेकर आ रहे हैं हम. कसम से एक सीरियल भी होती थी ना, बहुत पॉपुलर एकता कपूर की सीरियल थी ये कसम से.
5: I've heard this serial कसम से.
4: हाँ.
5: So
4: डेली सोप था ये 2016 का. नहीं, कसम तेरे प्यार की. एक्चुअली बहुत सारे, आपको पता ना, एकता कपूर का एक बार दौर था जो सिर्फ के वाले सीरियल ही लाती थी.
5: अभी नहीं है क्या?
4: अभी
5: वो?
4: नहीं, मुझे लगता है
5: क्योंकि वो था क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
4: कसम से
5: कसौटी
4: जिंदगी की, सब के वाले थे.
5: सब के वाले थे.
4: फिर एक और था कहानी घर घर की.
5: या और ये बिल्कुल ऐसा टाइमिंग्स पाते थे, 8:30 देन 9:30 ऐसा कुछ रहते थे इनके टाइमिंग्स.
4: मेरी फेवरेट होती थी कुटुम में हितेन तेजवानी अलोंग विद हिज वाइफ, उसका नाम क्या है यार,
5: उसकी वाइफ का नाम, जो क्योंकि सास भी कभी बहू में भी थी. ये दोनों कपल वहाँ पे भी थे ना.
4: हाँ, वो
5: सो वो
4: उनका रेस्टोरेंट वाला ब्रांड भी, कोई रेस्टोरेंट है भी उनका. बिग बॉस में भी आए थे दोनों.
5: ओ यस, बिग बॉस में भी थे. सो या आज हमने कसम वाले गाने गाइज आपके लिए यहाँ पे प्ले किए. गाए नहीं, गाइज आपके लिए प्ले किए.
4: गाने गाए
5: गाने गाने नहीं हमने गाए. गाने तो हमारे लोकल आर्टिस्ट गाते हैं जो आप यहाँ पे सुनते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, जहाँ पे आप उनको बैक करते हैं. तो रिमेंबर सोशल मीडिया पे भी वो अपनी वीडियोस कई बार शेयर करते हैं हम के सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे भी जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा.
4: वेल, कसम के गाने जो हम आपको सुना रहे थे आज, वैसे कसम इज बेसिकली इवॉल्व्ड फ्रॉम फियर ऑफ गॉड या फिर फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन. तो बेसिकली इमोशनल कोलैटरल आप साथ में रख रहे हो टू प्रूव योर
5: पॉइंट,
4: प्रूव योर पॉइंट. And that's why it kind of becomes like a unbreakable oath. क्योंकि अगर आपने वो तोड़ दिया तो आपने आपके loved one को या आपने you know fear of God को stake पे रखा है.
5: Yeah.
4: तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है उसके बाद.
5: तो ये तभी काम करता था जब इसके ऊपर इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था. अभी मुझे लगता है कि आज के टाइम में मैं कम सुनती हूँ कसम. बाकी आप कितना कसम सुनते हो, आप कितना कसम बोलते हो, वो भी यहाँ पे शेयर करना. और इसी नोट पे हमारा टाइम हो चुका है यहाँ पे आपको टाटा बाय बाय कहने का.
4: जी, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड वन, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट इवनिंग. कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल थर्सडे.
5: या इट इज थर्सडे,
4: ऑलमोस्ट वीकेंड,
5: ऑलमोस्ट वीकेंड के करीब पहुंच रहे हैं. और कल भी कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ट्रेंड मेकर्स में भी कुछ नया लेके आएंगे. कल हम 5 बजे के बाद क्या करने वाले हैं रुस्बे?
4: कल हम 5 बजे के बाद, कल थर्सडे है ना.
5: yeah.
4: कल हम करेंगे ये 5 बजे के बाद. सुने नहीं दिया ना आपको?
5: ड्राइव थ्रू कन्फेशंस.
4: फिर से सुनाओ क्या?
5: yeah.
4: एक बार सुन.
3: Drive-through confessions.
4: कल confessions वाला time है, तो
5: so, अगर
4: कल...
5: आपको कुछ confess करना है, now is the time to join our group. हमारे group का नाम है, जो कि Facebook पे है, Unfiltered Crew. Unfiltered Crew, दो words है. तो आप search कीजिए वहाँ पे, anonymous होके आप अपना एक confession अगर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेके कर सकते हैं. एंड कल इसके बारे में बात करेंगे,
4: कल इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में. But have a wonderful rest of your evening. We'll see you soon.
5: Bye.
4: Bye.

0: ई भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Prime Minister Christopher Luxon has put immigration firmly on the agenda ahead of the election, saying National will put forward careful policy and that he'll put the need for social cohesion ahead of business profit every time. The reaction of New Zealand First Leader Winston Peters was to question how the PM can reconcile that with the Indian Free Trade Agreement. Todd McClay is expecting the US might launch a review of lamb exports. The Trade Minister not fussed that both New Zealand and Australia would be in the spotlight. And excitement is building in Christchurch ahead of the first ever concert at Te Kaha 660, the headline act, this weekend. In sport, the Chiefs Highlanders Super Rugby Pacific clash on Friday evening in front of new All Blacks coach Dave Rennie. For the Chiefs, Josh Jacom and Damian McKenzie will share the playmaking duties. Jacom at first five, McKenzie at fullback. The Highlanders running out of time to make the playoffs, just one change in midfield from the team that delivered last weekend. And Rugby League with Machinery House, a bombshell announcement today with Ivan Cleary leaving the Penrith Panthers head coaching role at the end of next season.
3: Sports News,
1: brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi
1: hai. Night Cafe on Hum. Aapka moment, Krish ka magic, only on Hum.
5: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ नाइट कैफे में और 12 तक ये चलता रहेगा। आपके लिए अमेजिंग सॉन्ग्स लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड खबरें भी आपके लिए हम लेकर आएंगे, स्पेशली ऑन दिस आवर 8 to 9 जब आपके लिए रहेगा नाइट कैफे मिड वीक मसाला ग्रेवी के साथ। एकदम मज़ेदार बॉलीवुड गॉसिप में लेकर आऊँगा आपके लिए। ग्लिट्स एंड ग्लैमर में क्या हो रहा है और हमारे बी टाउन में क्या हो रहा है, इस पर जानकारी बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा। लेकिन ओवरऑल नाइट कैफे में बहुत कुछ रहेगा आज। काफ़ी कम्युनिटी न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूं, काफी कंपटीशन के बारे में जानकारी जिसके तहत आप जीत सकते हैं शानदार इनाम, और ऑफ कोर्स बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स तो आपके लिए रहेगा। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए नाइट कैफे मिडवीक मसाला।
1: थोड़ा हटके थोड़ा स्पाइसी, ये है मिडवीक मसाला।
5: वेलकम एवरी वन टू नाइट कैफे मिड वीक मसाला, जिसमें बॉलीवुड के मसालेदार गॉसिप में लिख रहा हूँगा आपके लिए और इंटरेस्टिंग खबरें क्या कुछ हो रहा है आपके सितारों की दुनिया में। कुछ सितारों को सलाम भी करेंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रितेश देशमुख ने 100 करोड़ बजट रूमर्स को शट डाउन किया है। शाहिद कपूर का एयरपोर्ट इंसिडेंट वायरल हुआ है। आलिया भट्ट ने फैमिली फिल्म दादी की शादी को प्रेज किया है। आमिर खान ने रिधिमा कपूर शानीज एक्टिंग को प्रेज किया है। नीतू कपूर इज फैमिली बॉन्डिंग मोमेंट, ये सभी कुछ हमारे पास आज है आपके साथ शेयर करने के लिए। स्वागत है आपका नाइट कैफे मिडवीक मसाला में।

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits 8 to 9 ke beech lekar aate hain, Night Cafe Midweek Masala, aur 9 PM onwards till midnight aapke liye rehta hai Night Cafe, jisme bahut kuch hum shamil karte hain. Shahid Kapoor ka airport incident goes viral. Inko dekha gaya tha briefly cutting a queue at the airport, lekin inhone khud queue jump nahi kiya tha, lekin he did it at a request of an elderly man, jinhone inko insist kiya tha ki ye aage jaye. I think maine bhi ye video देखा है जहां पर, एंड इफ आई प्रॉपरली रिकॉल, वीडियो में ये जो आदमी है, बुजुर्ग आदमी, इनसे कहते हैं कि आप आगे जाइए क्योंकि लोग आपको घेर लेंगे या आपको लोग आपके पास आ जाएंगे और भीड़ हो सकती है, तो इसलिए उनको आगे जाने का मौका दिया गया. ये मोमेंट कैप्चर किया गया बाय मैनी और शेयर किया गया वाइडली ऑनलाइन, और फैंस ने रिएक्ट किया विद मिक्स्ड ओपिनियंस, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको लाइट हार्टेड कहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बॉलीवुड खबरों में और भी इंटरेस्टिंग खबरें आप तक हम पहुँचाएंगे बहुत ही जल्दी. अपकमिंग नेक्स्ट इज़ आलिया भट्ट स्टोरी, जिन्होंने अपनी फैमिली फिल्म दादी की शादी को प्रेज़ किया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

You're listening to Night Cafe Midweek Masala aur main Krish aapke saath de raha hoon. Ritesh Deshmukh ne clarify kiya hai rumors about the budget of his film Raja Shivaji aur unhone kaha hai ki only producers ko real financial figures aur details ke bare mein jankari hota hai. Ye film ek large scale historical drama hai about Chhatrapati Shivaji Maharaj aur ye statement unhone tab diya 8 May ko, in fact ye publish hua hai. Tab inhone ye statement diya jab growing speculation online hone laga tha ki is film ka budget 100 करोड़ है तो रितेश देशमुख वहीं पर स्टैंड लेते हुए कहा कि सही फाइनेंशियल फिगर्स ओनली नो वन टू प्रोड्यूसर्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं. कुछ ही देर में शाहिद कपूर के एयरपोर्ट इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जो वायरल हो चुका है.

0: Midweek Masala.
1: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Jari hai hum par Night Cafe Midweek Masala, jahan par Bollywood ki masaledar gossip lekar aate hain aapke liye, khabre lekar aate hain aapke liye. I'm sure bahut sare Bollywood lovers hai around, kyunki hum aapke liye play karta hai Bollywood's biggest hits aur Bollywood information to banta hai aapke liye hamesha. Alia Bhatt ne review kiya hai apni film Dadi Ki Shaadi aur praise kiya hai Neetu Kapoor aur Ridhima Kapoor Sahni ke kirdaron ke liye aur unke abhinay ke liye. इन्होंने उनका परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट किया और स्क्रीन प्रेजेंस को भी सराहाया. इन्होंने कहा कि फिल्म इज़ अ फैमिली ड्रामा विद इमोशनल और कॉमेडिक एलिमेंट्स. इनके कमेंट से फिल्म को एक एडिट बज मिला है और काफ़ी लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं. आमिर खान ने भी एक तरफ रिधिमा कपूर के परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी तारीफें की है और इन्होंने रणबीर कपूर के साथ इनकी तुलना भी की है, तो इस पर भी जानकारी मैं आपको बहुत ही जल्दी दूंगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online, and collect big bonus points. Hurry! Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
2: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin. Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
3: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
2: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
3: Professional Financial Solutions. Your future our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
0: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: हम. Night Cafe on Hum. थोड़ा हटके, थोड़ा spicy. ये है midweek masala.
5: You're listening to Bollywood's biggest hits only on Hum, और अभी जारी है midweek masala आपके लिए, जहां पर Wednesday nights को 8 to 9 PM के बीच लेकर आ जाते हैं आपके लिए Bollywood खबरें. आमिर खान ने रिधिमा कपूर साहनीस की एक्टिंग को बहुत सराहाया है. इन्होंने कहा है कि रिधिमा कपूर performed better than रणबीर कपूर इन द फिल्म, और इन्होंने डिस्क्राइब किया है द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग हर एक्टिंग एज एन्जॉयबल, और इसके रिमार्क के वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी इस फिल्म को मिली. स्पेशली रिधिमा कपूर के प्राइजेस और भी बढ़ गए और काफ़ी बड़ा अटेंशन इस फिल्म को मिला इन दी एंटरटेनमेंट मीडिया, और इट्स स्पार्क डिस्कशंस अमंग्स फैंस ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जिसकी वजह से इस फिल्म का प्रमोशन और भी बढ़ गया. तो बहुत फ़र्क लाता है अगर एक बहुत ही बड़ा एक्टर, सुपरस्टार, अगर किसी की तारीफ करे और सोशल मीडिया तक वो बातें लेकर जाए. इससे एक बहुत ही बड़ा चेन ऑफ डिस्कशन बन जाता है जो वायरल हो जाता है, और इस फिल्म को काफ़ी बूस्ट मिला है थ्रू ऑल द प्राइजेस इट हैज़ रिसीव्ड. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, आपके लिए जारी है नाइट कैफ़े, जिसमें 8 to 9 के बीच आपके लिए नाइट कैफ़े मिडवीक मसाला भी हम शामिल कर रहे हैं.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Neetu Kapoor ne kaha hai ki she shares family bonding moment aur ye bahut khush hai isse. Inhone reveal kiya she enjoyed morning pedicure sessions with her daughter, with her granddaughter Raha. Aur is post se kafi log prabhavit hue hain aur bahut pyar dikhaya hai ki is tarah ka bonding hona chahiye family ke beech aur ek grandmother aur granddaughter ka bonding aisa hona chahiye. Aur isse ye bhi highlight hua hai ki they share a very close bond amongst each other aur pura family bahut hi close knit hai. Fans ne warmly react kiya to the personal glimpse into her life aur isse ye bhi samne aaya hai ki they showed a softer domestic side of the actress jo bahut kam baar dekhne ko milta hai. नाइट कैफे मिडवीक मसाला में आज के लिए इतना ही. अगले हफ्ते और भी बॉलीवुड न्यूज़ लेकर आएंगे, लेकिन बॉलीवुड न्यूज़ तो हमारे हम पर चलते ही रहता है आपके लिए. टाइम एंड अगेन आपके लिए हम इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बॉलीवुड खबरें लेकर आते हैं. फिलहाल 8 to 9 मिडवीक मसाला यहीं पर ख़त्म होता है. मिलते हैं अगले घंटे पर, जहाँ पर नाइट कैफे को और भी आगे बढ़ाएंगे इंटरेस्टिंग खबरें और म्यूज़िक के साथ. सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
6: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go
0: to the boat show. Hum, time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The Prime Minister is not ruling out further job cuts in the public sector. In a pre-budget speech, Christopher Luxon revealed about $300 million of operating spending has been saved. Police have confirmed one person died this afternoon in central Otago after a serious crash on Grover's Hill walking track in Roxburgh. And in Bay of Plenty this evening, part of Te Puke Highway in Papamoa is closed following a two-vehicle crash. Indications are that there are critical injuries. Health NZ has confirmed one of the New Zealanders on board the cruise ship struck by Hunter virus does not usually live here. And in sport, rugby with shift 4, the Super Rugby Pacific Derby game at Eden Park on Saturday night. 5 changes to the Blues, including Bowden Barrett starting at 10, 8 changes to the Hurricanes. The White Ferns have a chance to level the ODI series with England overnight. Game 2 in the 3-match ODI series in Northampton starting in 3 hours. And former Silver Ferns captain Gina Crampton has answered a call from the Mainland Tactics and will play wing attack on an initial 2-week contract.
6: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
8: 1 यू लिसनिंग टू नंबर 1 हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रात 12 तक। अभी 8 टू 9 मिडवीक मसाला के बाद आपका स्वागत है, क्योंकि बॉलीवुड्स म्यूजिक आपके लिए चलता रहेगा, बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स चलता रहेगा, एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे। फिलहाल अभी न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स हो गया और सुनाते हैं आपको बैक टू बैक सॉन्ग्स, ताकि आप आराम कर पाए, एंजॉय कर पाए अपने फेवरेट म्यूजिक बैक टू बैक। तो 7 गानों को आप सुने, उसके बाद में 30 मिनट्स के बाद मुलाकात होती है, जहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट वेरियस कॉम्पिटिशंस, कम्युनिटी इवेंट्स जो होने जा रहे हैं हमारे ओकलैंड में, जिसमें आप भाग ले पाएंगे। रिटर्न या टिकट टू फीजी जीतने का मौका एंड सेलिब्रेटिंग लोकल आर्टिस्ट को, इस पर जानकारी हम आपको देंगे। लोकल आर्टिस्ट है तो कैसे इसमें आप भाग भी ले पाएंगे, इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मैं बहुत ही जल्दी देने जा रहा हूं। फिलहाल इट्स टाइम टू एंजॉय बैक टू बैक सॉन्ग्स फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंजॉय एवरीवन।
9: King Khan, yo, honey singer.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. Community news में बहुत कुछ हो रहा है. श्री वेंकटेश्वरा देवाष्टनम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भोजन मेला यह होने जा रहा है. फूड कार्निवल होगा 17th मई को 11 AM टू 4 PM यह होगा 378 RRIMU Road Ramarama. ये जो भोजन मेला है, खास इसके पीछे जो रीज़न है, इट इज़ टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल प्रोजेक्ट. फ्री एंट्री होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्री होंगे, फ्री फूड होगा बाय शिवानी रेस्टोरेंट, ज्वेलरी क्लोथिंग और अदर स्टॉल्स यहाँ पर होंगे. हिना आर्टिस्ट फेस पेंटिंग भी यहाँ पर होगा. बाउंसी कासल भी रखा गया है. स्पॉन्सरशिप डिटेल्स और स्टॉल्स के लिए आप शिवानी अरोरा से बातें कर सकते हैं 021-870-012 पर. कुछ ही देर में 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे पर बातें करेंगे. 16th मई को ये होने जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि ये मलयोला कम्युनिटी सेंटर में होगा और इसके बारे में जो और भी जानकारी है बहुत ही जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूंगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो यू नंबर वन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ ये सिर्फ म्यूजिक नहीं ये है इमोशन पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स गूगल PFSL टुडे And Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
3: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. Auckland Showgrounds, May 14 to 17. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta come.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to your number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Night Cafe jari hai. Aaj 13th May hai. Aapka janamdin hai. A very happy birthday. Aapko wish karte hain. Bahut sara pyar pure parivar walo ki or se mila hoga. Lekin special love team Hum ki or se hum aap tak bhej rahe hain. Many happy returns of the day. May all your dreams come true. Aur hamesha aap khush rahe. यही हम चाहते हैं. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ओवरसीज में. अगर आप ऑनलाइन सुन रहे हैं आपका जन्मदिन है. बेस्ट विशेज और बर्थडे विशेज हम यहां से आप तक भेज रहे हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. अगले घंटे पर मिलते हैं न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में फॉलोड बाय 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए रहेगा.

0: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे promotion दे देगा. और ये coffee? Lukewarm. A taste बिल्कुल heartbreak जैसा. Please sir, तू cubicle के लिए नहीं बनाए. तू beach के लिए बनाए. तू life को enjoy करने के लिए बनाए.
1: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
2: Hum. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Good evening to you with the latest at 10. I'm Geoff Brian. Prime Minister Christopher Luxon claims an increasing number of New Zealanders who've moved to Australia are coming back. He says there's been an 18% rise in the last 12 months. A fatal accident in central Otago this afternoon. Police confirming one person died at the scene after a crash involving a truck that rolled on Grover's Hill walking track in Roxburgh. In Bay of Plenty this evening, part of Te Poki Highway in Papamoa is closed following a two-vehicle crash. British Prime Minister Sir Keir Starmer continues to defy calls to resign. This evening, Health Secretary Wes Streeting visited No. 10 Downing Street. That meeting lasted just 19 minutes. Read into that what you will. In sport, the White Ferns may have a chance to level the ODI cricket series with England. I say may because the game is set to start at midnight our time, but light rain is in the Northampton forecast. And in football updates brought to you by Hisense, a crucial game in the English Premier League tomorrow morning from 7. Manchester City is in second place, 5 points behind leaders Arsenal with a game in hand. City at home to Crystal Palace.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: How? Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
4: वेलकम बैक एवरीवन, यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रात 12 तक हमारा साथ रहेगा नाइट कैफे में. इट इज़ पास्ट 10, अनदर 2 आवर्स टू गो. और इन 2 घंटों में आपको हमारा साथ देना है क्योंकि प्यारे प्यारे गाने हम लेकर आए हैं. और इस घंटे पर वाइब मिक्स इवेंट्स, द ग्रैंड मस्ती नाइट पर जानकारी देंगे, चर्डल कॉम्पिटिशन पर जानकारी होगा, $100 अ डे जीतने का मौका है, क्या आप जीतना चाहते हैं फ्लाई अवे फ्रेंजी के दौरान रिटर्न एट ट्रिप टू फीजी, तो इस पर जानकारी. लोकल आर्टिस्ट के बारे में भी जानकारी है जहां पर बैक योर बैकयार्ड बीट्स के दौरान आपके वोटिंग के आधार पर आप कुछ लोकल आर्टिस्ट को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं. ये सभी कुछ इसी घंटे पर रहेगा. बट फर्स्ट आप 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक.

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: Welcome back, everyone. You're listening to number one, Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Vibe Mix Events द्वारा ये प्रस्तुति है The Grand Masti Night 23 मई को ये होने जा रहा है नेटबॉल मनुरेवा में. यहाँ पर सत्यानंद, जय भैया जी और राउडी नमन को आप देख पाएंगे. चरफर भी यहाँ पर, डांसिंग लेजेंड चरफर भी परफॉर्म करेंगे आफ्टर 17 ईयर्स इन न्यूजीलैंड. 5 to 6 मसाला मिक्स होगा, स्किट्स होंगे ऑन स्टेज, कॉमेडी और डांस होगा और मस्ती और मैडनेस यहाँ पर होने जा रहा है. ड्यूअल वॉइस सिंगर मनी डिसूजा को भी आप देख पाएंगे. अमेजिंग टो मोनिका जो बहुत ही बेहतरीन डांसर है ये भी परफॉर्म करेंगे. युवा डांस ग्रुप होगा, टॉप डीजेज होंगे, बहुत सारे गिवअवेज भी यहाँ पर जीतने का मौका रहेगा. टिकट्स फ्री, एक्चुअली फ्री पार्किंग और सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड होगा. टिकट्स आप हंड्रेड फुट टाउन, पापाटोए, जय फ्रेश मार्ट, पापाटोए गेट फ्रेश सुपर मार्केट, मैंगरी केस है एंड ब्यूटी सलोन, मनुरेवा, विकेट चिकन, बॉटनी और जेंडर है एंड ब्यूटी सलोन से भी आप ले सकते हैं. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक पहुँचाएंगे. फिलहाल और भी प्यारे म्यूजिक आपको सुनाते हैं.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रात 12 तक 13th मैं है और नाइट कैफे आपके लिए जारी है हम फ्लाई अवे फ्रेंजी इसके बारे में तो आपने सुना होगा यू कैन एस्केप टू पैराडाइज और इट कैन नेवर गेट बेटर देन फिजी पीवा आइलैंड वाइब्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इनके बीचेस बहुत प्यारे हैं और स्नॉकलिंग अगर आप करते हैं डाइविंग करना चाहते हैं तो ब्यूटीफुल कोरल इकोसिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड आई लव्ड माई टाइम स्नॉकलिंग हियर अगर आप आइलैंड्स वगैरह जाते हैं तो ऑल यू नीड इज़ अ रोवा ऐप अल्टीमेट ट्रॉपिकल गेटवे जीतने के लिए सुबह 11 बजे दिन में 11 बजे 1 बजे और शाम 5 बजे आपको हम स्पेशल कोड वर्ड्स दिए जाएंगे जैसे आप कोड वर्ड्स सुनते हैं 60 मिनट्स के अंदर ये कोड आपको रोवा में एंटर करना होगा और ड्रो में शामिल होकर आपका नाम अगर निकलता है तो रिटर्न एयर टिकट टू फीजी जीतने का मौका रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई

0: Coffee on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. Swagat hai aapka. Night Cafe mein main Krish aapke saath de raha hoon. This is our final hour of Wednesday night. Night Cafe, jo 12 tak chalta rahega aapke liye. Is ghante par NZ Music Month par baate karenge. Interesting khabre aapko batana hai. Top 3 artist ko final karane mein aapka kitna bada yogdaan hoga. Is par jankari main aapko dunga. Saath hi mein, agar samay raha to kuch information bhi lekar aaya hoon aapke liye, jo aapke saath hum share karenge. Humans may have 33 senses. Ye bhi ek जानकारी हमारे पास इंटरनेशनल स्टडी किया गया है अगर समय रहता है तो इस घंटे पर आपके साथ शेयर करेंगे बट फिलहाल लेट्स एंजॉय 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक 7 से 8 गाने आपको सुनाते हैं एक के बाद एक एंड आई एम श्योर यू लव इट एंड यू विल एंजॉय इट क्योंकि गाने बहुत ही प्यारे हैं

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one. I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा till midnight. एक के बाद एक आपके सारे favorite songs हम लेकर आते रहेंगे. NZ Music Month जारी है. Local talent को support करने का मौका है. Back your backyard beats is what we are calling this month to support our local talent and celebrate their music. तो अगर आप इनको vote करना चाहते हैं सुबह 8 बजे, दिन में 11 बजे, शाम को 2 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 5 बजे, रात को 10 बजे, इनफैक्ट वीकडेज के दौरान के गाने बजेंगे. आप अगर सुनते हैं तो वोट जरूर कीजिएगा. टेक्स्ट ऑन 5599 विद कीवर्ड MM और आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट को टॉप 3 में ला सकते हैं. और हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाए, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अपने फेवरेट आर्टिस्ट के लिए. और विनर की घोषणा और जो निर्णय है दैट विल बी डिसाइडेड बाय टोटल एंगेजमेंट, आपके रेडियो वोट्स और सोशल लव के दौरान या आधार पर इनको विनर घोषित किया जाएगा. कुछ ही देर में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आऊँगा कि अगर आप एक आर्टिस्ट है, आपके पास ओरिजिनल म्यूजिक है, तो आप क्या कर सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस NZ म्यूजिक मंथ. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि आज ही मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप तो
4: आए आए बताओगे यार।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Poke Koi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप ऑन

0: Coffee on Hum.
1: You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Saath rahega 12 tak, which is only a few more minutes hum aapke saath denge. Agar aap ek local artist hai, original music agar aapke paas hai, aapke paas abhi bhi mauka hai to participate in our NZ Music Month jo competition abhi chal raha hai, taki aap bhi vote ho, aapka bhi vote agar hoga, aap top 3 mein chune ja sakte hain aur aapka gana Rover par feature hoga. MM text kare 5599 par, details aapko mil jayega. Aur apna best track और बायो आप अगर buzz@humfm.com पर भेजते हैं, आपके गाने को सुना जाएगा और अगर रेडियो पर प्ले किया जाता है तो हमारे लिसनर्स आपके गानों को वोट करके आपको टॉप 3 में ला सकते हैं. शानदार हेम्पा भी जीतने का मौका रहेगा आपके पास. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. वेंसडे नाइट इट इज कमिंग टू एन एंड विद नाइट कैफे. जो अभी हमारा कुछ एक दो गाने रह गए हैं वो सुनाते हैं आपको. हमारी मुलाकात होती है कल थर्सडे को 8 टू मिडनाइट. हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए रिदम एंड रोमांस, जहां पर रोमांटिक गाने रहेंगे आपके लिए 8 से लेकर 12 तक, और प्यारे प्यारे लवली सॉन्ग्स आपको मैं सुनाऊंगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, सुनते रहो हम, और 12 तक तो हमारा साथ रहेगा. कुछ गाने छोड़े जा रहा हूं और कल तो मुलाकात होगी. Have a wonderful rest of your night. और कल अच्छी तरह बीते, रात को मुलाकात होती है. कृष का बहुत सारा प्यार. Good night everyone.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Night Fly.

0: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hits. Budget gaane.

0: keep calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।
5: Night Flight.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands nahi hai.
4: Night Fly.

तो कुड़िया साड़ी गली चिरंदिया एक पतली एक पहारी हो पहारी दाते ब्याह हो गया पतली लगे प्यारी के दाल में नमक भुल गई के दाल में नमक भुल गई जद खिच के हो जद खिच के छड़े ने अख मारी।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
0: 6 to 10 AM.
5: Auckland, इस वीकेंड $100 स्पेंड करो इन स्टोर एट Mytiden Mega Westgate and Henderson और पाओ $20 Mytiden gift card सिर्फ Saturday and Sunday. T's and C's apply. More value, more projects, more savings. जल्दी कीजिए Mytiden Mega Westgate and Henderson.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह।
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 3।

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.

फिर अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजयी बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या है कि मैं
3: बहुत खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
5: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
0: Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A counterbalance is being offered to the slashing of the government's budget allowance. The Prime Minister says they've had to reduce it by $300 million. NZ Initiative Chief Economist Eric Crampton says sacrifices are needed.
7: Getting that back in order requires more than just keeping allowances tight if economic growth doesn't pick up a lot.
6: Patient Voice Aotearoa is calling for a review of pathology services in Invercargill. Awanui Labs was found to have failed to quickly diagnose a woman's stomach cancer. PVA's Malcolm Mulholland worries others have gone under the radar.
8: And what we need to know is whether or not other cases had been misdiagnosed.
6: Health NZ says there is no evidence of a wider systemic issue. There's been an increased security presence at a West Auckland train station after a fight involving teens. As RNZ reports, Auckland Transport says an incident involving a group of young people, some in school uniforms, occurred at the Sturgis Road car park on Tuesday. And a bleak warning from the European Union over jet fuel stocks. Its Energy Commissioner says the possibility of a longer-term shortage cannot be ruled out.
9: This all depends, of course, on the situation in the Middle East, on how the market are reacting, how the airline companies are reacting.
6: In sport, the wait is almost over for New Zealand's footballers hoping to play at next month's World Cup in North America. Coach Darren Bazley will reveal the 26 players who have made the cut in Auckland at 11 a.m. And a crucial match for Manchester City in English Premier League football this morning. They're hosting Crystal Palace and need all 3 points to maintain pressure on Arsenal in the title race. Kickoff is at 7 a.m. Football with Hisense. Win a FIFA World Cup experience at hisense.co.nz.
0: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
10: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
11: सूचित किया जाता है कि बलवंत मिस्त्री, अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयबेन मिस्त्री की मां, यानी नावुआ सेंट्रल स्टोर पीजी के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डोट प्लेस वीडी में किया जाएगा। बलवंत मिस्त्री, अरविंद वल्लभ, मधुबेन मिस्त्री और जयाबेन मिस्त्री की मां, यानी नावुआ सेंट्रल स्टोर फिजी के मालिक स्वर्गीय वनमाली भाई वल्लभ की पत्नी जशुबेन मिस्त्री की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 4 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीडी में किया जाएगा।
10: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: 9.5 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17 degrees, overnight kam se kam 7 degrees rahega. Aaj mausam saaf aur suhana rahega. Sunrise subah 7:10 par aur sunset aaj ka 5:25 p.m. par hone ko hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and

0: Ketchup.
1: चार मिनट हो रहे हैं, छह बजकर नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज थर्सडे है, 14th of May, आज की ये सुबह आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। वापस आपके साथ हम शामिल हो गए हैं इस प्रोग्राम में। कल आपसे कहा था कि आज सुबह आएंगे, तो लीजिए भाई हम आ गए हैं और चार घंटों के लिए आपका साथ इस प्रोग्राम में देने वाले हैं, जिस दौरान आज तमाम चीजों के बारे में बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग और आपको भी, आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। एक नई सुबह के साथ एक नए सफर की शुरुआत पर हम निकल चुके हैं और उम्मीद है कि आज ये शुरुआत एकदम बढ़िया होगी, जिससे कि आज के पूरे सफर का मजा आप उठाएंगे हमारे साथ।
1: सफर तभी बहुत खुशनुमा होता है जब हमराही जो है एक दूसरे का साथ जो है ये देते हैं सफर में। तो उम्मीद है हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए एंड होपफुली आप भी हमारा साथ देंगे। आज 14 तारीख मई है और खास तौर पर जो लोग फिजी से हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन पहली मर्तबा गिरमिट प्रथा के तहत लोगों को, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको भारत से फिजी ले जाया गया था।
2: द हिस्ट्री ऑफ द गिरमिट बेसिकली आज ही के दिन ये शुरू हुआ था और द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजी इंडियंस आई वुड से कि कहीं ना कहीं इसकी नींव आज ही के दिन रखी गई थी। तो आज डेफिनेटली एक ऐसा दिन है जिस पर बातें करना, कुछ यू नो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वीव ऑलवेज सीन एस फिजी इंडियंस, जब भी हम किसी से मिलते हैं या किसी को मेंशन करते कि अच्छा वी आर फ्रॉम फिजी एंड हमारी जो बोलचाल होती है तो वो थोड़ा ऐसे सरप्राइज ज़रूर होते हैं एंड देन द क्वेश्चंस स्टार्ट कमिंग इन ना कि ये कहाँ पर है फिजी और ऐसा कैसे कि लाइक आप अब देखने में तो बिल्कुल हम जैसे लग रहे हो लेकिन यू नो योर बोलचाल इज़ वेरी डिफरेंट। और एक एक एक सिचुएशन मुझे याद आई इसी बात से कि जब हम यू नो ट्रिप टू इंडिया गए हुए थे तो देर वॉज अ टाइम वेन वी वर बेसिकली ट्रेवलिंग इन अ कैब और उस दौरान जो कैब ड्राइवर है बहुत शांत अपने आप में वो ड्राइविंग कर रहे थे, कुछ नहीं बोला। तो मेरे साथ देर वॉज अनदर यू नो पर्सन जिन्होंने टूर में हिस्सा लिया था और उनका नाम है संजनी, लाइक बोथ ऑफ अस वी वर ट्रेवलिंग इन द कैब और हम खुद में आपस में फिजी हिंदी में बातें कर रहे थे। सो द कैब ड्राइवर वॉज लाइक यू नो काफ़ी देर उन्होंने सुना हमारी हर एक बात, वो सुन रहे थे एंड अचानक से उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा आप कहाँ से हो। तो हमने उनको बताया कि हम कहाँ से हैं कि हम हमारी पैदाइश फिजी की है लेकिन हम न्यूजीलैंड में रहते हैं। तो थोड़ा ऐसे वो बोलते ना एकदम सरप्राइज और शॉक रिएक्शन दोनों एक साथ। फिर उन्होंने ये बोला कि पता है आप बिल्कुल हमारी भाषा बोल रहे हो, जो भाषा हम बोलते हैं। तो वो यूपी के थे और यूपी आई डोंट रियली रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ से, पर उन्होंने यही बताया कि लाइक जब आप बातें कर रहे थे तो मुझे सब समझ में आ रहा था क्योंकि आप बिल्कुल हमारी तरह बोल रहे हो। एंड ही वॉज सो मेजमराइज बाय द फैक्ट कि एक जैसे दिखने वाले लोग, एक जैसे बात करने वाले लोग भारत में नहीं है लेकिन कहीं और भारत से इतनी दूर किसी और कंट्री में उनकी पैदाइश हुई है जिसके बारे में उन्होंने अपनी जीवन में कभी सुना भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि फिजी कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ है या कोई ऐसा एक देश भी है। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड दैट एक्चुअली आज के इस दिन पर मुझे वो बात भी याद आ गई, तो सोचा लगे हाथ ये भी शेयर कर ले। अगर ऐसा कुछ आपके मन में भी कभी ना कभी आया है तो टुडे इज़ अ वेरी गुड डे टू फाइंड आउट अबाउट यू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजी इंडियंस एंड गिरमिट दिवस। क्यों ये एक एक ऐसा दिन है जहाँ पर हिस्टोरिकल तो है ही लेकिन इट्स हिस्ट्री विद अ लॉट ऑफ पेन।
1: तो आज इसके बारे में और भी बातें इस प्रोग्राम में बारी बारी से हम करते रहेंगे। फिलहाल इस सफर का आगाज आज हम कर रहे हैं थोड़ी ही देर में, आज सनी साइड अप में एक और स्टोरी आपके लिए हम लेकर आएंगे।
3: ओ सारे

0: Side Up.
1: आज सनी साइड अप में जो कहानी है ये सारा नाम की एक लेडी की है, एक महिला की है। और ये महिला जो है ओरिजिनली यूनाइटेड किंगडम की थी, बट शी वाज स्टेइंग इन मेलबर्न। और उनके साथ क्या हुआ कि उनके पिता जो हैं ये बहुत बीमार थे बैक इन यूके, एंड बेसिकली अपनी अंतिम सांसें जो हैं ये गिन रहे थे। लेकिन और सारा को जाना था अब पिता के आखिरी पल में उनका साथ देने के लिए, लेकिन उसी समय पर उनका खुद का कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गई। एंड शी वाज डेवेस्टेटेड कि उनके पिता जो है अपने अंतिम समय में अकेले रह जाएंगे। तो एक नर्स, एक यंग नर्स जो है, उन्होंने ये देखा और उनको एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। तो नर्स जो है, जब इन्होंने अपना शिफ्ट जो है ये ख़त्म किया, ये आ गई सारा के बेड के पास।
2: ओके।
1: चार घंटों तक जो है सारा के बेड के पास, नहीं सॉरी, सारा के पिता के बेड के पास इन लंदन।
2: अच्छा।
1: हाँ,
2: वो ट्रेवल करके गई ऑल द वे उनके पिता।
1: नहीं, वो वहीं पर थी ना, सॉरी, लंदन में ही थी उनके डेड की नर्स थी।
2: ओके।
1: तो जब उनको एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो शिफ्ट खत्म करने के बाद वो जाकर सारा के डेड के बेड के पास बैठ गई। बेड के पास बैठ गई एंड चार घंटों तक वो फोन पकड़कर उनके कानों

0: उसे उन्होंने लगाए रखा
1: ताकि वो सारा से बात कर सके,
0: ताकि सारा से वो बातें कर सके।
1: ओह वाओ, दैट इज
0: सारा, सॉरी,
1: लाइक इट्स समथिंग सो सेल्फलेस ना, लाइक कि आप खुद के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं, एंड यू थिंक अबाउट व्हाट द अदर पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू, एंड यू डू एवरीथिंग पॉसिबल इन योर हैंड्स कि आप उनको अच्छा फील कराएं।
0: सारा ने ना सिर्फ बातें की, बट शी सेंग द लुलाबाई हर डैड यूज्ड टू सिंग फॉर हर, एंड द नर्स स्टेड अंटिल द वेरी एंड। और धीरे से सारा को उन्होंने बताया व्हेन हर डैड पीसफुली पास्ड अवे।
1: दैट इज वेरी सैड कि जब आपका कोई अपना अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो एंड फिजिकली आप उनके पास मौजूद ना हो, एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल इन दैट सिचुएशन, दैट्स वाई ये हुआ। But on the other hand, the nurse जिन्होंने इतनी efforts ली for some unknown people जिनसे उनका कोई relationship भी नहीं है, it actually shows how beautiful people around us can be at times, ना?
0: Definitely, ये और यही कहानियाँ हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोशनी जो है ये ला सके। 19:30 हो रहे हैं, 6:00, थोड़ी ही देर में ग्लोबल हेडलाइंस।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, dekho maa gaye.
2: Ladies and gentlemen,
4: unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi.

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Popeyes is turning two, but you get the presents. Their limited time birthday box is packed with two drumsticks, six nuggets, and regular Cajun fries for just $11.90. Celebrate 2 years of world famous Louisiana fried chicken at Popeyes.
2: Love that chicken from Popeyes.
3: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleepy head beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2,499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
8: मिसेस सिंह
9: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
11: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है वी आर ऑकलैंड्स वन स्टॉप फ्यूनरल सर्विस प्रोवाइडर वेयर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शंस एंड प्राइसेस आर ऑफर्ड एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रेमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस बीरी कॉल 24/7 ऑन 09278-8600
0: The beat of Bollywood.
12: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global headlines.
14: सुबह के मुख्य समाचारों में, चाइनीज झंडे वाला सुपर टैंकर युआन हुआहू सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके गल्फ ऑफ ओमान पहुंच गया है जो अब तक लेकर जोशान की तरफ बढ़ रहे हैं ये क्रॉसिंग तब हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के दौरे पर हैं जहां वो ईरान पर दबाव बनाने और इस महत्वपूर्ण रास्ते को दोबारा खुलवाने की बात करेंगे वो की वजह से रास्ते पर ट्रैफिक लगभग रुक सा गया है लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई चाइना लिंक्ड वेसल्स ने ईरान के चेक पॉइंट्स के करीब से गुजर कर ये सफर पूरा किया है भारत के पुणे में एक हॉस्पिटल के बाहर 7 आवर टाइमर वाला लाइफ बम मिलने से हड़कंप मच गया जिसे बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने तुरंत सुरक्षित जगह शिफ्ट किया पुलिस और डॉग स्क्वाड ने पूरा एरिया को सील किया और शुरुआती जांच में डिवाइस के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल और चलता हुआ टाइमर होने की पुष्टि हुई है क्राइम ब्रांच अब इस बात की छानबीन कर रही है कि यह बम वहां किसने रखा था हालांकि अभी तक किसी के जख्मी होने या किसी जख्मी होने की खबर नहीं आई है और हालात कंट्रोल में हैं। फिजी में कल सुबह मकोई नसीरू के एक बस स्टॉप के पास 11 लाइव राउंड्स वाला पिस्टल मैगजीन मिला है जिसे एक आम नागरिक ने देखकर तुरंत आरएफएमएफ को इन्फॉर्म किया आर्मी कमांडर मेजर जनरल रोचोने कलोनोई वाई ने साफ किया है कि ये मैगजीन और एमिनेशन आरएफएमएफ के ऑफिशियल स्टॉक का हिस्सा नहीं है और अब इन्हें सुरक्षित कस्टडी में लिया गया है फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और आर्मी मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये एमिनेशन कहां से आया था और लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी संदिग्ध चीज को हाथ ना लगाएं आईपीएल का एक मैच आज सुबह कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच अभी खेला जा रहा है इस मैच में पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैटिंग की और 4 खिलाड़ी खोकर 192 रन बनाए जवाब में अभी तक आरसीबी 14.5 ओवर्स में 2 खिलाड़ी खोकर 140 रन बनाने में कामयाब हुआ है और अगले 31 बॉल्स में इस मैच को जीतने के लिए आरसीबी को 53 रन बनाने होंगे ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
15: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम।
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 28 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, और मौनी रॉय और सूरज नंबियार, इनके बारे में आपने सुना है?
1: हाँ, मैंने कुछ चीजें तो सुनी है दैट दे आर एट द वेज ऑफ यू नो सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर लीगली, और काफी बातें जो है ये सामने आ रही है, कुछ र्यूमर्स भी हो सकते हैं, कुछ सच्चाई भी है, बट आई नो कि मौनी हैज requested for privacy in such a time.
0: Apparently, जब मौनी रॉय ने क्या किया कि सोशल मीडिया से उन सूरज के साथ अपने फोटोज जो है ये हटा दिए, और सूरज ने अपना जो इंस्टा अकाउंट है ये डिलीट कर दिया, तो बातें चलने लगी कि दोनों में बन नहीं रही हैं और ये अलग हो रहे हैं, डिवोर्स जो है ये इनका होने जा रहा है, तलाक होने जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने कुछ प्राइवेसी की मांग की थी, और उसके बाद एक जर्नलिस्ट जो है विकी ललवानी, उन्होंने रिवील किया है कि कपल जो है मौनी रॉय और सूरज नंबियार, ये 6 महीने पहले अलग हो गए थे, दो दे हैवंट फाइल्ड फॉर डिवोर्स येट। उन्होंने कहा कि मौनी रॉय लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज विद दुबई बेस्ड बिजनेसमैन सूरज नंबियार इज ओवर, और दोनों अलग अलग रास्ते जा रहे हैं और एक साथ आने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि द कपल हैव नॉट बीन स्टेइंग टुगेदर एट ऑल फॉर द पास्ट 6 मंथ्स। और ये भी उन्होंने सुना है कि मौनी जो है अभी अपने घर जो है ये चेंज कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन दोनों ने अभी तक डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है।
1: ओके, लेट्स सी हाउ इट गोज, और जो भी अपडेट होगा इसमें अगर कुछ पब्लिक होता है तो डेफिनेटली शेयर करेंगे, बट आई थिंक सच इंसिडेंट्स, दो दे आर सेलिब्रिटीज और दे आर इन द पब्लिक आई, लेकिन ऐसी चीजों में डेफिनेटली उनको वो प्राइवेसी देनी चाहिए दैट दे ट्रूली डिजर्व। मेरे पास बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एंड दिस इज इन रिगार्ड्स विद ऑटोग्राफ्स। आपको कभी भी लाइफ में किसी भी सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ मिला है?
0: नहीं, मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं।
1: आप कभी किसी से मिले हैं, किसी सेलिब्रिटी से?
0: हाँ, मिले हैं।
1: पर ऑटोग्राफ नहीं लिया?
0: ना।
1: लाइकवाइज, ऐसे दिमाग में आया भी नहीं ना, आई थिंक आजकल पर ऑटोग्राफ से बढ़कर सेल्फीज जो है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई ना, सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फीज लेना रादर देन आस्किंग फॉर ऑटोग्राफ्स। आई थिंक द टाइम जब यू नो स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे तो उस टाइम पे ऑटोग्राफ्स जो है ये ज्यादा मैटर करते थे, सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स पर, या आपकी कोई पर्सनल डायरी होती है उसमें आप जल्दी से ऑटोग्राफ ले लेते, या आपका कोई पर्सनल आइटम होता है। पर आजकल सेलिब्रिटीज के साथ मौका मिले तो लोग सेल्फी ही लेना पसंद करते हैं। लेकिन अभी ये एक बात सामने आई है कि मैनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यूज टू डिफरेंट सिग्नेचर्स। एक सिग्नेचर उनका होता है जो एज अ ऑटोग्राफ वो अपने फैंस को देते हैं इन पब्लिक,
0: एक और है जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं।
1: एग्जैक्टली, एंड देन द अदर वन इज द ऑफिशियल सिग्नेचर जो वो बैंक डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ऑटोग्राफ्स फैंस नॉर्मली कलेक्ट करते हैं वो ज्यादा जल्दी लिखा जाता है या स्टाइलिश या ड्रामेटिक वे में लिखा जाता है या इजी टू रिकॉग्नाइज, कि वो सिर्फ अपना नाम जो है ये बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख देते हैं, एंड दे आर मेड फॉर पब्लिक इवेंट्स एंड फैंस इंटरेक्शन। सेलिब्रिटीज अक्सर जो साइन करते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यू नो ऑटोग्राफ्स वो जल्दी जल्दी में करते हैं, क्योंकि किसी न किसी इवेंट के दौरान अगर उनसे ये मांग की जाती है ऑटोग्राफ की तो वो करते हैं ये, एंड दे ट्राई एंड कीप इट नाइस, स्टाइलिश एंड सिंपल एट द सेम टाइम। तो वहीं पर कहा गया कि जो रियल ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं उन्हें बहुत प्राइवेट रखा जाता है फॉर सेफ्टी रीजंस, ताकि उनको कॉपी ना किया जाए और उनका गलत इस्तेमाल ना हो, एंड दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बाय द वे। सो इससे पहले मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऑटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स जो है ऑफिशियल सिग्नेचर्स अलग होते होंगे, बट इट रियली मेड मी थिंक, या देयर इज अ रीजन फॉर इट एंड इट्स अ वेरी वैलिड रीजन कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Accurate traffic.
2: Morning fresh cuts through grease.
3: A fine one all day, just patchy cloud, a high of 18 degrees. Coming in on the northwestern motorway, bit of traffic west of Massey, slowing around Massey and slow joining that Tiata to south. 20 minutes Massey to the city, not bad. Southern 24 in from Monaco, we're slow Drury to Manurewa, then pretty good. Northern 22 in from Constellation, slow on and off Greville to the bridge. Southwestern fine, but a little traffic on George Bolt to the airport.
2: For sparkling clean dishes, use Morning Fresh Ultra Concentrate with superior grease cutting power.
4: Get your sleep essentials sorted at Beds R Us with great deals on selected sleeping aid beds. Save 3,100 on the queen size chiropractic HD limited edition. Now 2499. Upgrade your sleep today at Beds R Us Manukau or Pukekohe, where dreams begin.
1: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: अभी 21 मिनट रह गए हैं इस 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और हमने कहा कि 14th ऑफ मे ऐतिहासिक है, खासतौर पर फिजी इंडियंस के लिए. देखिए ये जो तारीख है, इस तारीख ने फिजी इंडियंस जो हैं उनकी तकदीर दो दो बार बदली.
3: कैसे?
2: एक तो आज ही के दिन गिरबिट प्रथा के तहत लोग जो है भारत से फिजी पहुंचे थे पहली बार, और दूसरी बार क्या हुआ था कि जो पहला सत्ता पलटाव है सन 1987 में, 1987 में आज ही के दिन हुआ था.
3: पहला
2: कू, द फर्स्ट कू जो है ये हुआ था, जिसने लोगों की जिंदगी जो है खासतौर पर जो फिजी इंडियंस हैं उनकी जिंदगी एकदम उथल पुथल कर दी थी.
3: इमेजिन वन सिंगल डेट एंड टू टोटली डिफरेंट यू नो चीजें जो ये हुई, बट बोथ ऑफ इट हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड अ लॉट ऑफ पेन इन इट.
2: एग्जैक्टली, बट उतना डिटेल में तो नहीं, लेकिन वेरी ब्रीफली हम आपको बताएं कि ये जो गिरमिट प्रथा है फिजी में किसने इंट्रोड्यूस करने का आइडिया दिया था, आपको पता है?
3: नहीं, नो आइडिया एट ऑल.
2: उनका नाम है सर आर्थर गॉर्डन जो है ये गवर्नर थे, और फिजी आने से पहले वो ट्रिनिडाड के गवर्नर थे और मॉरिशस के, जहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह से इंडेंचर सिस्टम जो है वहाँ पर सक्सेसफुली काम कर गया था, और वो फिजियन वे ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और साथ में ब्लैक बर्डिंग जो है जहाँ पर लोगों को किडनैप करके ले जाया जाता था काम करने के लीए, वो भी नहीं करना चाहते थे. ही वांटेड अ लीगल सिस्टम जो काम कर रहा था ऑलरेडी, एंड ही थॉट कि इंडेंचर सिस्टम से बढ़िया और बेहतर क्या हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने इंडेंचर सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया इन फिजी, जहाँ पर भारत से लोगों को लाया गया. तो आज हर घंटे पर आपके लिए कुछ गाने भी हम लेकर आएंगे गिरमिट से रिलेटेड,
3: जहाँ पर कुछ ना कुछ आपको, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो कहानी है, किस्से हैं, जो स्ट्रगल्स की बात हम कर रहे हैं बेसिकली, वो आपको सुनने को और समझने को मिलेंगी.
2: और ऐसे में एक सवाल है, आप हमें ये बताइए कि आज ही के दिन, तो आपको पता है कि हमने बताया कि पहली बार इंडियंस जो है भारत से फिजी पहुंचे थे गिरमिट प्रथा के तहत. You have to tell us कि वो साल कौन सा था जब पहली बार इंडियंस फिजी गए थे on 14th of May.
3: Oh, 14th of May तो याद है, लेकिन क्या आपको वो साल याद है? Which year did the first a lot of people जो है through indenture system ये फिजी पहुंचे थे?
2: तो आप सोचें और पता करें और अपना जवाब 5599 पर हमारे पास भेजें. इन द मीन टाइम गिरमिट पर ये गाना आप सुने, एंड दिस इज ए ट्रिब्यूट टू ऑल दोज पीपल हु वेंट थ्रू सो मच.

0: Throwback.
1: Throwback ka waqt ab ho chuka hai on the breakfast show with Vijay and Pooja. And iske baad news and sports update hum aapke liye lekar aayenge. And surprisingly, sawal humne pucha, teen hi logon ne attempt kiya. To abhi hum thoda sa time aur aapko denge.
2: आपको बस बताना है कि हमने आज मतलब हम आज आपके साथ जो यू नो खेल लेकर आए हैं या फिर नॉट अ खेल सॉरी अपोलॉजीज फॉर दैट हमने आपसे पूछा है कि आज ही के दिन 14th ऑफ मई को गिरमिट प्रथा के तहत जो पहला लॉट ऑफ पीपल है इनको दरअसल फीजी ले जाया गया था डेट 14th मई था साल कौन सा था ये आपको बताना है
1: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं 7 बजे न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट के बाद इसका सही जवाब हम आपको देंगे और अगले घंटे भी गिरमिट के बारे में कुछ खास बातें इस प्रोग्राम में होंगी

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Around 8.5 degrees temperature आप फील कर रहे हैं अभी ऑकलैंड में. आज का हाई 17, ओवरनाइट कम से कम 7 degrees. A fine day. Sunset आज का 5:25 PM पर होगा.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune.

0: .nz.
1: 3 minute ho rahe hain, 7 bajkar. Welcome to Morning Madness on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM aur Rover par aap hamara saath de rahe hain. Agar kuch der se jude hain, a very good morning aapko hum kehna chahenge. Aapke good morning ke kuch gine chune messages aaj subah subah jo hamare paas aaye the. Thank you so much. Sabse pehle to Ram Ram, Jai Sai Ram, Happy Thursday everyone, have a good day. Mr. Mata Mata ki ur se ye message aaya tha.
2: और मैंने ने भी सुबह सुबह याद किया, गुड मॉर्निंग विजयन पूजा, हैव अ गुड डे, इन्होंने कहा. थैंक यू सो मच मैंडी आपके भी मैसेज के लिए.
1: श्री राम विजय और पूजा जी, परम महाराज जी की ओर से ये सुबह आपको भी मुबारक हो.
2: और साथ में हमारे पास बॉबी मान जी का भी मैसेज है, सो थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए. और इन्होंने कहा है, जय साई राम, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैप्पी थर्सडे, साईज ब्लेसिंग्स टू ऑल. थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
1: विनीता, थैंक यू सो मच वक्त निकाल कर हमें याद करने के लिए, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग.
2: And of course, we've got another message. Good morning, Bhai Vijay and Pooja Ji. Salu, listening out from Gulf Baba Fungo Faroa. Wonderful day ahead. Keep humming. Thank you so much, Salu. Aapko bhi aaj ke is din ki bahut saari shubhkamnaein.
1: और आज गिरमिट दिवस के मौके पर जो सवाल हमने पूछा है, तो सबसे पहले आज देखिए सेल्विन ने अपना आंसर जो है ये हमारे पास भेजा था.
2: और उनके अलावा या उनके बाद अगर देखा जाए तो एक और एक मैसेज आया, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, इन्होंने अपना जवाब दिया और कहा विजय वुड रिमेम्बर दैट वी हैड अ बुक इन प्राइमरी स्कूल विच हैड दीज स्टोरीज, हैव अ लवली डे. तो इन्होंने मैसेज तो भेजा है पर नाम नहीं लिखा, लेकिन शुक्रिया आपके मैसेज के लिए.
1: रोनील राज, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए.
2: जसपाल जी का मैसेज आया है, साथ में रोन सामी, आपका भी मैसेज हमें मिल चुका है. थैंक यू
1: जशिका, थैंक यू सो मच अपना जवाब भेजने के लिए.
2: और एक और एक मैसेज आया, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गिरमिट गाना, माय आईज आर फुल ऑफ टीयर्स, एवरी वर्ड टच्ड माय हार्ट, गॉड ब्लेस द ब्यूटीफुल पीपल हु केम इन फिजी इन 1879, हैव अ लवली डे. क्रिस्टीन की ओर से मैसेज आया है.
1: और सलेश अपाहट वेलिंगटन से, साथ में नितिका, इन्होंने भी अपने आंसर्स जो है ये भेजे थे. हमने कहा था कि 14th May इज द डे जब पहला जहाज जो है फिजी पहुंचा था जाकर, लेकिन वो साल कौन सा था, इट वॉज 1879.
2: Which most of you got it correct. Thank you so much for your messages and आपके साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. Morning Madness है ये, जिसकी शुरुआत हम आपके साथ करने जा रहे हैं और साथ में आपको याद भी दिला रहे हैं कि थोड़ी देर बाद रहेगा आज आपके राशि वाइब्स, यानी आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स. अगर आप हॉरोस्कोप्स फॉलो करते हैं तो वे शॉर्टली ये लेकर आएंगे आपके लिए. प्लस आज एक बार फिर सेलिब्रिटी अलार्म में वही आवाज जो कल हमने आपको सुनाई थी, क्योंकि कल वाली आवाज कोई पहचान नहीं पाया, तो देखते हैं कि आप ये आज पहचान पाते हैं या नहीं.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
0: Rashi Vibes.
2: आज सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपका इनकम बढ़ेगा, ऑफिस में इन्फ्लुएंस बढ़ने वाला है, बिजनेस से आपको फायदा होगा, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। ख्याल रखें कि किसी भी चीज को लेकर जल्दबाजी ना करें और आज ऑफिस में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं।
3: वृषभ टॉरस, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि रिलीजियस कामों में, खास तौर पर पूजा पाठ में आपका बहुत मन लगेगा और जो लीगल मैटर्स है, प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। बस जल्दबाजी कोई भी काम में ना करे क्योंकि यही आपके लिए एक नुकसान का कारण बन सकता है।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज घर परिवार के किसी मेंबर के हेल्थ को लेकर आप थोड़े कंसर्न हो सकते हैं। अपने बोलचाल पर कंट्रोल रखें, चोट लग सकती है या दुर्घटना से बड़ी हानि हो सकती है। लेन देन करते समय कोई रश ना करें।
3: कर्क यानी कैंसर, आज आपके लिए बताया गया है कि आज का दिन यहाँ पर आज का दिन जो है आपके लिए ये रिस्क से थोड़ा भरा रहेगा। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको रिस्क नहीं लेना है।

0: यू नो बना रहेगा, आपकी याद में रहेगा। समय का सही फायदा उठाए, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। सो मेक द राइट डिसीजंस, डू द राइट इन्वेस्टमेंट्स, ताकि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे और भी स्ट्रॉन्ग आप बना सके। दूसरों के झगड़े में ना पड़े, ये सलाह भी आज आपको दी जा रही है।
1: तुला यानी लिब्रा, आज मेहनत अधिक फायदा कम होगा, किसी दूसरे के बहकावे में ना आए। बिजनेस से अच्छा फायदा आपको हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो आपको थोड़ा परेशान करें, और किसी के साथ आज कहा सुनी भी हो सकती है।
0: एंड उसके बाद वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, जीवन साथी के सहयोग से आज आपकी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हो पाएंगे, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा आपको, और बिजनेस अगर आपका है तो उस मामले में भी यू विल गेट सम रियल गुड रिजल्ट्स, ऐसा आपके लिए बताया गया है।
1: धनु यानी सेजिटेरियस, बिजनेस से फायदा होगा आज, बिल्कुल किसी तरह का रिस्क ना ले, एक्सपेक्ट सम एक्साइटिंग न्यूज ऑल्सो, लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आज कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी आपके रास्ते आ सकते हैं।
0: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे तो बेरोजगारी दूर होगी, इच्छा अनुसार नौकरी आपको आज मिल सकती है। कीप वॉकिंग टुवर्ड्स योर गोल्स, ऐसा भी आपके लिए बताया गया है, और साथ में घर बाहर दोनों ही ओर यू विल गेट टू एक्सपीरियंस सम रियल मोमेंट्स विद हैप्पीनेस, आज खुशहाली ही खुशहाली दोनों ही ओर आपको मिलेगी।
1: उसके बाद कुंभ यानी एक्वेरियस, बिजनेस से फायदा होगा, कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे, अगर इन पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बजट आपका बिगड़ सकता है। लेन देन करते समय सावधान रहें और अनजाने लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें।
0: आखिर में मीन यानी पाइसेस, आपके लिए बताया गया है कि आप प्रोग्रेस के रास्ते चल पड़े हैं, तो ऐसे ही मेहनत करते रहें एंड इच्छानुसार रिजल्ट्स आप जरूर प्राप्त करेंगे। बिजनेस अगर आपका है तो अच्छा चलेगा, और आज ये भी कहा गया है कि थोड़ा केयरफुल हो जाए, क्या चीज आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, इवेल्युएट करें अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। सो ये थी आज के आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ रिमाइंडिंग यू ऑल कि आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए लेकर आएंगे। कल का जो सेलिब्रिटी अलार्म था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नो वन गॉट द करेक्ट आंसर, राइट?
1: यस, तो आज उसी सेलिब्रिटी की आवाज हम दोबारा आपके लिए लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में।
0: राइट, गेट रेडी फॉर दैट एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग पता कर पाते हैं। कल पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी आवाज सही तरीके से पहचान नहीं पाया, लेकिन आज क्या पहचान पाते हैं या नहीं, विल फाइंड आउट।
2: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
5: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favorite trail. Fueled with the protein, fiber and vitamins you need to get up and go.
6: It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
7: Auckland, this weekend, $100 spend karo in-store at Mitidon Mega Westgate and Henderson or pao $20 Mitidon gift card. Sirf Saturday and Sunday, T's and C's apply. More value, more projects, more savings. Jaldi kijiye, Mitidon Mega Westgate and Henderson.
8: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena, put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.
9: The Specsavers Specstraver Gains are store-wide sale is on now.
10: Phew, bit of a tongue twister, hey?
9: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200, only for a limited time. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
11: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru.

0: नंबर यार।
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune.

0: अलार्म।
1: तो जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कल कोई जो है ये सही सही पहचान नहीं पाया था कि कल के सेलिब्रिटी अलार्म में आवाज किसकी थी, तो वही आवाज आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं।
2: चलिए शुरू हो जाइए। आई गॉट इट राइट, एंड मैंने ये भी कहा था कि किस शो से आपने ये आवाज ली है वो भी मैं बता सकती हूँ, बट लेट्स सी क्या आज कोई इनकी आवाज को पहचान पाता है या नहीं। पहले सुनते हैं।
3: भैया आप बताइए आप यहाँ कैसे?
4: भाभी के हाथ का खाना खा के पक गए थे, इसके लिए उसको जहर दे दिए।
1: तो इस फीमेल एक्ट्रेस की आवाज जो है ये आपको पहचाननी है और बताना है कि ये आवाज किन की है। बी एफ अपना आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेजें।
2: एक्ट्रेस है ये, बात तो आपको पता चल चुकी है, लेकिन कौन है ये? हाल फिलहाल की है एक्ट्रेस है ये, मतलब शी इज नॉट फ्रॉम 90s और एनीथिंग। और दूसरी बात ये भी है कि ये काफी पॉपुलर हुई है अपने लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस के बीच में। She has done a lot of projects and this one project जिसमें से या this one show जिसमें से ये particular bit लिया गया है ये बहुत popular हुआ था और इसमें काम करने के बाद लोगों ने इनको और भी ज़्यादा appreciate करना शुरू किया था। But let's see if you have still figured it out। कल तो कोई नहीं बता पाया, क्या आज आप इनकी आवाज़ को पहचान पाएंगे या नहीं।
1: एक बार फिर थोड़ी सी आवाज़ उनकी हम आपको सुना रहे हैं।
3: आप बताइए आप यहाँ कैसे?
4: भाभी के हाथ का खाना खा के पक गए थे, इसके लिए उसको जहर दे दिए।
3: Bit extreme, don't you think?
1: तो अब अपने जवाब आप हमारे पास भेजें, BF, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम।
0: Bollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: RNZ.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में IAA ने हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटर्स के लिए सख्त रूल्स की मांग की है, क्योंकि मौजूदा कानून इन नए और तेज चलने वाले व्हीकल्स के लिए काफी नहीं है। पॉलिसी एडवाइजर टेरी कॉलिंस के मुताबिक इंटरनेट पर लीगल लिमिट से 3 गुना ज्यादा पावरफुल मोटरबाइक्स या स्कूटर्स और बाइक्स बिक रहे हैं और कुछ ही स्कूटर्स तो 120 किलोमीटर पर हवा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। एक्सीडेंट्स रोकने के लिए IAA ने सुझाव दिया है कि हाई पावर्ड स्कूटर्स को अलग कैटेगरी में डाला जाए ताकि पुलिस और काउंसिल्स इन पर सही कंट्रोल कर सकें। ऑकलैंड की एक बस में बहरहमी से एक यात्री की हत्या करने वाले कैल लियोना को कम से कम 12 सालों की जेल की सजा सुनाई गई है। लियोना ने अक्टूबर 2024 में ओनिहांगम की एक बस में एक यात्री पर चाकू से कई बार हमला किया था, जिसने अब कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया है। IPL के एक मैच में आज सुबह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से हुई। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच फिलहाल क्रिस्टल पैलेस और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अभी सिटी और क्रिस्टल पैलेस दोनों निल ओल से बराबर हैं।
3: Breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: 80s ke retro gaane.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Accurate traffic.
3: Designer rugs. Annual stock sale.
4: A lovely start to a fine day. A high of 18. Coming into the city, Northern Motorway, 34 minutes from Constellation Drive. Slowing at Silverdale. Heavy most of the way in from Greville. Northwestern, 41 minutes now from Massey. Slow patches most of the way from Upper Harbour. Heavy point chief to Greylin. Southern, 38 in from Monaco. Slow Papakura through to Rimuera. A few faster spots. Southwestern, a bit slow both ways.
3: Save up to 80%. Starts Friday. 3 days only. Designer rugs, Greylin.
5: Absolutely everything is on sale at Freedom. My Freedom members unlock early access and get up to 60% off everything. Not a member? Join today. Sale on now. Only at Freedom.
6: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
7: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
8: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
9: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
8: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
9: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 098-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
10: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
12: Birthday greetings.
14: इसका बर्थडे भाई?
15: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ.
16: Happy birthday to you.
17: दिन आज का आपको मुबारक हो. अगर आज अपने सालगिरह या शादी की सालगिरह आप मना रहे हैं, कृष्णा काकरिया जी पापा टोय टोय में अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको हम देना चाहेंगे. और आपके साथ आज एक और मैसेज आए हैं अनिश आनंद जी की ओर से. वेरी हैप्पी बर्थडे टू माई ब्यूटिफुल वाइफ रितिका. May God bless you with lots of good health, wealth and wisdom. Many happy returns of the day. आपके बेटे हैं रितांश और आयुष आनंद, नेफ्यू रजनील सिंह और जितने भी परिवार वाले हैं यहाँ न्यूजीलैंड में और प्रदेश में, सभी आज आपको याद कर रहे हैं. रितिका जी, सालगिरह आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. डेफिनेटली आज यू विल बी स्पॉइल्ड बाय अनिश एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड अ डे ऑफ सेलिब्रेशन. तो ये दिन आपको भी अनेकों बार मुबारक हो.

0: Go.nz.
1: अभी 25 मिनट रह गए हैं 8 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज सेलिब्रिटी अलार्म में कुछ लोगों ने ही कोशिश की अपना जवाब हमें देने की. और उससे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिशा, 11 साल की आप हो रही हैं. वी लव यू अनवी, ये मैसेज आए हैं. सो दिशा, आपको सालगिरह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. सेलिब्रिटी अलार्म में आज शिमल हैं, अनमोल साथ में 4234, राहुल पांडे आपने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं. और एक ही सही आंसर आया है जिसमें जिसे भेजा हमारे पास शिमल आपने. अनन्या पांडे की आवाज थी फ्रॉम कॉल मी बे, ना तो आलिया भट्ट, ना नुसरत भरूचा, ना ही रसिका दुग्गल की आवाज थी. और 25 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में. आज गिरमिट दिवस, फिजी इंडियंस का अस्तित्व जो है उसकी कहानी, किस तरह से एवरीथिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, कहाँ कैसे इनको या हम हमारे पूर्वजों को भारत से फिजी लाया गया था. और अरकाठी जो है इनको ख़ास तौर पर इंडिया में हायर किया गया था. अरकाठी वो लोग थे जो बहला फुसला कर लोगों को लेकर जाते थे कि जाओ आप काम करो, वहाँ पर खूब पैसे कमाओगे. थोड़ी ही दूर है इंडिया से पीजी, वहाँ पर आपको काफ़ी पैसे मिलेंगे और पैसे कमाकर आप वापस अपने घर भेज सकते हो और कुछ ही दिनों में वापस भी आ सकते हो. और जो लोग मान जाते थे फिर उनसे एग्रीमेंट साइन किया जाता था जो बाद में वोट बना गिरमिट का. 60 to 90 days एली ईयर्स में लगते थे सेलिंग शिप में, और लेटर 30 days एक महीना लगता था स्टीम शिप से भारत से फिजी पहुंचने में. और इस दौरान सफ़र जो है ये तय होता था काला पानी का. और काला पानी जो है यहाँ का सफ़र बहुत ही दर्दनाक होता था जो लोग आते थे भारत से फिजी उनके लिए. तो उस पर पिछले 6 महीनों में मैंने 4 गाने जो है ये लिखे हैं गिरमिट के बारे में. और उन एक गाना जो है पिछले घंटे हमने आपको सुनाया, दूसरा गाना जो है अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं. और उसके साथ आप हमें ये बताइए कि जब लोग फिजी पहुंच जाते थे तो उनको बैरक्स जैसी जगह पर रखा जाता था, उसको क्या कहते थे. अगर आपको पता है तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर हमारे पास आप भेजें. समय बहुत कम है इसीलिए बहुत ब्रीफली हम आपको बता रहे हैं. तो जब गिरमिट प्रथा के तहत लोग फिजी पहुंचते थे तो उनको बैरक्स जैसी जगहों पर रखा जाता था, घर दिए जाते थे, उसको क्या कहा जाता था ये आप हमें बताएं. BF अपना आंसर और अपना नाम 5599 पर हमारे पास भेजें. फिलहाल काला पानी और जो गिरमिट प्रथा के लोग फिजी गए थे उनके सफ़र पर ये गाना.

काला पानी का जो सफर और उस पर ये गाना आपके लिए हमने पेश किया आज गिरमिट दिवस के मौके पर। सवाल का जवाब भी आप हमें भेज सकते हैं, बताइए कि जहां पर गिरमिट प्रथा के तहत लोगों को ले जाकर फीजी में रखा जाता था उस जगह को क्या कहते थे, जहां उनको बेसिकली घर दिया जाता था उसको क्या कहते थे। तो बी एफ अपना आंसर और अपना नाम 5599 पर आप हमें भेजें। एल्विना है, मोहम्मद शरीफ है, इंदिवर शुक्ला है, आप सभी ने अपने जवाब भेजे। किसी ने जानना चाहे कि ये गाने आप सुन कहाँ सकते हैं, तो ऐसा हम करेंगे आपके लिए कि आपको हम एक अपॉर्चुनिटी जो है, या अपॉर्चुनिटी नहीं, बेसिकली ये गाने जो है आसानी से आप एक्सेस कर सकें, तो उसकी खातिर एक कीवर्ड जो है ये हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स। और आपको क्या करना होगा, 4 गाने जो हमने लिखे हैं, एक तो गिरमिट की धरती, दूसरा जो अभी आपने सुना काला पानी, अगला गाना जो है अगले घंटे आपको सुनाएंगे, और एक शख्स जो है जो गिरमिट के तहत आए थे फीजी, उनकी कहानी जो है वो भी एक गाने में आपको मिलेगी जो आज बाद में हम आपको सुनाएंगे। तो अगर ये आपको चाहिए, आप ये गाने सुनना चाहते हैं एज ए ट्रिब्यूट या जैसे जो भी आप कहना चाहें, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जी लेटर जी जो है ये लिखकर 5599 पर आपको भेजना होगा, और लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा और वहां पर जाकर ये गाने आप सुन सकते हैं। रिमेंबर लेटर जी, ये 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं।

0: Roja.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Irvine, sirf Rova par.
1: Accurate traffic.
2: Switch to AMI car insurance.
3: A high of 18, staying fine and lovely all day. Into the city, northwestern a bit slow, 48 minutes messy to the CBD. Slow from Upper Harbour, Heavy Point Chev to Grey Lynn. Southern 44 in from Manukau, slow Papakura through to Rimuera. Just a slow journey, not too heavy. Southwestern, slow northbound through Whitty, southbound at Hillsborough. Northern 38 from Constellation, heavy patches most of the way from Greville.
2: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
4: Make your budget go further this autumn at Mitre 10. Stride rubber gym tiles, now only $35 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May, T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
5: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
9: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड बिना एडेड केमिकल्स बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट बिल्कुल घर जैसा जिंजर हो गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर
0: जबरदस्त हिट्स
1: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
1: हम
0: द ब्रेकफास्ट शो

0: यू नो, आज एक बड़ी कमाल की स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, एंड दिस इज अबाउट फ्रेंडशिप, कि जब आप अपने दोस्त से कोई भी वादा करते हैं तो वो कितना जरूरी हो जाता है. और कुछ कुछ सिचुएशन में लोग जो हैं, या दोस्ती में लोग जो हैं, ये अपना वादा निभाते हैं नो मैटर व्हाट, या फिर नो मैटर कितने भी साल जो हैं ये बीत जाए. तो ये स्टोरी जो है एक पेयर ऑफ फ्रेंड की है. पेयर ऑफ फ्रेंड मतलब दो दोस्तों की है. और इनकी ये जो स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं ये, जहाँ पर 1992 में इन दोनों ने एक दूसरे से एक हैंडशेक किया और एक वादा किया कि अगर ये कभी भी कोई भी पावरबॉल जीतते हैं तो वो उसका जो टोटल अमाउंट है उसका आधा आधा हिस्सा जो है ये करेंगे. 28 ईयर्स लेटर थॉमस कुक जो है ही वुड ऑनर्ड जब उन्होंने $22 million का जो पावरबॉल है ये जीता. उन्होंने इमीडिएटली अपने दोस्त जोसेफ फीनी को कॉल किया और जोकिंगली इनसे कहा कि he has won this, बट जोसेफ को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मजाक नहीं, सच में 22 मिलियन का पावरबॉल जो है ये जीता है. दे क्लेम द प्राइज टूगेदर एंड दे टुक अ लम सम ऑफ अराउंड 16.7 million, क्योंकि टैक्स वगैरह काट कर उनको उतने पैसे जो ये मिले. एंड दे एंडेड अप विद अबाउट 5.7 million ईच आफ्टर टैक्सेस. जो दोनों हैं ये ऑफकोर्स बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन ये जो पैसे उन्होंने जीते मेनली उन्होंने इसका इस्तेमाल किया टू स्पेंड मोर टाइम एंड एंजॉय मोर टाइम विद फैमिली एंड टेक अ फ्यू लॉन्ग प्लान ट्रिप्स, जो शायद उन्होंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में उतना, जितना वो पैसे आने के बाद कर पाते. सो इमेजिन 28 ईयर्स पहले किया गया वादा भी इन्होंने पूरा किया जो उन्होंने अपने दोस्त से किया था आफ्टर विनिंग $22 million का लॉटरी, जो कट पिट कर सब कुछ एंड में उनको सिर्फ 5.7 million का मिला.
1: बट द थिंग इज कि अपनी जुबान की कीमत उन्होंने रखी है, जो जुबान दिया था उस पर वो कायम रहे,
0: बने रहे.
1: दैट इज द मोस्ट थिंग.
0: That is the most important thing.
1: ऐसे और भी कई स्टोरीज हैं. वैसे 8 बजे के बाद आज का हमारा पहला कोडवर्ड भी रिफील होगा हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए.

0: accurate traffic.
1: Visit a Ryman village this week.
2: Staying fine for us all day. 18 hour high into the city. Southern motorway not too horrible. 45 minutes Manukau to the city. We're slow all the way in from Papakura, just a few heavier patches. Northwestern, 47 minutes in from Massey. Slow most of the way from Upper Harbour. Quite heavy from Point Chev. Northern, 38 Constellation to the city. Heavy on and off from Greville. Southwestern, slow northbound through Whitty.
1: Ryman villages are open to view Friday and Saturday 10 till 2. Search Ryman open days.
3: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
4: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
8: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
9: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Close to 10 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 18 ओवरनाइट कम से कम 7 degrees रहेगा मौसम साफ और सुहाना सनसेट आज का 5:25 PM पर होने को है
0: Breakfast show with Vijay and Pooja
2: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins Fortune fuels everyone big or small bring home the fortune
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: The Rush Hour on हम playing Bollywood's biggest hits आपके लिए इमली खिला रहे हैं और breakfast show में आप सभी का एक special welcome एक बार फिर जहां के भी आप हैं साथ हमारा दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया By the way, reminding you all कि आज थोड़ी देर में इसी घंटे आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं हमारा Fly Away Frenzy का कोड तो अगर आप को नहीं कोई आइडिया कि किस बार किस घंटे हम रिवील करेंगे तो ये एक बार फिर हम आपको रिमाइंड करा रहे हैं वी विल बी रिवीलिंग द फ्लाई अवे फ्रेंजी कोड इन दिस आवर तो हमारे साथ ही रहिएगा
1: फिलहाल अभी आज ट्रेंड पेट्रोल में हम बातें करने जा रहे हैं एक ट्रेंडिंग पर्सन के बारे में जिनका नाम है देवांश त्यागी देवांश त्यागी दिल्ली बेस्ड एक कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने क्या किया कि अपने एक आइडिया को वन डे बिजनेस एक्सपेरिमेंट जो है ये उन्होंने किया और टू सी हाउ प्रॉफिटेबल ये होगा उनके लिए तो वो क्या किया है कि उन्होंने वो चले गए एकदम सीनिक माउंटेन लोकेशन पर ताकि वो पता कर सकें कि एक दिन में नूडल्स बेचकर वो कितने पैसे कमा सकते हैं
3: ओह ओके
1: तो ही वेंट और स्टॉल जो है ये अपनी लगाई और वीडियो जो है इनका काफ़ी वायरल हो रहा है जहां पर अलग अलग फ्लेवर्स के नूडल्स जो है ये बेचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू नो नॉर्मली जो रेगुलर मैगी है वॉज प्राइस्ड एट $100 पर प्लेट बटर मैगी 100 रुपीज़ ऐसे और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया लोगों की इनके नूडल्स का सेल जो है और बढ़ता गया अपेरेंटली ही रेन आउट ऑफ स्टॉक
3: अच्छा
1: एट द एंड ऑफ द डे एक दिन में नूडल्स बेचकर ही अर्न्ड 24,000 रुपीज
3: वाओ दैट्स नॉट अ बैड अमाउंट ऑफ मनी
1: हाँ तो अगर आप देखो कि 100 रुपीज में भी इन्होंने अगर बेचा हो ऑन एवरेज तो
3: अच्छा फायदा हुआ यार इनका
1: या तो उसी वजह से ये फिलहाल काफी ट्रेंड कर रहे हैं इंतजार करें थोड़ी देर बाद आज व्हाट्स योर टेक में एक और चीज के बारे में एक और विषय के बारे में हम बातें करेंगे

0: Music Month. Back your backyard beats.
1: आज न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ में अपना जो आर्टिस्ट है वो इनफैक्ट एक रेडियो अनाउंसर थे बैक इन इंडिया, बट पैशन हमेशा से उनका गाना रहा है, सिंगिंग रहा है, और अब तो यही ऑकलैंड में है. रांझा राजन, आइए आज उनका ये गाना है.

lot of overcrowding. एक रूम का मतलब was meant for a married couple और उनके बच्चे या तीन सिंगल पुरुष जो है एक कमरे में रहते थे. No privacy क्योंकि दीवारें जो हैं अक्सर सीलिंग तक नहीं जाती थी. वेंटिलेशन की कमी और उस समय पर CSR जो कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी है उसने प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज किया ओवर वेलफेयर और साथ में लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा ड्रेनेज प्रॉब्लम्स शेयर्ड लेटरिन्स. सुबह 4 बजे के वक्त सरदार जो है ये आकर घंटी जो है ये बजाता था और फिर निकलना पड़ता था. अगर आप लाइन में नहीं आते थे तो आपको फाइन हो सकता था या आपको पीटा जा सकता था. एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट उस समय पर लोगों को गुजरना पड़ा जो इंडिया के अलग अलग इलाकों से आए थे. उत्तर भारत से आए थे, कुछ दक्षिण भारत से आए थे और जब जहाज़ में सफ़र करते हुए आए तो कोई उत्तर भारत का नहीं रहा, कोई उत्तर प्रदेश का नहीं रहा, कोई साउथ का नहीं रहा. सब जहाज़ी भाई जो है उस समय पर बन गए और एक नई ज़िंदगी जाकर फिजी में इन्होंने शुरू की. बहुत कठिन 5 साल का अग्रीमेंट होता था गिरमिट प्रथा के अंतर्गत और 5 साल अगर आप पूरे कर लेते थे उसके बाद 5 और साल जो है मुफ्त में काम करना पड़ता था, जिसके बाद आप कफे या पे किया जाता था सो दैट यू कुड गो बैक टू इंडिया. सिर्फ बहुत सारी स्टोरीज हैं. आपने गिरमिट के बारे में जो पूर्वज जो फिजी इंडियंस हैं उनके पूर्वज इंडिया से जो आए थे और जिन हालातों से वो गुजरे थे गिरमिट प्रथा के तहत उसके बारे में आपने जितना भी पढ़ा सुना देखा उसके बाद जो आपके मन में है वो आज आपको हम शेयर करने का मौका देंगे व्हाट्स योर टेक में. लेकिन उससे पहले आज का हमारा तीसरा गाना जो क्योंकि इन द पास्ट 6-7 मंथ्स मैंने बहुत रिसर्च किया. आई बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट गिरमिट, डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, टॉकिंग टू पीपल कि क्या होता था उस समय पर. तो पिछले 6 महीनों में 4 गाने जो है ये मैंने तैयार किए. 2 हमने आपको सुना दिए, गिरमिट की धरती और उसके बाद काला पानी, और तीसरा जो गाना है ये कुली लाइंस के बारे में है. ये गाना आप सुने, इसके बाद लाइंस हम आपके लिए खोलेंगे और आप अपनी राय जो है ये हमारे साथ शेयर

0: तो ये तीसरा गाना जो मैंने लिखा और प्रोड्यूस किया कोहली लाइंस के बारे में, और कैसे हमारे पूर्वजों की जिंदगी जो है ये फिजी में होती थी गिरमिट प्रथा के तहत। और समय बहुत कम है, सीधे लाइंस अब हम आपके लिए खोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो
1: विजय जी, नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते सर।
1: विजय जी, आपने आंख में पानी आ गया गाना सुन के। बहुत इमोशनल कर दिया सुबह सुबह आपने। लेकिन लास्ट ईयर अंतर्राष्ट्रीय गिरमिट दिवस जो था, तभी भी आपने और पूजा जी ने कुछ बातें की थी किसी किसी से, मुझे याद आ रहा है। तो हमारे ऑफिस में भी कोई फिजी से लोग हैं, तो मैं उनसे भी बात उस दिन किया था मैंने बात। लेकिन अब ये सुन के मतलब बहुत दर्द महसूस हुआ। मतलब हम सिर्फ वो सुन के हमें तकलीफ हो रही है, जो जिन लोगों ने वो सहा इतने साल, वो कैसे किया होगा ये हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो आज इस मतलब आज इस दिन पे, पहले तो विजय जी आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्या सुंदर लिखा है आपने। मतलब जो खून और पसीने से लथपथ

0: हुए बंदों का आपने क्या सही वर्णन किया, मतलब उसके लिए कुछ और वक्त वर्ड नहीं है मेरे पास सच में, तो मैं क्या बोलूँ। आप खुद तो लिखते ही, आपने हिंदी में मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन किया है कुछ मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
1: नहीं नहीं भाई, कोई
0: तो वो एक
1: ग्रेजुएशन
0: बात
1: नहीं
0: है।
1: किया।
0: कुछ तो आपने किया है मेरे ख्याल से, मैंने सुना है कुछ तो, कि आपने कुछ तो साहित्य में कुछ तो किया है आपने, आई हर्ड दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वट एवर, बट आपने बहुत सही लिखा और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा निकल के आया है। तो इस पे आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी के मेरे फिजी भाई बहन जो भी है, जो न्यूजीलैंड में रहते हैं और फिर फिजी में भी रहते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि एज ए हिंदुस्तानी और फिर बीइंग इन न्यूजीलैंड नाउ, हम जानते हैं आपके दर्द को, मतलब मैं मेरी तरफ से कह सकता हूँ, दो वी कान गो बैक, वी डोंट हैव टाइम मशीन, वी कान गो बैक, नथिंग कैन हैपन नाउ, बट एक बात हो सकती है कि हम महसूस कर सकते हैं, एंड वी शुड एक्नॉलेज दैट द पेन एंड द सोरो दैट यू गॉन थ्रू गाइस। सो मेरे लिए उसके पास वक्त नहीं, लेकिन आज आप जो भी उसमें कहा ही गए गाने में कि आज आपने प्रगति की, आप नाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, इट इज रियली गुड, जो भी मेरे से बन सके मैं जरूर फिजी कम्युनिटी और समुदाय के लिए कुछ करना चाहूंगा फ्यूचर में। ईश्वर मुझे उसके लिए अच्छी प्रेरणा दे और अच्छा सहाय करे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ विजय जी कि आपने कुछ कुछ अच्छा किया, और सच में मतलब इट्स रियली रियली इमोशनल, यू मेड मी इमोशनल इन मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। तो 0800 00 हम, 0800 00 4866 ये हमारा नंबर है। एंड यू नो, गिरमिट के बारे में आप जितना भी बोले, मैंने जितना भी पढ़ा, जब भी गाना लिखा, जब भी प्रोड्यूस किया, यू नो वी ऑल बिकम इमोशनल। और जब उनकी कहानियाँ पता लगती हैं, उसके बारे में पता चलता है, तो और ज़्यादा यू नो यू फील कि किन हालातों से वो गुज़रे थे। और उन ज़्यादा तो आता नहीं मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से ये कहानियाँ और उनकी आप बीती, उनका जो एक्सपीरियंस है, ये आप तक पहुँचाऊँ। एंड तब जाकर ये गाने जो है ये मैंने लिखने शुरू किए और प्रोड्यूस करने शुरू किए। तो अभी तक 4 गाने आपको या मैंने लिखे हैं और सुनाए आपको। और ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी लिटरेचर में या हिंदी क्या बोलते हैं उसको ग्रेजुएशन कुछ नहीं किया। पीजी में जब हम पढ़ाई करते थे तो उस समय क्लास होता था, प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई हम करते थे, तो मेरी हिंदी की जो पढ़ाई है सिर्फ क्लास 8 तक ही हुई थी, तो वहीं तक ही लिमिटेड है वो। तो आपके पास भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप में से किसी और के पास अब कुछ है बोलने के लिए आज गिरमिट दिवस के मौके पर? तो अब चाहें तो 5599 पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं।
2: Hollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ,
4: मैं लाऊं अपना ए गेम।
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दिलजीत दोसांझ को आप सुन रहे थे और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर और हर सॉरी थर्सडेस को हमारी बातें जो हैं लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से भी होती हैं। गुरु आ गए हैं लाइंस पर हमारे साथ। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग विजय भाई, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। आज मैंने सोचा अभी काफ़ी डिफिकल्ट समय से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, शायद ये एडवाइस किसी के काम आ जाए अबाउट पर्सनल लोन्स। अगर किसी को निजी ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए और जल्दी में चाहिए तो कैसे ये हो सकता है, क्या क्राइटेरियाज हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा समझा दें।
1: विजय भाई, पर्सनल लोन ये एज यू सेड कि टाइम अगर डिफिकल्ट हो और आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो ये पर्सनल लोन इज अ की, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं आर नॉट हेफ्टी एज कंपेयर टू जब हम होम लोन्स करते हैं या फिर बिजनेस लोन्स करते हैं। बट ये पर्सनल लोन्स इज फॉर योर पर्सनल नीड्स। अगर आपको इंस्टेंटली घर में कुछ रेनोवेशन करना है, आपको अर्जेंटली कहीं फ्लाई करना है, अर्जेंटली कोई मेडिकल असिस्टेंस मिल पड़ गई है, सो इन दैट इंस्टेंस मनी कैन बी ऑर्गेनाइज विद इन अ डे और टू मैक्स, और इट इज एज इट सेज इंस्टेंट काइंड ऑफ पर्सनल लोन, जिसमें आप यू कैन बोरो फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम $3,000 to up to $200,000. Now definitely $200,000 bada lagta hai, but in terms of agar wo itna paisa lend karega so definitely they need to see ki servicing has to be there as well. Servicing ka matlab hai ki aap usko loan ko service kar sakte ho, ki aapki income aapke expenses us loan ko lene ke liye afford kar sakte hain. So agar affordability wahan pe match hoti hai, which is gonna be very instance affordability jo they normally verify from the bank statements ki kitna paisa bank mein aa raha hai aur kitna paisa bank se bahar ja raha hai, then they will quickly make the assumption and say yep, paisa is there for you to withdraw and that's where the money is going to be sending out to you. So uski jo requirements hain, as I said, bank statements will be required, your IDs will be required, in some cases maybe payslips required as well. And आपका जो सिनेरियो की बेसिकली किस लिए आपको पैसा चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल रिक्वायर्ड टू गेट द मनी इनटू द बैंक अकाउंट एज ए पर्सनल लोन। इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, देयर इज नो सिक्योरिटी व्हिच इज अटैच्ड टू इट, एंड दिस मनी कैन बी टेकन फॉर ईयर, टू ईयर्स, अप टू 7 years. तो अगर आप जो लोन टर्म है कि कितने साल के लिए मैं इसको वो करता हूँ लेता हूँ, तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि अगर आप 1 साल लेना चाहते हैं, 2 साल या 7 साल, 7 साल इज द मैक्सिमम इन द पर्सनल लोन स्पेस। जितनी छोटी टर्म रखेंगे उतनी बड़ी पेमेंट होगी, बिकॉज यू हैव टू रिटर्न दैट बैक फास्ट। जितनी बड़ी रखेंगे उतनी पेमेंट छोटी, जितना लोन टर्म बड़ा रखोगे उतना उसकी जो पेमेंट है वो छोटी रहेगी। बट अगेन, अगर आप बड़ी लोन टर्म ले भी लेते हो एंड यू वॉन्ट टू पे इट ऑफ अर्लियर बिकॉज इट्स इन द पर्सनल लोन स्पेस, सो देयर इज नो काइंड ऑफ ब्रेकिंग फीस एंड स्टफ लाइक दैट। सो आज की डेट में अगर आपको लॉन्गर टर्म देते हैं, if they allow you to take the longer term, then maybe it's preferable to take longer term but return that money ASAP so that personal loan jo pay off kar sakte hain, either pay off kar sakte hain ya fir usko aap later on apne home loans mein consolidate kar sakte hain, because jab home loan lene jate hain hum, it takes lot of requirements aur uska jo process hota hai it is not straight away simple, so it takes time. Home loan mein time lagta hai, lekin agar aapko ek personal loan lena hai, you can just take it, get the things sorted jo aapko chahiye thi, and then later on because now you got time on your sleeve, usko aap consolidate bhi kar sakte hain in your home loans.
0: Okay, so abhi shayad agar koi soch raha hai ki bhai mujhe iski zarurat hai and main le sakta hu ya lena chahta hu, to kaise aapko contact kar sakte hain?
1: Vijay bhai, simple logic lagana hai, logic finance aapko search karna hai google mein, logic finance, और जब आप सर्च करते हो देन इट कम्स टू ऑल माय डिटेल्स देयर, बट लेकिन आपके पास 0800 नंबर जो फ्री नंबर है आप वो भी कॉल कर सकते हो, विच इज 0800 लॉजिक जी. जब आप टाइप करते हो ऑन योर फोन इट कम्स टू मी, विच इज 0800 564 424 800-564-424 is the number to get in touch with me.
0: गुरु थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. अब नेक्स्ट थर्सडे को आपसे और बातें हम जरूर करेंगे.
1: थैंक यू विजय भाई.
0: थैंक यू. तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से हमारी बातें जो है ये एवरी थर्सडे को होती हैं. अभी 22 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और गिरमिट के बारे में कुछ और बातें इन द नेक्स्ट आवर हम जरूर करेंगे और आखिरी गाना जो है वो भी आपको सुनाएंगे. एंड 6001 आपने मैसेज किया, आपने कहा कि आप सारे गाने एक साथ चाहते हैं, तो हमने पहले भी बताया है कि हमने आसान कर दिया है जो गिरमिट का प्लेलिस्ट है. अगर ये आपको चाहिए लेटर जी लिखकर 5599 पर आप भेज दें, ये लिंक आपके पास आ जाएगा. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड वेरी इजीली गिरमिट के ये सारे गाने आप एक्सेस कर सकते हैं अपने दोस्तों अपने परिवार वालों के साथ. सो लेटर जी अल्फाबेट जी ये लिखकर 5599 पर आपको भेजना है.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है और हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. अब आज का दिन और कल का दिन ही बाकी रह गया है जब और कोड वर्ड्स हम आपके लिए रिवील करेंगे जिन्हें सुनकर रोवर पर एंटर करके आप मौका हासिल कर सकते हैं टू विन आई रिटर्न एयर टिकट टू फिजी. अभी वक्त है आज का पहला कोड वर्ड हम रिवील करें.
4: तो आज का पहला कोड वर्ड ऑन द शो जो आपको नोट करना है इज मंगीती, इफ दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड.
0: Yes, मंगीती.
4: Okay. मंगीती, right.
0: मंगीती so, का मतलब होता है फीस्ट.
4: फीस्ट, ओह नाइस. तो मंगीती आज का जो कोड वर्ड है इसकी स्पेलिंग आप नोट कर ले, MAGITI. That's how you spell the word, मंगीती.
0: तो एक घंटे का वक्त अभी से आपके पास है, रोवर पर जाएं या hum.rover.nz यहां पर विजिट करते हुए जल्द से जल्द जो कोड वर्ड है इसे आप एंटर करें फॉर योर चांस टू विन ए रिटर्न एयर टिकट टू फिजी.
2: आर यू रेडी? शॉटबस्टर्स
3: थोड़ा सा हॉल बना दे.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate Traffic.
2: Kitchenmania.co.nz.
3: 18 hour high, staying a fine one all day. Coming into the city, Southern Motorway, 41 minutes from Manukau to town. Slow joining and dreary. Slow at Manurewa and Papatoetoe, then heavy from East Tāmaki. Southwestern, slow northbound through Whitty, but fine the other way. Northwestern, 36 minutes in from Massey, slow from Te Aratu, heavy a lot of the way from there. Northern, 32 from Constellation, heavy on and off Greville to the bridge.
2: Order your new Kitchen Mania kitchen and be in the draw for an island holiday. T's and C's apply.
4: You can enjoy a flexible personal loan with zero establishment fee when you apply for a GEM personal loan by the 19th of May 2026. GEM loans can be used for all kinds of things, like a new car, your dream holiday, a much-needed renovation, or simplifying debt. With weekly, fortnightly, or monthly repayment options available, apply online in under 7 minutes, and if approved, we'll waive the loan establishment fee. That's a saving of $240. Establishment fee waived until 19th of May 2026. T's and C's apply.
5: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoetoe and Hamilton. Throwback.
11: वैसे कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी कंट्री में अगर मिलते हैं, जो सिर्फ यहीं पे मिल रहे हों, तो वो हमारे लिए एक इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट हो ही जाता है एंड इट बिकम्स द फैन फेवरेट एज वेल, कि लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है। और आज ऐसे ही किसी एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहते हैं, विच इज़ वेस्ट गोल्ड बटा। आई थिंक आई हैड इट वन और ट्वाइस, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दाम जो है इसका ये सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। बट वेस्ट गोल्ड बटर जो है, इसके बारे में कहा गया है कि न्यूजीलैंड टेस्टीएस्ट, थैंक यू, वेस्ट गोल्ड बटर जो है ये रैंक हुआ है द बेस्ट सुपरमार्केट बटर इन कंज्यूमर न्यूजीलैंड ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में, जो टेस्टीएस्ट बटर का खिताब ये इसे दिया गया है।
12: Okay, that's amazing.
11: आपने, आपको याद है आपने कभी ट्राई किया हो वेस्ट गोल्ड बटर?
12: नहीं
11: नहीं याद है। अच्छा, ओके, सो इफ यू हैव बीन कंज्यूमिंग इट, वी आर लेटिंग यू नो कि इट इज द टेस्टीएस्ट बटर सुपरमार्केट में जो अवेलेबल होता है न्यूजीलैंड, और नंबर वन पोजीशन पर ये रैंक हुआ है। अगर नहीं ट्राई किया है, इफ़ यू फील लाइक कि अच्छा थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे कर एक बार तो ट्राई करना बनता है, तो आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं।

0: Accurate traffic.
1: Mill Dalhousie and Land Packages.
2: Lovely today, fine and sunny all day, a high of 18 degrees. Easing on motorways, southern 37 minutes, Manukau to the city, 46 from Drury. Slow at Drury and Manurewa, heavy east Tāmaki to Rimuera. Slow northbound on the southwestern through Whitty, fine the other way. Northwestern, 30 minutes in from Massey, slow from the causeway, heavy patches from Point Chev. Northern 30 from Constellation, heavy on and off from Greville.
1: Award-winning builders, wide range of homes, Milldale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
3: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
4: Dash! Saviour of the lunchbox.
3: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
4: Dash!
5: Lace up and lock in, it's game time at Rebel with 30% off New Balance clothing and footwear and 30% off all Adidas adult clothing plus 30% off all Adidas kids shoes. Hurry, these deals and more end Sunday only at Rebel Sports. See online for T's and C's.
6: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda JQ ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 super hybrid system. Performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi Vecity Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
7: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel. Or tuck into beef enchiladas, tender pulled beef, soft tortillas and bright tangy sauce. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
8: Good morning, it's 9 o'clock.
9: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. A coroner has found a man whose body lay undiscovered near an Auckland motorway for almost 3 weeks, died from a meth overdose. The 34-year-old was last seen alive, getting out of a car driven by his ex-partner in 2023. As RNZ reports, the family of Dylan Barford told the coroner the police search for him was inadequate. His body was eventually found by contractors. There's a push for the government to clamp down on Airbnbs. Businesses in Christchurch's CBD are sounding the alarm, claiming it makes the streets feel ghostly. Councillor Nathaniel Hers-Jardine says that they should be treated like any other short stay.
11: So basically they should be paying the same rates as hotels and motels.
10: Labour leader Chris Hipkins has delivered his State of Auckland speech. He told businesses that the government needs to build on its 30-year vision for the city announced last month.
12: Clear lines of governance, commitments around engagement, better reporting, these things are important.
10: Been revealed, Israel's Prime Minister secretly met with the President of the UAE. Benjamin Netanyahu's office has since confirmed the meetup, describing it as a historic breakthrough for the two countries. To sport, All Whites coach Darren Bazley isn't expected to name any bolters in his World Cup squad later this morning. 26 players will make the trip to North America with New Zealand's first game on June 16th. Meantime in England, Manchester City has beaten Crystal Palace to keep their Premier League title hopes alive. Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup, and heavy rain has led to the abandonment of the second women's one-day international between England and the White Ferns in Northampton.
9: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy, and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: Close to 12 degrees temperature abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 18, overnight kam se kam 7 degrees rahega. Aaj mausam saaf rahega. Sunset 5:25 PM par hoga.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
9: What's going on? Kya bakte ho?
15: Are kehna kya chahte ho?
16: This is very interesting and ऐसी unique शादी तो मैंने अपनी life में आज तक कभी नहीं देखी. बस ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इस कहानी के through इस video में जरूर देखी है. और ये असल में हुआ है. ये unique wedding celebration जो है is being talked about all over on social media. इसका एक video भी बहुत viral हो रहा है, जहाँ पर शादी के दौरान आपने ये तो सुना ही होगा कि गेस्ट्स को यू नो बेस्ट हॉस्पिटैलिटी जो है ये देने के लिए खाने के अलग अलग काउंटर्स होते हैं. चाट का अलग होता है, मिठाइयों का मतलब बेसिकली डिजर्ट का अलग होता है, वेज का अलग होता है, नॉन वेज का अलग होता है. गर्मा गर्म तवे पर कहीं फुलके बन रहे हैं तो कहीं पराठे सिक रहे हैं तो कहीं पूरियां निकल रही है. लाइक जो ग्रैंड वेडिंग है उस दौरान ऐसी चीजें तो होती ही है. लेकिन ये एक वीडियो है जहाँ पर कहा गया है कि जो हॉस्पिटैलिटी है टू द गेस्ट्स ये नेक्स्ट लेवल है. इस यूनिक शादी के सेलिब्रेशन में एक वीडियो जो है ये बना और इस वीडियो में दिखाया गया है कि शादी के दौरान एट द वेन्यू एक डॉक्टर विद लॉट्स ऑफ यू नो इंडाइजेशन के मेडिसिन या फर्स्ट एड किट ये सब कुछ लेकर अपना एक स्टॉल लगा कर बैठे हैं. देयर इज अ बाबा एक नाई जो आपके बाल वगैरह काट कर उसको सही कर सकता है. एंड यहाँ तक कि इस्त्री वाला ये भी है आयन के साथ. आपके अगर कपड़े के इस्त्री खराब है तो वो इस्त्री भी कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जूते पॉलिश करने वाला भी है. तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है ये यहाँ पर शादी के दौरान गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही है. जब इसका एक वीडियो ऑनलाइन डाला गया तो कुछ लोगों ने इसे कहा मोस्ट प्रिपेयर्ड वेडिंग एवर और कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि भाई ये सारी चीजों की जरूरत तो गेस्ट को नहीं पड़ेगी. शायद डॉक्टर वाला इज अ गुड आइडिया क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना इवन ऐसे फैमिली फंक्शंस के दौरान भी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, कुछ लोगों को चक्कर वगैरह आ जाते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया. लेकिन एज फार एज जो बाबा है, स्त्री वाला है या फिर जूते पॉलिश करने वाला है, इनकी क्या जरूरत थी. सो दिस इज समथिंग दैट यूजर्स आर सेइंग. कुछ कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया है तो कुछ कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा हो गया. ये इंडियन वेडिंग मैनेजमेंट जो है इज एट इट्स पीक स्पेशली एट दिस वेडिंग.
8: सोचने वाली बात है भाई, कैसे क्या कुछ लोग कर गुजरते हैं.
16: आई स्टिल फील कि जो ये डॉक्टर वाला आइडिया है ना इट्स वेरी वेरी नाइस. ये ऐसा होना चाहिए आई थिंक शादियों में.

8 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर थोड़ी देर बाद। फिजी गिरमिट फाउंडेशन के प्रधान क्रिश नायडू से भी हम बातें करेंगे गिरमिट रिमेम्बरेंस डे के बारे में। और आज गिरमिट दिवस है, आज के दिन पहली बार भारत से हमारे पूर्वजों को फिजी जो है ये पहुंचाया गया था, और ऐसे में उनके बारे में कई बातें जो है ये अभी तक हम कर चुके हैं। और एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गिरमिट प्रथा को ख़त्म करने में कहते हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, भारत के ये हैं। और उन्होंने मनीलाल डॉक्टर को भी फिजी भेजा था, और उसके बाद दरअसल तोताराम सनाध्य जो हैं ये इन्होंने 21 साल फिजी में बिताए, और भारत जब वापस गए तो उन्होंने किताब भी लिखी थी फिजी में मेरे 21 वर्ष। और ये जो शख्स हैं ही रीच्ड आउट टू दैट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कि लोगों की हालत फिजी में बहुत ख़राब है और गिरमिट प्रथा को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और तब जाकर उनको इसके बारे में पता चला और एक्टिवली उन्होंने इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए अभियान जो है ये चलाया। और गिरमिट प्रथा के तहत अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग गाने जो आज हमने आपको सुनाए। इस बार जो गाना है वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मैं ये भाषा नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक शख्स थे गोविंद सिंह, आई थिंक 19 वर्ष उनकी उम्र थी जब वो भारत से फिजी गए थे गिरमिट प्रथा के तहत काम करने के लिए। और ये गाना जो है, ये कहानी जो है, जब मुझे मिली तो मैंने सोचा कि इस कहानी को और किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इस गाने को मैंने लिखा और फिर प्रोड्यूस किया। आइए ये गाना आप सुने, और जितने भी गाने आज गिरमिट के बारे में आपने सुने अगर कोई फीडबैक हो तो 5599 पर आप ज़रूर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल ये गाना आप सुने और उसके बाद और भी बातें होंगी। ये शख्स जो हैं ये बबलपुर के थे, बबलपुर से भारत में इन्होंने अपना सफ़र तय किया और नुकुलाऊ फिजी में जो जगह है वहाँ जाकर पहुँचे। कैसा इनका सफ़र रहा और क्या कुछ इन्हें बताया गया और क्या हकीकत उनको मिली, वो इस गाने में आपको सुनने को मिलेगा।

0: ऐसे चिनाब जो है ये एक स्टीमशिप था जिससे लोगों को लाया गया था फिजी गिरमिट प्रथा के तहत, और उन्हीं लोगों में शामिल थे गोविंद सिंह जो बबलपुर से नुकलाऊ पहुंचे थे। बारह आना का सपना उनको दिखाया गया, सपना पूरा नहीं हुआ। नुकलाऊ जब पहुंचे तो बंस फिलिप के खेत पर इनको का इनसे काम जो है ये कराया गया, और क्या कुछ उन पर बीती। कोशिश मैंने की कि मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद भोजपुरी नहीं बोलता हूँ तो ये गाना जो है भोजपुरी में लिखकर मैंने प्रोड्यूस किया। हमने कहा था कि फिजी गिरमिट फाउंडेशन के जो प्रधान हैं क्रिश नायडू, उनसे भी हम बातें करेंगे। तो क्रिश आगे हमारे साथ लाइंस पर। वेरी गुड मॉर्निंग क्रिश, नमस्कार आपको।
1: नमस्ते विजय जी एंड टू ऑल द हम लिसनर्स, एंड विजय जी आई वांट टू से बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि जो आपका संस्कृति का जो पेज है ऑनलाइन, आई फॉलो दैट एंड यू नो द गिरमिट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स दैट यू शेयर, इट्स रियली रियली टचिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट जस्ट टुडे एंड दिस वीक, हम हमेशा ये स्टोरीज जो है उसको यू नो शेयरिंग देम एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देम, सो थैंक यू
0: जी। और फिजी गिरमिट फाउंडेशन और आप लोगों ने लगातार कई सालों से बहुत कड़ी मेहनत

0: की है टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. और शायद यू नो जब फिजी में होते हैं लोग तो शायद कुछ लोग लेते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं लेते होंगे गिरमिट दिवस को इतना सीरियसली, लेकिन समय के साथ और जो अवेयरनेस आप लोग क्रिएट करते आ रहे हैं उसके साथ लोगों को जाकर पता चलता है, या फिर पता तो होता है लेकिन एक एहसास जो है ये होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं ये किन हालातों से गुजरे थे.
1: जी हाँ, एब्सोल्युटली. आई मीन द हार्डशिप हमारे जो एंसेस्टर्स ने एंडोर किया टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, वी शुड नेवर फॉरगेट कि हम है कौन, कहाँ से आए और कौन डिफिकल्ट जो वर्किंग कंडीशंस थे, लिविंग कंडीशंस थे, मगर फिर भी हमारे जो कम्युनिटीज थे वो अपना लैंग्वेज, फाइट, ट्रेडिशंस, वैल्यूज को प्रिजर्व किया. And we're really grateful for their service. We remember them.
0: और इसी तरह से एक और रिमेम्बरेंस जो है ये इसी शनिवार को भी रहेगा, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे.
1: जी हाँ, you know, despite all the challenges of this year, globally, economically, we're still bringing you the Fiji Gourmet Remembrance Day with free entry है, free snacks, dinner, dessert, kava, at Malolo Community Hall from 5 PM till 8:45 इस Saturday को. Please tamper रहे, 4:30 doors खुल जाएंगे नेट वर्किंग स्नैक्स टी के लिए. वी एक्सपेक्टिंग अ बंपर क्राउड वंस अगेन एंड वी गॉट लीडर्स फ्रॉम फिजी, इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन प्रेजेंस एज़ वेल.
0: और क्यों आप सोचते हैं कि इस तरह के रिमेम्बरेंस डे में हम लोगों का हिस्सा लेना जरूरी है?
1: जी हाँ, आई मीन वन ऑफ द थिंग इज दैट फॉर यंग जनरेशन, एज आई सेड बिफोर, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद अदर इंटरजेनरेशनल people in our community, जो seniors हैं हमारे जिनको 80 plus recognition awards दे रहे हैं, but also it's a day to come together as a community to celebrate who we are and be proud of who we are. आप देखते हैं कि हमारे लोग despite the hardship of grit have also contributed socially, economically, culturally, not just to Fiji but also New Zealand and globally as well. अभी इस week as you know there's a first time ever in the history of New Zealand a person from Indian diaspora from Fiji being appointed the associate judge of High Court of New Zealand. We've got Smriti Kumar this week being appointed as a member of parliament in Scotland. So there's a lot of things to be proud of, Vijayji. And it's not just about the fact that, you know, हमारे जनता से लोगों ने कहते हैं, उन्होंने मेहनत करकर हमें एजुकेट किया, हमारे पीढ़ी को आगे बनाया, तो उसको हम हर हमेशा धन्यवाद देना चाहिए.
0: जो लोग फिलहाल आपको सुन रहे हैं क्रिश, बिफोर वी लेट यू गो, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे?
1: जी हाँ, हम कोई भी रिलीजन से है फिजी में और इंडिया से आए थे, किसी भी रीजन से भी आए थे फिजी में, डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से, मगर फिर भी हमें एक बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो ग्रिमिट का आइडेंटिटी है दैट बाइंड्स अस टुगेदर, दैट्स आवर बंधन, दैट्स आवर फाउंडेशन, एंड फिजी इंडियन कलेक्टिविज्म और यूनिटी होगा एंड ओनली आवर फोरफादर्स सैक्रिफाइसेस विल बी ऑनर्ड एंड देयर लेगेसी विल लिव ऑन. और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, यू नो, वी कैन नॉट बी फ्रेगमेंटेड, वी नीड टू कम टुगेदर. And this is again an opportunity to come together, regardless of where in Fiji you're from, regardless of what religious background, social cultural background you're from. Because as a desh mein collective identity hi aapko aage le jayega.
0: Krish, aapke samay ke liye bahut bahut shukriya, and thank you for putting this event together once again is saal, and we all look forward to being part of this very very special evening.
1: Thank you, Vijay ji, and I appreciate your support and whole support for many many years. Dhanyawad.
0: थैंक यू. तो ये थे फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड के प्रधान क्रिश नायडू, याद रहे मलायोला कम्युनिटी सेंटर पर इसी शनिवार को शाम 4:30 बजे से नेटवर्किंग जो है ये शुरू हो जाएगा. और गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट जो है इसमें आप ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वेरी स्पेशल ओकेजन जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हिस्सा ले सकते हैं. और जो लोग फिजी से हैं अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं, अगर उनके बारे में पता नहीं तो जान सकते हैं, जो लोग नहीं हैं उसके बारे में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं,
2: एक सीख मिल सकती है ना. जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी कहा कि देयर इज अ वे दैट यू कैन फाइंड आउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर कम्युनिटी, फिजी इंडियन कम्युनिटी, या फिर टू योर किड्स आप उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो समझ सके, जान सके अबाउट व्हाट आर द हार्डशिप्स जो हमारे एंसेस्टर्स ने फेस किया हमारे एग्जिस्टेंस के लिए. एंड जैसे कि अभी आपने सुना कृष ने बताया ना कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चरल बैकग्राउंड आवर एग्जिस्टेंस आवर एथनिसिटी फिजी इंडियन कम्युनिटी जो है. तो ऐसे में आई वुड डेफिनेटली एनकरेज पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को वो जरूर इस इवेंट में लेकर आए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि वो फिजी इंडियंस के बारे में उनके एग्जिस्टेंस के बारे में चीज़ें जो है ये सीख सके. एंड टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू अस, जरूरी नहीं कि आप फिजी इंडियन नहीं हैं. इफ़ यू डोंट बिलोंग टू दिस कम्युनिटी इवन देन आप इसका हिस्सा बन सकते हैं एंड आप भी एजुकेट हो सकते हैं, जान सकते हैं अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियंस इन फिजी.
0: क्योंकि वहाँ पर वो रात होगी और भी कई स्टोरीज जो है उस रात में आपके लिए होगी, जहाँ पर कई लोगों की ज़िंदगी की हकीकत जो है ये हमें पता चलने वाली है. तो उसके बारे में और बातें ज़रूर होती रहेंगी. और जैसे हमने कहा, आपने सुना चनाब के पार जो गाना?
2: जी, आई वाज लिसनिंग टू इट एंड ऑफ कोर्स आई वाज लिसनिंग कि आप कितना इमोशनल हो रहे थे आफ्टर द सॉन्ग. सो आई टोटली अंडरस्टैंड द इमोशंस. इट्स नॉट इजी टू फील वो चीज़ें जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं की है, बट अगर आप थोड़ा भी ये फील कर रहे हैं, इट एक्चुअली डिपिक्स कि आप वो समझ रहे हैं जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस दिन पर. नॉट जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑफ कोर्स, बट वी आर जस्ट ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि गिरमिट दिवस हमारे लिए क्यों यू नो ये ऐसा है कि ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जाने या समझें. इसके बारे में आप समझ सकते हैं.
0: तो कल ये या शनिवार को गिरमिट रिमेम्बरेंस नाइट में आप हिस्सा ले सकते हैं. फिलहाल 26 मिनट हो रहे हैं 9:03:65. थैंक यू सो मच, आपका मैसेज जो है ये हमें मिल चुका है.
2: बहुत बहुत शुक्रिया. और इन्होंने कहा है कि विजय भाई, विजय यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑन द सॉन्ग्स अबाउट गिरमिट. इट्स अ वेरी सैड डे फॉर ऑल फिजी इंडियंस. माई ग्रैंड पेरेंट्स वर फ्रॉम बिहार. माई ग्रैंड मादा, माई आजी लिव्ड विद अस. शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज 108. आई वाज अराउंड 15. शी हैज टोल्ड मी दैट दे वर बीन थ्रू सो मच. वंस अगेन भाई, अमेजिंग सॉन्ग्स. और वो जानना चाहते कि ये किसने गाया है.
0: गाया जो है कोई, क्योंकि मुझे तो गाना आता नहीं है भाई.
2: गाना आता है पर आप गाना नहीं चाहते, वो बात अलग है.
0: तो ये गाने जो है, आई राइट द सॉन्ग्स एंड आई यूज द हेल्प, आई टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रोड्यूस दिस सॉन्ग्स.
2: तो जिसने गाया है वो AI है.
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
4: हे देखो हम आ गए.
5: यू गेट मनी, गेट कैश.
6: New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry, and if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
7: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
8: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. T's and C's apply. फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें. पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए. oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे. तमाकी तुरुकी ओल्टुगेदर ओकलैंड.
10: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री. सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा. जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर. और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री. लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक. कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर.
8: टाइगर बार एंड रेस्टोरेंट इन सोहो होटल माउंट रॉस्कल आए और इंजॉय करें इनका सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग एक्सपीरियंस जहां पर आपको तरह तरह के फ्लेवर्स मिलेंगे क्रिएटिव एशियन फ्यूजन डिशेस से लेकर जेस्टी सी फूड तक साथ में रिफ्रेशिंग कॉकटेल्स सब कुछ एक बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश अंदाज में ये ओपन है फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्लोज टू ऑकलैंड सीबीडी एंड मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट टाइगर रेस्टोरेंट बार इन सोहो होटल स्टोरा रोड माउंट रॉस्कल विजिट टाइगर एट soho.co.nz
11: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
12: क्यों क्या हुआ
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रेस्पॉन्स फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
13: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800 564 424

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 29 मिनट रह गए हैं अब 10 बजने में. वैसे अब गिने चुने दिन ही बाकी रह गए हैं जहां आप हर दिन $100 कैश जीत सकते हैं बाय प्लेइंग चैडल.
3: तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर है. हम पर आप हमारे साथ जब भी जुड़ते हैं तो रोवा ऐप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, यही वो ऐप है जो आपको दिला सकता है आपके पैसे, आपका शेयर ऑफ द टोटल ऑफ $7,000 जो हम गिव अवे कर रहे हैं फॉर रोवा पर चडल खेलते हुए. ईच डे इनफैक्ट आप $100 जो ये जीत सकते हैं. द मोर यू प्ले द मोर चांसेस ऑफ यू विनिंग. बस आपको रोवा पर चडल का जो टैब है ये ओपन करना है. इट्स अ कीवी वर्ड विजिट जहां पर एक कीवी वर्ड हो, सेइंग हो या फ्रेज हो ये आपको क्रैक करना है और बताना है कि इसका क्या मतलब है. एंड इफ यू डू दैट इंस्टेंटली या फिर बिना किसी हिंट का इस्तेमाल करते हुए तो आपके जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको मिलता है बोनस पॉइंट. सो मेक श्योर आप इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए और अपनी अपनी एंट्रीज हमारे साथ रजिस्टर कराते हुए एटलीस्ट ट्राई योर लक ऑफ विनिंग द मनी जो हम गिव अवे कर रहे हैं रोवा पर आपके लिए चडल खेलते हुए जो आप जीत सकते हैं. फिलहाल हमने आपसे ये भी कहा था ना कि नेक्स्ट वीक सैटरडे को वाइब मिक्स इवेंट्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए द ग्रैंड मस्ती नाइट. और ग्रैंड मस्ती नाइट के लिए हमारे पास आपको देने के लिए पासेस भी हैं. कल हमने आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दी. हमने यही कहा कि आप अपना अपना जो नाम है ये लिखकर हमारे पास भेज दें 5599 पर तो आप हमारे साथ विजेता होंगे और हम बताएंगे कि किसने ये जीता है. सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. कमल लता है 8970 से इनके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स खत्म होते हैं. कमल लता जी मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, आप हमारी विजेता हुई हैं कल हमने जो कंपटीशन किया था उसके लिए. तो अगर आज आप हमारे साथ पासेस जीतना चाहते हैं, इनफेक्ट आज जाने से पहले ही हम बता देंगे कि किसने जीता है हमारे साथ ये पास. ऑल यू नीड टू डू इज अपना नाम और साथ में अपना जो लोकेशन है ये लिखकर आप हमारे पास भेज दीजिए.
2: तो अपना नाम और कहाँ आप रहते हैं ये 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं.
0: Hollywood's most wanted.
4: Gundi khad rao. Ya seedha andar aao.
5: Main laau apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: easy mess. Power through mess with Morning Fresh.
1: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: What's going on?
11: 18 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में और साउथलैंड में कई रेड्स किए गए जिसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने ड्रग्स और ओवर $60,000 कैश जो है ये जब्त किए हैं. 6 लोगों को अरेस्ट किया गया एलिया दिस वीक जिनके पास लगभग $61,000 कैश मिला. इसके अलावा LSD, कैटामिन, MDMA और कैनबिस भी पाया गया. सर्जेंट होली मोहिनी ने बताया कि छानबीन के बाद ये रेड्स जो है ये किए गए और पुलिस का कहना है कि 30 charges were filed relating to the supplier of class A, B and C controlled drugs. 3 log jinki umar 18, 19 aur 30 years hai inko Invercargill district court mein 2nd of June ko pesh kiya jayega. 33 varshiya ek mahila ko 19th May ko अदालत में पेश किया जाएगा जबकि 46 या ओल्ड एक व्यक्ति जो है इनको बाद में अदालत में पेश किया जाएगा.
12: दूसरी ओर न्यूजीलैंड में जो ड्राइवर लाइसेंस रूल्स है ये 25th of January 2027 से बदलने वाले हैं. अगर आप रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पर हैं और आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि अपना फुल लाइसेंस लेने के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है. हाउ इट वर्क्स बेसिकली कि अगर आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं फ्रॉम 7th May 2026 से लेकर 24th of January 2027 के बीच में तो इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है ये ऐड हो जाएगा आपके रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पीरियड के लिए. और एवरी टाइम आपको डिमेरिट पॉइंट्स मिलेंगे यू कुड हैव टू वेट एन एक्स्ट्रा 6 months बिफोर आप अपना फुल लाइसेंस जो है ये पा सके. और अगर आपको डिमेरिट पॉइंट्स मल्टीपल टाइम्स मिलते हैं तो एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम आपका बार बार बढ़ सकता है. Demerit points can happen for things like speeding या फिर breaking restricted license rule जिनमें carrying passengers when not allowed ये भी शामिल है and of course drink or drug driving जो है ये भी है. Important things to know कि अगर आप अपने clean driving records को clean रखते हैं then nothing changes for you और demerit points before 7th of May 2026 will not be counted for this one. अगर आपको फुल लाइसेंस जो है बिफोर 25th of Jan 2027 मिल जाता है देन दीज न्यू रूल्स वोंट अफेक्ट यू एज वेल. और जो और बड़े चेंजेस है फ्रॉम 2027 यू विल नो लॉन्गर नीड टू टेक अ फुल लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट. एडवांस ड्राइविंग कोर्सेज जो है विल नो लॉन्गर शॉर्टन द रिस्ट्रिक्टेड पीरियड एज वेल.
11: तो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं. वैसे हेल्थ मिनिस्टर सीमिन ब्राउन ने घोषणा की है कि सरकार अगले 4 सालों में $15.5 million पैसे खर्च करेगी टू सेट अप ए नेशनल पेडियाट्रिक पैलेटिव केयर सर्विसेज. ये केयर जो है विल बी डिलीवर्ड बाय डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट दोनों नॉर्थ और साउथ आइलैंड में. अभी हेल्थ न्यूजीलैंड जो है ये फंड करता है जस्ट 1 स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक पैलेटिव केयर फिजिशियन जो स्टारशिप चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में है. और सीमन ब्राउन ने आज सुबह ये घोषणा करते हुए कहा इसका मतलब ये होता है कि बच्चे जिनको सीरियस बीमारियां हैं और उनके परिवार वाले जो हैं उनको और अच्छा सपोर्ट मिलेगा. और नए सर्विसेज जो है ऐसा समझा जाता है कि मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर से ये शुरू हो सकते हैं. तो और क्या कुछ हो रहा है इस पर भी डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। जो मैच इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैनचेस्टर सिटी और क्रिस्टल पैलेस के बीच हो रहा था, इट वाज अ मस्ट विन अगर मैनचेस्टर सिटी वांटेड टू यू नो स्टे क्लोज टू लीग लीडर्स। तो सिटी की जीत क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ इस मैच में 3-0 से हुई है।

0: दो बातों से पहले आज आपने कहा था कि इनाम देने वाली हैं।
1: बिल्कुल, तो हमने कहा था द वाइबिंग्स इवेंट्स की ओर से जो ग्रैंड मस्ती नाइट है, इसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन डबल पासेस। और आज के हमारे विजेता फारूक आप हुए हैं मैंगरी से, इन्होंने अपना मैसेज हमारे पास भेजा था एंड इनके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स आर 6560। थैंक यू सो मच फॉर योर एंट्री एंड कांग्रेचुलेशंस।
0: तो अब जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले दो बातें जो हैं, लेकिन दो बातों से पहले आज जबकि गिरमिट दिवस जो है ये हम मार्क कर रहे हैं, पहली बार जब भारतीय जो है ये फिजी पहुंचे थे और उनके ना होने पर उनके पूर्वजों को हम या अपने पूर्वजों को आज हम सम्मानित कर रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में। लेकिन इसके साथ एक ये भी बात ज़रूरी है कि जो हमारे पास हैं उनका भी आप मान सम्मान ज़रूर करें। आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं
1: उनके एडवाइस को, उनके नॉलेज को आप इंटरफेरेंस ना समझकर उनका केयर और कंसर्न समझें और उसे कंसिडर करें। जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ सच में सही है तो वो करने की कोशिश करें, यू सी द डिफरेंस।
0: दो बातें हैं, पहली बात अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं।
1: क्या बात है।
0: और दूसरी बात, थोड़ा सुकून भी जरूरी है जिंदगी में, थोड़ा सुकून भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि ये जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती।
1: बिल्कुल सही। चलिए इन बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात वो होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: जो कि आ रही है।
1: My time with Kashika.
2: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। 14 मई का दिन हो गया, देखिए किस तरह से 14 दिन निकल गए हैं इस महीने के। बस 16 दिन बचे हैं, 17 दिन बचे हैं, जहां पर हमारा ये महीना भी ऐसे ही चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। वैसे आपने इस महीने में, अभी समझ लीजिए आधा महीना हो रहा है, और आपने क्या अचीव किया, अपने लिए कुछ टाइम अचीव किया कि नहीं किया। माय टाइम में मैं काशिका आपको इन्हीं बातों के बारे में बताती चली जाती हूँ, याद दिलाती चली जाती हूँ कि आपके लिए आपका टाइम कितना ज़रूरी है। बाय द वे, आप जब चिलैक्स रिलैक्स कर रहे होते हैं तो आपको बता देती हूँ हमारे म्यूज़िक स्टेशंस आपका साथ ज़रूर देते हैं। और एक गुड न्यूज़ ये है कि आप रोवा ऐप के ज़रिए अगर हमें सुन रहे हैं तो भाई रोवा ऐप के ज़रिए सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया भर में लोग हमें, हमारा हम रिवाइंड सुन रहे हैं, क्योंकि वी आर रोवा पे नंबर वन म्यूजिक स्टेशन, जहाँ पे गोल्डन एरा के 60s 70s के हिट्स आपको प्ले करके हम सुनाते हैं। इसके साथ साथ नंबर टू पोजीशन पर आ जाता है 80s का ज्यूक बॉक्स, जिसमें नॉन स्टॉप आपके लिए 80s के ये कमाल के गाने आते हैं। तो भाई नंबर टू पे ये रोवा में आ जाते हैं। वैसे अगर फिर जी भजन, चढ़ती कला, पंजाबी हिट्स, पीजी कीर्तन संग्रह या राहत फतेह अली खान के आप म्यूजिक स्टेशन को सुनना चाहते हैं तो भी रोवा ऐप के जरिए आप सुन सकते हैं। और अब यूकी हम यो रोवा पर है ही हैं तो आपको बता देती हूँ कि यू कैन विश विन कैश विद चर्डल। और ये अगर आप कीवी वर्ड्स के बारे में या उसके बारे में जानकारी ज़्यादा रखते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सेइंग हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, आपको उसे क्रैक करना है $100 कैश जीतने के लिए। भाई जल्दी कीजिए, आप पहुँच जाइए। और आज का ये जो जो भी हम इसको पजल कहेंगे, वर्ड पजल, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, $100 जीत सकते हैं आप, $7,000 हैं हमारे पास बांटने के लिए। तो चलिए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बजाती हूँ एक गाना और उसके बाद आपके पास आती हूँ दोबारा।

0: What's a duck?
1: तो मेरे आज एक्सपर्ट अड्डा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. घरों में, हमारे कई घरों में एक्चुअली कॉकरोचेस आ जाते हैं. और ऐसे में क्या होता है, इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस, क्या कर सकते हैं ऐसा जो आपको लगता है वो आपको ये एक्चुअली हाउस होल्ड यू नो प्रॉब्लम है. और ये एक काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये जर्म स्प्रेड करते हैं, खाने को कंटामिनेट करते हैं और एक्चुअली काफ़ी अनप्लेजेंट होते हैं. इनको देखते हैं ना, बड़े बदसूरत से होते हैं. तो अपनी किचन को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना चाहिए हमेशा, ताकि जो हमारे काउंटर टॉप्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कभी डर्टी डिशेस नहीं छोड़िए सिंक में ओवरनाइट. कभी कभी जो खाना गिर जाता है, ये ग्रोसरी के जो सामान होते हैं, कुछ फैल जाते हैं, वो डेफिनेटली उठा लिया करें. सील्ड कंटेनर्स में आप ऐड किया करें, क्योंकि छोटे छोटे क्रम्स के साथ, अनकवर्ड खाने के साथ और गीले या डैम्प एरियाज में, खास तौर पे जब पाइप्स वगैरह होते हैं ना, वो जो लीक हो रहे होते हैं उसके आसपास से निकलते हुए ये पहुंच जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर से ही ये सर्वाइव होते हैं. और कोशिश कीजिए, जैसे कि ये कॉकरोचेस, आपको पता है कि ये गैप्स में से आ जाते हैं, या तो डोर्स या विंडोज, ड्रेन्स या पाइप्स, तो ये जो क्रैक्स वॉल्स में होते हैं या कैबिनेट्स वगैरह में होते हैं, ये इनके लिए छुपने के लिए बहुत ही अच्छा जगह इनको एक मिल जाती है. और उसके बाद जैसे ही ये उसमें घुस जाते हैं, फिर वहाँ ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं. एक फ्लेक्सिबल सा सीलेंट अगर ले लें और इन गैप्स को अगर आप फिल कर दें, जॉइंट्स को सीम्स लगा दें, तो डेफिनेटली आप नोट करेंगे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. कॉकरोचेस जो होते हैं, यू नो मोस्टली कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास जेल टाइप के होते हैं, जिसमें वो चिपक जाते हैं. अब इसके बाद यू नो आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइजन टाइप वहाँ पे मिलता है, जो आप इनके नेस्ट होते हैं जो क्रैक्स में ये आपको पाए जाते हैं, जहाँ इनकी कॉलोनी तैयार होने लग जाती है, वहाँ पे सिंक के पास, क्रैक्स के अंदर, फ्रिज के पीछे, डार्क कॉर्नर्स में आप

0: मोस्टली अगर आप इस तरह की चीज़ें घर पर यू नो किफ़ायती हैं इनका इस्तेमाल करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एंड एक चीज़ है दैट आपके जो घर के गार्बेजेस होते हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा होता है वहाँ पर ये हार्मफुल बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये ड्रेन से, गार्बेज से, सीवेज एरिया से, डर्टी सर्फेसिस से निकलते हैं और इनके बॉडी और इनके लेग्स में वो सब कुछ मिल जाता है। बी वेरी वेरी केयरफुल, ख़ास तौर पर रिमेंबर कुछ कॉल कुछ चीज़ें रिकॉल कर ली गई थी और उसमें सामोलेना और इस तरह की चीज़ कोली, ये चीज़ें जो होती हैं ये कॉकरोचेस डेफिनेटली कैरी करती हैं। सो रिमेंबर, ये हम लोग यहाँ सफर कर चुके हैं, आगे हम नहीं करना चाहेंगे, खुद अपने घरों को पहले क्लियर करें।
1: माई टाइम विद कशिका,
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं?
0: वैसे आप भी न्यूज़ में आ सकते हैं, अगर मुझे ऑफिस शाउट आउट देना चाहे 5599 पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अगर आपके ऑफिस से या आप कहां से सुन रहे हैं।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: So you're trying to eat less meat, but you're no Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Mmm, smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu who? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
7: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
8: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. You won't want to miss this on the 16th and 17th of May at Mitre 10.
9: Discover the magic at Go Bananas Chaike, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: To jaldi join करें टू एंजॉय दी स्पेशल ऑफर्स। और सबसे खास बात, गो बनाना चाइल्ड के बीचलैंड इज नाउ ओपन एंड ऑफरिंग 12 मंथ्स कंप्लीटली फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो देर मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे।
10: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
11: इट्स 10 AM एंड यू फॉरगॉट अबाउट डिनर एट योर्स टुनाइट। योर फ्रिज इज एम्प्टी, योर प्लेस इज अ मेस आफ्टर वॉचिंग लास्ट नाइट्स गेम, and you're still painted the same blue as your team. No time to do the shop? Get what you need with New World online same day click and collect. T's and C's and exclusions apply. See newworld.co.nz for details.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
12: Office shout out.
0: ऑफिस शाउटआउट की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वाइटली सुन रहे होते हैं, प्यार से सुन रहे होते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग काफ़ी हद तक क्वाइट रहने के बाद फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर भेज देते हैं। सो बिग थैंक यू टू स्टफ पीपल जो हमें इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, एंड थैंक्स वंस अगेन। आपका टेक्स्ट, आपने कहा कि नाम नहीं दूंगी, बट हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट, यू आर लिसनिंग। एंड चलिए अगला गाना मैं आपके लिए बजा देती हूँ, और ऑफ कोर्स कोई ड्रीम अगर आप लोग एनालाइज करवाना चाहते हैं या कोई ड्रीम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या आप हम उसका एक तोड़ निकाल पाते हैं या उसका एक कोई जिसे कहते हैं ना हम वे निकाल पाएं। तो चलो ट्राई करेंगे कोई ड्रीम।

0: Jessica.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: वैसे कम्युनिटी में क्या हो रहा है जरूर हमें आप बताएं। वैसे एक चीज जो खास होने वाली है कम्युनिटी में परसों, वैसे आज गिरमिट दिवस का भी सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसे इनकी रिमेम्बरेंस में हम यू नो एक बहुत ही ब्यूटीफुल 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे जो है ये करने वाले, जहां सेक्रीफाइसेस जो थे जेनरेशंस ऑफ जो फिजी ओरिजिन है उन लोगों की यू नो उनको सराहाने के लिए किया जा रहा है। ये मलायोला कम्युनिटी सेंटर में 4:30 to 8:30 तक होगा और 4 दरवाजे खुल जाएंगे। फ्री नेट, फ्री एयर, फ्री इवेंट है जहाँ आप पहुँच सकते हैं और एब्सोल्युटली आप फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड के फेसबुक के पेज पे भी पहुँच जाएं अगर आप वहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब यू नो कम्युनिटी में ऐसा कुछ होता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, और जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।

0: Nutritious foods. Eat better, live better.
1: So, मैं बात कर रही हूँ अबाउट क्या खास हुआ है. सो भैया आपको बता देते हैं दैट एयर न्यूजीलैंड के बारे में, इनके लिए एक बहुत ही फाइनेंशियल हिट हुआ है ड्यू टू द जेट फ्यूल कॉस्ट. अब ये जो कैरियर है कॉस्ट कटिंग के लिए शुरू होने वाला है और कह रहे हैं कि इनकी जो फ्लीट की अवेलेबिलिटी है इट इज़ सेट टू इम्प्रूव. एयर न्यूजीलैंड अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरे साल भर का प्री टैक्स लॉस जो है विच इज़ बिटवीन 340 मिलियन to 390 मिलियन ये बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द जेट फ्यूल. अब ये एयरलाइन जो एक्सपेक्ट कर रही है सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 980 मिलियन कम्पेयर टू लास्ट ईयर 740 मिलियन हो सके. सो अब क्या होने वाला है, फ्यूल प्राइस इधर का उधर होने वाला है या नहीं होने वाला. लेकिन हमारा जो एक हमारी पॉकेट्स पे जो एक इफ़ेक्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा आता है. लेकिन दे आर ट्राइंग टू सी व्हाट दे कैन प्रोबेबली डू, दे विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली. हो सकता है जो एग्जिस्टिंग बोइंग्स हैं उनको वापस सर्विस में जून के महीने से लेकर आए, जो एयरबस है वो 2027 में जो नई वाली है उनको स्टार्ट करें. एयर न्यूजीलैंड की जो फ्लीट है अभी स्ट्रगल कर रही है फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स जहाँ पे फ्लीट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही. इट्स कॉज्ड बाय द इंजन मेंटेनेंस इश्यूज, इसीलिए डिलेज और उससे क्या होता है लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं.
2: Drive show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दूसरी को बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दूसरी तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
7: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. On now at Auckland Showgrounds. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta go.

ड्रीम डायरी। सो ड्रीम डायरी में एक मेरे पास आपका कॉल आया और आपने कहा आपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को ड्रीम किया। अब आपने अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को ड्रीम किया। यूजुअली क्या होता है जब आप सेलिब्रिटीज़ को अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को ड्रीम करते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी पे कि क्या आपकी ट्रेट्स हैं। तो अपने आप कभी अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर को आप नोट करें कि वो सेलिब्रिटी के बारे में आप कितना सोचते हैं। वो एक जो ड्रीम अगर आपने लिया है, एक्चुअली वो क्या हो जाता है, वो कभी कभी वैलिडेशन होता है फ्रॉम अदर्स, या फिर हो जाता है कि You wish to become somebody influential या well known like that celebrity, एक crush हो जाता है कि भाई इस celebrity का crush है and you know your thoughts and your feelings in the mind is always कि मैं so and so को dream कर रहा हूँ because मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा time अपना उस celebrity के बारे में सोचने में गुजार देते हैं। Do you think there's something like this which you actually do? Oh my God, okay, ये ड्रीम्स जो होती हैं कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्रोजेक्शंस पे, आपके थॉट्स पे, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली। तो कोशिश यही रखा करें कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ के बारे में सोचें, लेकिन एक दायरा बना के ज़रूर रखें। अगर कभी आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में ड्रीम कर रहे हैं जो आपको पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो कभी कभी उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए और एक ओपिनियन बनाने से पहले उनके बारे में पता लगा, आइडेंटिफाई करें कि क्या कहीं ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आप और वो सेलिब्रिटी जिसको आप जानते तक नहीं या जिसको आप इतना ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं कर पाते उसके बारे में ड्रीम कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है एंड देन सडनली आई रियलाइज वाई एम आई ड्रीमिंग ऑफ सो एंड सो पर्सन। तो अब मैं एक सो एंड सो पर्सन के लिए इसे ड्रीम शायद कर रही थी बिकॉज उनका बर्थडे मेरे बर्थडे के दिन होता है। अब मैंने कहा ये शायद मैंने पिछले कई साल पहले पढ़ा था कि किस सेलिब्रिटी के साथ मेरा बर्थडे होता है और वो मेरे माइंड में रह गया था। अब वो इतने दिनों के बाद लौट कर एकदम से प्रिंट आउट की तरह बाहर आया।

थ्रोबैक की तरफ जाती हूँ, ऐसे फिल्म की तरफ जाती हूँ जो 20th October 1996 को रिलीज की गई थी, और ये फिल्म थी घातक। इस फिल्म के लिए 42nd फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमरीश पुरी को मिला था, बेस्ट स्क्रीन प्ले राजकुमार संतोषी को, बेस्ट एडिटिंग माइकर जी को मिला था, और लेकिन डायरेक्टर के लिए भी जो राजकुमार संतोषी को नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस हनी देओल, बेस्ट विलन टैनी डेंजोंगपा, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो था, ये जो एक्चुअली ये गाने जो थे, मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक वाज कंपोज्ड बाय वनराज भाटिया, बट एक गाना जो था वो आर डी बर्मन का था, और उसके बाद अनु मलिक का जो ये गाना है अब मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। एंड आई एम श्योर ये गाना आप में से बहुत सारे लोग के साथ आप रिलेट कर पाते हैं। सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री इस फिल्म में डैनी एंड अमरीश पुरी के साथ नजर आए थे। चलिए इस गाने की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ नॉस्टैल्जिक से प्यारे प्यारे गाने, थ्रोबैक, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो मूवी थी इसके लिए एक्चुअली कमल हसन जी को उन्होंने अप्रोच किया था, राजकुमार संतोषी जी ने, लेकिन ओरिजिनली इन्हें साइन किया गया, और एक एडवर्टाइजमेंट जो थी एक बॉलीवुड की एक पेपर हुआ करता था स्क्रीन मैगजीन, उसमें उनका आ गया वेलकम बैक टू द हिंदी स्क्रीन। लेकिन उसके बाद जो थे कमल हसन जी थोड़े से नर्वस थे, थोड़े से अनहैप्पी थे, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आना पसंद नहीं किया, हिंदी फिल्मों में उनके हिसाब से वो एक फ्लॉप हो चुके थे, उनमें देखा प्यार तुम्हारा शायद एक उनमें से एक फिल्म थी। हाउएवर जब प्रोड्यूसर कन्विंस नहीं कर पाए राजकुमार संतोषी, तो फाइनली जाके उन्होंने स्टार कास्ट को बदल दिया, एंड देखिए तो सनी देओल वाकई क्या लगे हैं उसमें, और बिल्कुल बहुत ही कन्विंसिंगली उन्होंने रोल अदा किया, इसीलिए उनका नाम भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन में फिल्म फेयर में भी पहुँच गया था।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The high of 18, overnight temperature of 7. आज का फोकस बताया जा रहा है सदली जो है शाम तक कम होती चली जाएंगे. It feels like 14 degrees right now. 5:25 पर sunset बताया जा रहा है.

0: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में 11:04 होने वाले हैं और आपका साथ निभाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक का शिका 12 बजे तक साथ देने वाली हूँ। वैसे एक बात तो है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें हम लोग कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें, लेकिन उनकी अलर्टनेस, उनकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 6-word story, कितने आप स्मार्ट हो सकते हैं अपनी स्टोरी को 6 words के अंदर पूरे करने में। यही कुछ 6-word story में मैंने सीखा। मैं जानती थी लेकिन मुझे पता नहीं था किस तरह से मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, बट धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ रहा है। आई एम वेरी श्योर आप लोग रोज़ सुनते हैं और आप लोग रोज़ समझते भी हैं, तो भाई डेफिनेटली वो आपके लिए 6-word story तो रहेगी। रेस्क्यू मी, रिसाइकल में सब्जियों की बहार लगी हुई है, तो उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और थोड़ी देर बाद हम फ्लाई अवे फ्रेंजी के लिए हम लोग सेकेंड लास्ट टाइम आपसे आपकी एंट्री मांगेंगे, क्योंकि कोड वर्ड मैं आपको थोड़ी ही देर बाद देने वाली हूँ, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मौका है फीजी से फीजी की रिटर्न टिकट जीतने का। तो डेफिनेटली 60 मिनट्स तक के लिए कोड आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, क्योंकि ये म्यूज़िक मंथ है, मे म्यूज़िक मंथ है, एनजेड म्यूज़िक मंथ है, तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां हम आपके गानों को इनवाइट करते हैं। तो आज किस कलाकार को हम आपके पास लेकर आने वाले हैं, यही बस इसका इंतज़ार कीजिए और जानिए आज के कलाकार कौन है। स्टे ट्यून्ड, कीप हमिंग ऑन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। और याद रहे कि आपने अगर हमारे पॉडकास्ट मिस करे हैं तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट कैचअप या ड्राइव कैचअप में BF या आप ड्राइव लिखकर भेजें और आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी।
1: बचाओ क्या,

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: सेलिब्रेटिंग NZ म्यूजिक मंथ
3: बैक योर बैकयार्ड बीट्स
4: Back Your Backyard Beats, भाई हम एक मौका देते हैं जहाँ पर हम कोशिश करते हैं नए नए कलाकारों को आपके सामने लेकर आएँ और ये NZ Music Month कुछ इसी तरह का जज्बा हमारा लेकर आता है. तो अगर आप ये गाना पसंद करने वाले हैं जो आज मैं इस ब्यूटीफुल से आर्टिस्ट का प्ले करने वाली हूँ, तो आप चाहते हैं हम इसे रिपीट करें या इसे स्किप करें, तो आपको 5599 पे MM करके वोट करना है. देखते हैं आपका इंटरेक्शन, क्या हमारे जो आर्टिस्ट हम इनके सॉन्ग्स प्ले करते हैं टॉप थ्री में आप आते हैं कि नहीं आ पाते हैं. आपके वोट्स, आपका सोशल लव बहुत बहुत मैटर करता है. तो आज के लिए मैं जो लेकर आ रहे हूँ, ये एक बहुत सुंदर गाना गाते हैं राजा राजन, और ये एक रेडियो अनाउंसर की तरह इन्होंने इंडिया में काम भी किया था, बट इनका पैशन था गाना गाना. अब ये एक ऑकलैंड बेस्ड सिंगर हैं और इनका गाना मैं अब आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ.

ईट बेटर लिव बेटर एंड यही पैगाम जब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तो बहुत सारी बातें साथ साथ मैं आपके लिए लेकर आ जाती हूँ। खास तौर पे जब हमारी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा होता है तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करती हूँ। भोजन मेला होने वाला है इस आने वाले संडे के दिन, जो एक बिल्कुल फ्री इवेंट है जहाँ फ्री खाना आपको शिवानीज रेस्टोरेंट इडली सांभर रेस्टोरेंट का मिलने वाला है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स है और बच्चों के लिए बाउंसी कासल फेस पेंटिंग है ना आर्टिस्ट होंगे, कपड़ों के और क्लोदिंग के स्टॉल्स भी होने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पहुँच सकते हैं। कहाँ आपको पहुँचना है? 378 अरारिमू रोड रामारामा साउथ ऑकलैंड में, जहाँ पे एक लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल का प्रोजेक्ट जो है उसको उसकी शुरुआत हो रही है, एक अवेयरनेस है और ये कोशिश है कि ये श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम बनाने के लिए। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पहुँच सकते हैं। इसके अलावा वाइब मिक्स इवेंट आपके लिए द ग्रैंड मस्ती नाइट लेकर आ रहे हैं नेटबॉल मानोरिवा में, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन द 23rd ऑफ मे, जहाँ पर आरजेज फ्रॉम फीजी

0: कहीं ना कहीं कभी ना कभी मौके लेकर आ जाते हैं। तो ये इंडियन आउटलेट्स पापा टोयोटो में खास तौर पे एरियाज में है, बॉटनी में भी है, जहाँ से आप ये टिकट्स ले सकते हैं।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
1: Weekdays 6 to 10 AM.
5: Oaklin, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
6: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसाज, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
8: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन्स और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
9: लुकिंग फॉर दैट अनफॉरगेटेबल हॉलिडे इन पैराडाइज? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
13: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: आज की सिक्स वर्ड स्टोरी मैंने खुद क्रिएट की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आपके साथ रिलेट करे जब मेरा टाइम आपके साथ जुड़ जाता है। और मेरा एक ही फंडा है, मैं कहती हूँ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, पहले आप आते हैं उसके बाद में कोई और आता है कि नहीं? ये बात तो आप जब फ्लाइट भी लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको एयर होस्टेस बताती है पहले खुद की पेटी बांधे, बाद में पड़ोसियों की या बच्चा या जो भी कुछ है उनकी पेटी बांधे। सो आज की सिक्स वर्ड स्टोरी मेरी होगी, I always belong to myself first. How's it? Isn't it true? पहले हम अपने आप को, खुद को belong करते हैं, उसके बाद हम आगे के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं? चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ के भी बहुत सारी बातें ऐसी जो आपके साथ मुझे करनी है।
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सो भाई ये बात है रेगुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट बिल के बारे में, जहाँ पे ये शिफ्ट कर रहे हैं पेपर बेस्ड एंड फिजिकल प्रोसेस से टू डिजिटल वंस. इससे क्या इंश्योर होगा? तो फ्यूचर जो हमारा होगा वो यूज़ कर सकता है डिजिटल लाइसेंसेस एज एन ऑप्शनल ऑल्टरनेटिव टू द फेमिलियर कार्ड्स राइट नाउ. तो ये न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने बताया है कि दे हैव गॉट द एबिलिटी टू डिलीवर रेगुलेटरी नोटिसेस इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल. ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पर मैं कह सकती हूँ दैट ये ऑप्शंस हमारे लिए इम्प्रूव करेंगे हमारी ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी. और ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्रिस बिशप ने भी इस बात को माना है. उन्होंने कहा कि कभी मेल में जब चीज़ें खो जाती हैं या हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉनिकली दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प अस एज वेल. और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो जाता है इन प्लेस, जहाँ पर एक प्राइवेसी का एक्ट जो होता है उसके ज़रिए भी वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डायरेक्टली पहुँच जाती है, रादर देन थ्रू द यू नो मेल बॉक्सेस या समथिंग लाइक हमारे पोस्ट्स के ज़रिए से. तो ये डिजिटल लाइसेंसेस जो डेफिनेटली नाउ आर अप एंड अबाउट नाउ, तो कोशिश कीजिए कि आप इन्हें फॉलो डेफिनेटली करें. एंड ये क्लियर ड्यूटीज़ बता देते हैं आपके यू नो सपोर्ट के लिए बेसिकली. सो हियर वी गो, दिस इज़ वन. ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो गया. गाना भी कुछ हिंट वाला ऐसा ही है.

0: नताशा
1: वाह
2: हाउ
1: अद्भुत
3: यू नो ऐसा होता है दैट हम लोग स्टोर्स में जाते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं वहाँ बड़े फ्लैशी फ्लैशी पैटर्न्स में बहुत फ्लैशी फ्लैशी पैकिंग में बहुत चीज़ें पड़ी होती हैं बट देन वी लैंड अप रीडिंग थिंग्स और फिर पढ़ते हैं जब हम देखते हैं कि उस पर क्या लिखा है ख़ास तौर पे वो चीज़ें मैं पिक करती हूँ जहाँ लिखा होता है सपोर्टिंग गट हेल्थ फ्रेंडली बैक्टीरिया अब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना कभी कभी आप बॉक्स में क्या लिखा होता है डब्बे में क्या लिखा होता है क्या नहीं लिखा होता ये आपको ज़रूर चेक करना होता है तो कभी आप नोट करते हैं जब चीज़ों को आप बाय करते हैं कुछ फ्रेंड्स जो मेरी वेजिटेरियन हैं उन लोगों के साथ ये बड़ा इशू हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं जिसमें ये लिखा होता है इसका ये कंटेंट है उसमें ये इन्ग्रीडियंट्स हैं ये क्या है इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली कोशिश कीजिए आप पता लगा सकते हैं आपके पास में जो कोई है अगर स्टोर्स में या फार्मेसी से कोई आप टैबलेट्स उठा रहे हैं मल्टीविटामिंस की उनको भी आप ज़रूर चेक किया करें क्योंकि ये कई रिसर्च के बाद पता चलता है लोगों को पता नहीं चलता कि क्या आप दरअसल उसमें कुछ कोई बोन्स थी या क्या था क्या कर रहे थे आप जो आप वो ऐसी चीज़ ले रहे थे तो आपका एक डाइटरी सप्लीमेंट जो होता है वो आप क्या ले रहे थे जिसकी हाई डोज कभी कभी आपको पता है बहुत पावरफुल हो जाती है कभी कुछ तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली नोट करना चाहिए कि क्या आप लोग ले रहे हैं कि नहीं हाँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जो हाई आप एमजी की कोई चीज़ ले लेते हैं तो आप प्रोबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं और फिर आपको लगता है कि क्या हम ये मेडिसिन खा रहे होते हैं क्या वो भी फ़ायदेमंद है कि नहीं है नॉर्मली ये जो कंजम्पशन होता है ये हम लोग फ्रेशली कुक करके सब्जियों को जो रेडी करते हैं तो वो उसके अंदर वी आर कंज्यूमिंग 1.3 बिलियन बैक्टीरियाज अ डे जो हमारे खाने के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं हमारे स्टमक में जाते हैं और उसमें जाके एक स्टमक एसिड बनाते हैं और ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो कंज्यूम होता है और वो किल भी हो जाता है वेरी फ्यू रीच द कोलन एंड कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं फॉर 1-2 एक्स्ट्रा डेज लेकिन अगर आप स्वॉलो करते हैं प्रोबायोटिक टैबलेट कैप्सूल उसमें करीब 20 टाइम्स मोर बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी क्या हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी तो ये फ्रेंडली जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है ये एक्चुअली कभी कभी सीरियस इन्फेक्शन भी लेकर आ जाता है दैट इज़ कि आपके ब्लड स्ट्रीम में ना चला जाए वो तो ये कभी आपको जब अवॉइड करना पड़ता है जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है ट्राई नॉट टू टेक दैट ट्राई एंड गो फॉर मोर नेचुरल थिंग्स तो ये कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुझे भी लगता है ओ माई गॉड ये मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बस आपके लिए आ रहा है फ्लाई एवे फ्रेंजी का कोड
2: Bro, look at you. Blue light screen को इतना घूर रहा है जैसे वो तुझे प्रमोशन दे देगा और ये कॉफी lukewarm. और टेस्ट बिल्कुल हार्टब्रेक जैसा प्लीज सर तू क्यूबिकल के लिए नहीं बनाए तू बीच के लिए बनाए तू लाइफ को एंजॉय करने के लिए बनाए
4: Listen to Hum on Rover every weekday at 8 a.m., 11 a.m., 1 p.m. and 5 p.m. Hum denge ek special code word. You've got 60 minutes to enter it in the Rover app and go in the draw to win a trip to Fiji. So what are you waiting for? Download the Rover app now. Win a trip to Fiji. Only on Hum on Rover. T's and C's apply.
5: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich Tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
6: Gold Coast is on sale now at Qantas. From sun-soaked beaches and luxury retreats to lush hinterland escapes, find that holiday feeling in the Gold Coast. Book now at Qantas.com. Hurry, sale ends Tuesday, May 19. Terms and conditions apply.
7: Jen didn't think she needed a DVS system.
8: Oh, I've got insulation in that.
7: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
8: Ah, yeah.
7: So Jen got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete with

0: Factor.
1: आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि गिरमिट दिवस आज के दिन मनाया जाता है, जहाँ पे हम स्मरण दिवस भी इसको कह सकते हैं। 14 मई 1879 को पहला जो अनुबंधित या जो मजदूर थे फीजी पहुँचे थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है। और गिरमिट का मतलब होता है अग्रीमेंट, और किस तरह से गिरमिट को उन्होंने इस तरह से अग्रीमेंट को गिरमिट बना दिया। तो ये जो सिलसिला था, एक जहाज़ आया था लियोनिदास के नाम से, जो पहली बार 498 भारतीय मजदूर फीजी लेकर आया था, और ये 1879 से 1916 तक इस दौरान भारत से लगभग 87 बार ये समुद्री यात्राओं के ज़रिए हज़ारों भारतीयों को लाया गया वहाँ पे। इनका संघर्ष तब शुरू हुआ जब इनको कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ा था, और जिसमें एक गिरमिटिया समुदाय जो था अब अपनी यादों को एक विरासत के रूप में पाता है और उसको देखता भी है। तो आज के दिन का दिन जो है एक बलिदान का दिन है, संघर्ष का दिन है, और उनके लिए मनाया जाता है जो ख़ास तौर पे इतना कुछ सह के फिर यहाँ तक उन्होंने इसे जो आज फीजी है उसे बना पाए। ऑल राइट, सो जितने भी लोग इसमें मेरे साथ शामिल हैं, हम इन सबका नमन करना चाहते हैं जिन्होंने ये संघर्ष किया था। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना विजय वर्मा जी ने कंपोज किया है, वो मैं थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन आज का जो मैं आपको शब्द या कोड देने वाली हूँ, फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग फ्लाई अवे फ्रेंजी, वो कोड बहुत सिंपल है, आपके लिए 60 मिनट्स तक जारी रहेगा। और ये कोड है दरअसल ताबुआ। ताबुआ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट है वीतिलेवू के, और वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन फीजी के तौर पे माना जाता है। और यहाँ की एक चीज़ ये बा के प्रोविंस में आता है, इसका की फंक्शन क्या, एक ये क्यों जाना जाता है इतना खूबसूरत ताबुआ जगह, क्योंकि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो था बहुत ही खूबसूरत है। हाइकिंग के लिए भी आप यहाँ के एक नेशनल पार्क में भी जा सकते हैं। तो आपका टाइम शुरू हो रहा है अब, जहाँ ताबुआ लिखना है कोड और आपने एंटर कर देना है, एक घंटे तक ये आपके लिए वैलिड है। टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर समझ लीजिएगा और फीजी पहुँचने की तैयारी कीजिए बस, क्योंकि आज ये सेकेंड लास्ट टाइम है, कल आखिरी बार मैं ये कोड आपको दूंगी और फिर ये ड्रॉ होगा। Rescue me, recycle me. तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते अबाउट सब्जियां। तो कभी कभी ये जो सब्जियां होती हैं जब बच जाती हैं, इनसे हम इनका क्या कर सकते हैं, तो इन सब्जियों को हम कोशिश करके इनका एक ऑमलेट की फिलिंग बना सकते हैं। तो आपने अंडे उबाल लिए, अंडे फेंट लिए, अंडे जब फेंट लिए उसमें आप ये सूखी सब्जी जो है ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एक फ्रिटाटा बना सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट में बहुत अच्छा आएगा, सब्जियों के साथ आपने एक साथ अंडा वंडा सब खा लिया, तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया।

तो कीवर्ड है तावुआ, TAVUA, जिसको आप के लिए करीब एक घंटा जो है, एक घंटे में 5 मिनट कम हो गए, तो आपके लिए ये वैलिड है. तो विनीता कुमार, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम तावुआ, फैंटास्टिक. देखो क्या कोइंसिडेंस है. चलो चलो रोवा पे जाओ फ्रांसीना आप भी, और जाकर एंटर करो TAVUA. ओके, माय सिक्स वर्ड स्टोरी तो मेरी वाली तो हो गई थी, लेकिन सिड, यू आर बैक विद द बैंग, ये कह सकते हो. आपने बताया, आपकी सिक्स वर्ड स्टोरी है आंसर टू क्वेश्चंस व्हाई हाउ करेक्टली. Answer two questions why, how, correctly. I think very well said. So, thank you so much. जितने लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया है और गिरमिट दिवस के इस खूबसूरत सी मौके पे जहाँ हम स्मरण करते हैं अपने पूर्वजों को, तो उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना विजय भाई ने जो लिखा और इसको कंपोज किया, बहुत खूबसूरत गाना है. बस इस पर्टिकुलर SP बालासुब्रमण्यम के गाने के बाद आपके लिए मैं ये विजय वर्मा जी वाला गाना फिजी गिरमिट प्ले करने वाली हूँ. उसमें ये इमोशंस आपके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ. और इसी नोट पे कहना चाह रही हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, और मेरा दिन आपके साथ अगला होगा वो है कहलाएगा शुक्रवार. तो आपसे मेरी मुलाकात होती है शुक्रवार यानी कि कल सुबह 10 बजे. मैं वापस लौट कर आऊँगी और कशिश फूड्स की ओर से माई टाइम लेकर ज़रूर आऊँगी. लुक आफ्टर सेल्फ, दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ. बाय.